0: सजना।
1: नीले नीले अंबर पर चांद जब आए प्यार बरसा।
2: पुराने गाने सिर्फ सुर और अल्फाज नहीं होते,

0: जो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: गुरुवार 17 सितंबर की सुबह हो चुकी है और इस वक्त ठीक 5 बजे हैं.
4: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
0: Radio Musti.

0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: बस हमारी भी यही कोशिश रहती है भले ही गानों के जरिए कि आपके दामन में बस खुशियां ही खुशियां हो. सुबह के 5:06 हुए हैं. विशिंग यू ऑल अ लवली मॉर्निंग माय डियर लिसनर्स. नीतू का प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें. कैसे हैं आप? ठीक ठाक. मौसम काफ़ी बेईमान है, बारिश सुबह सुबह आपके यहाँ भी. सो जस्ट बी वेरी केयरफुल. काम पर जा रही है, गाड़ी चलानी है तो प्लीज़ ड्राइव केयरफुली. बस से जाना है या फिर पैदल जाना है, डू टेक ऑल योर प्रिकॉशंस, छाता, रेनकोट वगैरह. सो यहाँ पर नीतू आपके साथ 7 तक विद द बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक, चन एवरग्रीन, सदाबहार गाने, आपके नाम, कुछ 90s की दुनिया में भी आपको ले चलेंगे. बस अपने नाम और अपनों के नाम भी भेजते रहे. वहीश नंबर है 7999295499. 12 94. Stay blessed.

0: and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: और बस उसी मोहब्बत का वास्ता लिए हम भी चले आते हैं आपके साथ, सुबह हो शाम हो रात हो, रेडियो मस्ती हमेशा आपके संग. थैंक यू सो मच. गुड मॉर्निंग, नमस्कार. आपको प्रेमी लाजी प्लेंदी पापाय से हैं, पति रंजीत के नाम, एंड डेफिनेटली पूरे परिवार. कैसे है प्यारी सी ज्योति फ्रॉम शातो बिनागस, आशनी के नाम, रेखा, सुरेखा, नाजुजल, माधव परिवार, एंड प्रणाम मसाज हॉस्पिटल से मिस्टर जयशन, तेम्बाओ मीरान जी, बनंगोटिया, आकाश, शर्वन, मेविन और आप सब काम पर होंगे तो बों कुहाश, एंड स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ. नेक्स्ट गाना आपके नाम, नमस्कार धीरज, आयुष, विदिशा, आश्विन, ज्योति, ग्रांसन, अरविक और हरक परिवार मौदालबे से हैं. और यहाँ पर त्रियोले से हैं ओम साईराम आपको, भाई सूरज शर्मा, सजादा परिवार के लिए. तो बस 5499129 पर आपका नाम भी जोड़े जाते हैं. लालमाची से हैं आप मुकेश और साधना जी. और आज मिस्टर चोनी फ्रॉम खुशबा कहते हैं कि डूइंग थिंग्स फ्रॉम द हार्ट इज नेवर अ लॉस. अ वेरी गुड मॉर्निंग, दैट्स ट्रू. दिल से जो भी आप कहते हैं, छोटा सा शब्द ही क्यों ना हो, एक स्माइल ही क्यों ना हो, जो भी आप कहते हो, कहते हैं ना दिल से प्रार्थना करेंगे तो पत्थर भी बिखर जाता है. तो बस जो भी कहे दिल से कहें, जो भी करें दिल से करें.

मौसम सुहाना है क्योंकि ये जो गाने हैं आपके साथ हम सब के साथ है लेकिन बाहर का मौसम ओहो इतना खराब है. अब्दुल अंसारा बानो गुड मॉर्निंग आपको एंड जितने भी लोग काम पर जा रहे हैं प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ्स बी केयरफुल ऑन रोड यहाँ पर कह रहे हैं टोनी जी एंड साथ देने के लिए थैंक यू सो मच. कैसे है नीतू बिल्कुल ठीक ठाक. आपके नाम सरोज राजन मोनिका उमेश पूनम उर्वशी साथ में मुकेश वाला गाना आपको अच्छा लगा थैंक यू सो मच. बस ऐसे ही प्यार से साथ निभाते रहिएगा और 549-9294 पर प्यारे प्यारे गाने आप तक पहुंचाते रहेंगे.

आप एक कोशिश तो कीजिए ना, प्यार बिखेरिएगा जरूर, प्यार बांटिएगा डेफिनेटली, उससे भी ज्यादा प्यार आपको मिलेगा। 5:40 थैंक यू सो मच हाँ हमारे हम सफर बनने के लिए। बस थोड़ी देर में आपका हॉरोस्कोप है। वेरी गुड मॉर्निंग आपको जाना एंड आपके पूरे सुसरण परिवार फ्लैग से साथ देने के लिए थैंक यू सो मच अपाजू फैमिलीज। और आप है दारवन श्वेता रविश प्रीशा लव शाह, गुड मॉर्निंग आपको भी। शमी जी का गाना आपको अच्छा लगा, लेस्पेरेंस ट्रिब्यूशे से है। आपके नाम शीला जी।

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: And as usual, आपके साथ शुरुआत करते हैं.
2: Aries मेष राशि.
1: आज मन कुछ ज्यादा ही चंचल रह सकता है. भावनाओं में बहकर लिया गया कोई फैसला बाद में परेशानी खड़ी कर सकता है. That's why जरूरी है कि बड़े निर्णय माने कि decisions लेते समय दिल के साथ दिमाग को भी आप सुनते चले.
2: टॉरस वृषभ राशि.
1: घर परिवार से जुड़े मामलों में आज थोड़ी बेचैनी महसूस हो सकती है. भूमि मकान या वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो कुछ अड़चन सामने आ सकती है. वैसे आपका और बड़ों का स्वास्थ्य, खास माताजी का स्वास्थ्य भी ध्यान मांग रहा है. मन में चिंता बनी रह सकती है. हालांकि व्यापार की स्थिति संभली हुई नजर आएगी.
2: जेमिनी मिथुन राशि.
1: आज आपका साहस और पराक्रम आपको आगे बढ़ाएगा, लेकिन जरूरी से ज्यादा उत्साह भी नुकसान करा सकता है. किसी काम को साबित करने की जिद में अपनी क्षमता से अधिक दबाव न डाले. ना कान या गले से जुड़ी परेशानी परेशान कर सकती है. मौसम का असर है, सो जस्ट बी वेरी केयरफुल.
2: कैंसर कर्क राशि.
1: वेल, आज पैसों के मामलों में थोड़ी सावधानी समझनी है और समझानी भी है, और बस समझदारी आपको लेनी है. लेन देन और निवेश से दूरी बनाए रखना बेहतर रहेगा, क्योंकि धन हानि की आशंका बन रही है. मुंह या दांत से जुड़ी परेशानी हो तो बिल्कुल लापरवाही ना करें, और जरूरत पड़ने पर आप चिकित्सीय सलाह जरूर लें. प्रेम और संतान के मामले में सुखद स्थिति बनेगी.
2: लियो सिंह राशि.
1: Alright, आज मन में घबराहट और बेचैनी कुछ ज्यादा रह सकती है. छोटी छोटी बातों का मानसिक दबाव ना बनने दें और खुद को आराम देने का प्रयास करें. राहत की बात यह है कि प्रेम और संतान से जुड़े मामलों में परिस्थितियां काफी अच्छी रहेंगी.
2: वर्गो कन्या राशि.
1: आज अनावश्यक खर्च आपकी चिंता बढ़ा सकते हैं, इसलिए जरूरत और इच्छा के बीच फर्क समझकर ही पैसा खर्च करें. सिर दर्द या फिर आंखों से जुड़ी परेशानी

0: परेशान कर सकती है, मन में किसी अनजाने डर या मानसिक दबाव का असर भी दिखाई दे सकता है।
1: लिब्रा तुला राशि।
0: वेल, आज आपकी आर्थिक स्थिति में नया मोड़ आ सकता है, कमाई के नए रास्ते खुलेंगे और पुरानी परेशानी या फिर निवेश से भी फायदा आपको मिलने की संभावना है। यात्रा थोड़ी थकाऊ या परेशान करने वाली हो सकती है, बट इससे कोई महत्वपूर्ण लाभ भी आपको मिल सकता है।
1: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि।
0: बी केयरफुल, कोर्ट कचहरी या कानूनी विवाद से जुड़े मामलों में उलझन बनी रह सकती है। किसी मामले में तुरंत और स्पष्ट जीत मिलने की उम्मीद कम है, इसलिए धैर्य बनाए रखना बहुत जरूरी है। जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला लेने से बचें और संतान, प्रेम या व्यापार के मामले में दिन काफी मिला जुला रहेगा।
1: सजिटेरियस धनुराशि।
0: आज यात्रा करते समय विशेष सावधानी रखें, क्योंकि सफर से परेशानी या नुकसान की आशंका है। केवल भाग्य के भरोसे कोई महत्वपूर्ण काम शुरू करना उचित नहीं है। किसी स्थिति में मान सम्मान को लेकर चिंता या अपमान का भय मन को परेशान कर सकता है। वैसे स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, जबकि प्रेम और संतान से जुड़े मामलों में अच्छी खबर मिल सकती है।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि।
0: आज परिस्थितियां आपके पक्ष में आसानी से आती नजर आ रही है, इसलिए जोखिम उठाने के बजाय समझदारी से कदम बढ़ाना बेहतर रहेगा। किसी भी बड़े निवेश, विवाद या जल्दबाजी वाले फैसले से दूरी रखें। प्रेम और संतान का साथ आपको मानसिक राहत देगा और व्यापार भी ठीक ठाक चलेगा।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि।
0: आज जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है, इसलिए उनकी सेहत को नजरअंदाज ना करें। प्रेम और संतान से जुड़े मामले संतोषजनक रहेंगे। व्यापार में भी स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन नौकरी पेशा लोगों को कार्यस्थल पर कुछ नुकसान या परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
1: पाइसेस मीन राशि।
0: आज का दिन थोड़ा परेशान करने वाला रह सकता है। स्वास्थ्य के साथ साथ प्रेम और संतान से जुड़े मामलों में भी उतार चढ़ाव महसूस हो सकता है। मन को शांत रखना, छोटी बातों को जरूरत से ज्यादा गंभीर न बनाना ही बेहतर रहेगा। व्यापार की स्थिति फिलहाल सामान्य बनी रहेगी और बस अपनी सोच को सकारात्मक रहे। Be safe, stay safe, and have a good day ahead.
2: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.

5:57, 6 बजे आप सुन पाएंगे संक्षिप्त समाचार। तब तक लेट मी विश हैप्पी बर्थडे टू यू नीतिशा श्यामलाल, पापा संजीव, माँ अनीता, भाई दुशल, निहाल, श्यामलाल परिवार, आमिचे से पूरे परिवार की तरफ से ढेर सारा प्यार। मॉम, ब्रो, सिस्टर्स अश्विनी, अविशा एंड सोनम भोला आपके नाम। इक्वली गोज़ आउट टू यू मिस्टर गुलाब जगा सिंह, आपके पूरे परिवार के नाम।

0: welcome to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
0: Radio Masti.
1: North, South,
0: 103.5.
1: East, West,
0: 96.4.
1: Center,
0: 99.4.
3: RM2, Radio Musty.
0: Radio Musty.
3: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
4: आइए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे करुणा. नमस्कार आपको.
5: नमस्कार नीतुषा, सभी को नमस्कार. मॉरिशस बॉ काउंसिल ने गुलशन गोविंद के वकील रोबेन बोहंगा पिले की ओर से की गई शिकायतों के बाद प्रतिक्रिया दी है. एक बयान में बॉ काउंसिल ने उन आरोपों को गंभीरता से लेने की बात कही जिनके अनुसार कुछ पुलिस अधिकारियों ने गुलशन गोविंद पर अपने वकील को बदलने के लिए दबाव डालने या उन्हें प्रभावित करने की कोशिश की है. मॉरिशस और अरिक्स में फिलहाल 2,73,000 से अधिक लोग बेसिक रिटायरमेंट पेंशन प्राप्त कर रहे हैं. आम की गई सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई है. 13 वर्षों के बाद नेशनल इनिशिएटिव फॉर सिविक एजुकेशन की वापसी हुई है. इस पायलट परियोजना के लिए ग्रेड 8 के 200 बच्चे 2 हफ्तों तक कई विषयों के बारे में सीखेंगे. अनुशासन, सेवा भाव, जिम्मेदारी और सह अस्तित्व, सब्जियों पर ठंड का असर और इसका असर कीमतों पर भी पिछले कुछ दिनों से उपभोक्ताओं को बाजार से लेकर सुपरमार्केट तक सब्जियों के लिए ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है. और विदेश में अमेरिका में ब्याज दरों में 3 साल से अधिक समय बाद पहली बार बढ़ोतरी की गई है. फेडरल रिजर्व ने सर्वसम्मति से ब्याज दर को 3.5 से 3.75% से बढ़ाकर 3.75 से 4% कर दिया. और अब मौसम की रिपोर्ट. मॉरिशस के लिए ऊंची लहर की चेतावनी जारी है जो कि आज दिन के 10 बजे तक लागू रहेगी. मस्करिंस के दक्षिण पूर्व में पाए जाने वाले काफ़ी ज़ोरदार आंटी साइक्लोन की वजह से हमारे इलाके पर तेज़ और ठंड हवा पाई जा रही है और इन हवाओं से जुड़े बादल रह रहकर हमारे मौसम को प्रभावित करेंगे. अनुमान है कि सुबह के वक्त और दिन के दौरान भी आसमान में बादल घिरे रहेंगे जो रह रहकर घने हो जाएंगे और जहां तहां बारिश होगी, खासकर पूर्व, दक्षिण एवं ऊंचाइयों पर. सुबह के वक्त कुछ इलाकों में तेज़ बारिश भी हो सकती है. तापमान

0: सेंट्रल प्लाटो पर न्यूनतम 16 से 18, अधिकतम 18 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच, शहरी इलाकों में न्यूनतम तापमान जो है 20 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और अधिकतम 24 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास। पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जिसके झोंके कुछ इलाकों में 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकते हैं। समंदर खराब रहेगा, दक्षिण पश्चिम में लहरें 4 मीटर तक हो सकती हैं। और अतिरिक्त जानकारी में ये भी बताया जाता है कि उच्च ज्वार के समय निचले इलाकों में खासकर पश्चिम और दक्षिण में तटों पर भी बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है, इसलिए मछुआरों, मनोरंजन नौकाओं और आम जनता से ज़ोरदार अपील की जाती है कि समंदर में न जाए और साथ में ज्वार के वक्त इन तटों से भी दूर रहे। तो पूरा समाचार बुलेटिन 6:30 बजे, तब तक के लिए अनुमति दें, नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: Rise and shine, start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
3: Radio.

इधर ही होगा या तो किसी खास के पास होगा, बस ढूंढने की देरी है। 6:10 वेलकम बैक वंस अगेन, ढेर सारा प्यार, अ वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। इट्स योर राइज एंड शाइन ऑन रेडियो मस्ती, हैप्पी बर्थडे नीतिशा श्यामलाल। चलिए आपको वंस अगेन मैसेजेस तो भर भर के आ रहे हैं, क्या बात है, इतना प्यार। आकाश एंड मनसुख फैमिली बॉबू से गुड मॉर्निंग, एंड ट्विंस है श्रवण एंड श्रवणी, बेस्ट विशेस टू यू 40th बर्थडे टुडे। सचिन, काजल, अहान, दादी चंद्रानी, नानी ललिता, बिचू परिवार, पुत्र दो विलाश की तरफ से आपको ढेर सारा प्यार। आज जिसे साथ निभाते हुए हमारे साथ जुड़ चुकी है हेमा, साथ में स्वीट पारुषी, परिधि, प्रीतमी, प्रिया, निशिका, हमारे पूरी टीम के नाम, थैंक यू। लवली गाने ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती, कैथो बोन से पूरे परिवार के नाम, वेलकमिंग यू इन माय किचन, क्या बात है, गर्मा गर्म चाय के साथ, आहा, जरूर आ रही हूँ। ये है आपके नाम मसुया बिहारी फ्रॉम कोंगमा, आपके पूरे परिवार के लिए, एंड जितने भी दोस्त इस वक्त काम पर जा रहे हैं, यू आर हिटिंग द रोड, प्लीज ड्राइव केयरफुली।

लवली रोमांटिक सॉन्ग्स इस रोमांटिक वादा में. रेखा है, कैसे हैं बेटा? अंश पोंबोजे से पूरे परिवार के नाम. आई नो ग्रेट फैन ऑफ कुमार सानू. बहुत सारे दोस्त इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं. सो 5499 1294 पर आपका स्वागत है.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: जब आप सामने हो ना हो लेकिन आपकी प्रेजेंस जो है एकदम काम कर जाती है. कविता गुड मॉर्निंग. नमस्कार कैसे हैं. एंड यहाँ पर भाई सर्वेश रूप नारायण का जन्मदिन है. ढेरों शुभकामनाएं आपको और आप हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे, सफल रहे. और पूरे परिवार की तरफ से खास आपकी बहन दिशा, प्रियंका, मालता, गातू, भाई केशव, यश, जीजू पुष्कर और सभी रूप नारायण, किरोधर, गुरदी परिवार पेचित गिव्या, कोतेज गिव्या जगौंपाओ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं. 6:24 6:30 बजे आप सुन पाएंगे पूरा समाचार बुलेटिन. उसके बाद मॉर्निंग भी.

आपके इतने सारे मैसेजेस अब आ रहे हैं, चलिए आपको चलते चलते विश कर दे हैप्पी बर्थडे नहीं लेकिन अ वेरी गुड डे टू यू हुदा हिबत वाला एंड राइज नंदुल फैमिली क्यू पिप से, थैंक यू सो मच। बस आप भी खुश हो जाते हैं अपना नाम सुनकर, तो हियर यू आर।

नमस्कार, सबसे पहले आज की सुर्खियां। एक बयान में बॉ काउंसिल ने उन आरोपों को गंभीरता से लेने की बात कही जिनके अनुसार कुछ पुलिस अधिकारियों ने गुलशन गोविंद पर अपने वकील को बदलने के लिए दबाव डालने या उन्हें प्रभावित करने की कोशिश की। मॉरिशस और रॉड्रिक्स में फिलहाल 2,73,000 से अधिक लोग बेसिक रिटायरमेंट पेंशन प्राप्त कर रहे। कुल आबादी के अनुपात में देखें तो ये संख्या लगभग हर 5 लोगों में से एक के बराबर। कुछ खास प्रकार के चूमे के इलाज के लिए एक नई तकनीक नानो नाइफ नेशनल कैंसर सेंटर में भी उपलब्ध कराई जा रही। सब्जियों पर ठंड का असर और इसका असर उनकी कीमतों पर भी। पिछले कुछ दिनों से उपभोक्ताओं को बाजार से लेकर सुपरमार्केट तक सब्जियों के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही। और विदेश में अमेरिका में ब्याज दरों में 3 साल से अधिक समय बाद पहली बार बढ़ोतरी की गई है। और अब समाचार विस्तार से। मॉरिशस बॉ काउंसिल ने गुलशन गोविंद के वकील रूबेन मोहंगा पिले की ओर से की गई शिकायतों के बाद प्रतिक्रिया दी है। एक बयान में बॉ काउंसिल ने उन आरोपों को गंभीरता से लेने की बात कही जिनके अनुसार कुछ पुलिस अधिकारियों ने गुलशन गोविंद पर अपने वकील को बदलने के लिए दबाव डालने या उन्हें प्रभावित करने की कोशिश की है। बॉ काउंसिल के सचिव वकील यतिन वर्मा के अनुसार यदि ये आरोप सही पाए जाते हैं तो मामले की जांच शुरू की जानी चाहिए ताकि घटनाओं की वास्तविक परिस्थितियों और संबंधित पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जा सके। उनका ये कहना है कि यदि आरोप साबित होते हैं तो पुलिस कमिश्नर को आवश्यक कार्रवाई और उचित प्रतिबंधात्मक कदम उठाने चाहिए। यतिन वर्मा ने सोशल मीडिया पर प्रसारित कुछ वीडियो का भी उल्लेख किया जिनमें रूबेन मोहंगा पिले को निशाना बनाया गया है। उनके अनुसार ये संभव है कि इन

0: पोस्टों को वकील को उनके पेशेवर कार्यों के दौरान अस्थिर या दबाव डालने के उद्देश्य से आयोजित किया गया हो। गौरतलब है कि वकील रूबेन मोहंगा पिले गुलशन गोविंद का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये जांच रीनियन और मॉरिशस के बीच कथित तौर पर 155.7 किलो गांजा आयात किए जाने के मामले से जुड़ी हैं। वकील यतिन वर्मा से बात की अदगियां वालिया ने विवरण रजनी बिकर का।
1: बार काउंसिल ने भी देखा कि कुछ चीजें हैं जो ठीक नहीं है, जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को खतरे में डाल रही है, अधिकारों को नुकसान पहुंच सकता है अगर ये बातें सच हुई तो। भविष्य में अदालत में ये देखना चाहिए कि एक वकील पूरी स्वतंत्रता से काम कर सके और पुलिस के हस्तक्षेप के बिना कार्य कर सके, क्योंकि एक वकील के काम करने का अपना तरीका होता है। साथ ही कैदियों के भी अधिकार हैं जिनका पालन करना चाहिए। सोशल नेटवर्क पर कुछ वीडियोस डाले गए हैं जिनमें मोगोंगा पिले जी की निंदा की जा रही है जब वे अपना काम कर रहे हैं। ये स्पष्ट है कि ये वीडियोस लोगों द्वारा तैयार है। एक बार फिर से न्यायपालिका की स्वतंत्रता खतरे में है, अधिकारियों को इस पर जांच करनी चाहिए, तब अधिकारियों और पुलिस को कदम उठाने चाहिए, पुलिस कमिश्नर को भी और संबंधित कदम उठाने चाहिए।
0: खबरों में आगे, मॉरिशस और रोइक्स में फिलहाल 2,73,000 से अधिक लोग बेसिक रिटायरमेंट पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। आम की गई सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई है। इनमें 5,300 से अधिक लोग 90 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं, जबकि इनमें 242 लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 100 वर्ष या उससे ज़्यादा है। रिपोर्ट में अंशदायी पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों के साथ साथ विभिन्न सामाजिक भत्ते पाने वाले लोगों का भी आंकड़ा शामिल है। ये आंकड़े ऐसे समय सामने आए हैं जब मॉरिशस में जल्द ही स्टेट एज पेंशन व्यवस्था की ओर बदलाव होने वाला है। रजनी बिकर।
1: अगस्त महीने के अंत तक 2,73,021 लोगों को रिटायरमेंट पेंशन प्प्राप्त होता था। मॉरिशस में 2,66,977 और 6,044 रोड्रिक्स में 2,67,686 लाभार्थी हैं, जिनमें 60 और 89 वर्ष की आयु के बीच के लोगों को 15,555 रुपये मिलते हैं मासिक तौर पर। 5,093 लोग 90 और 99 वर्ष की आयु के बीच के हैं, जिन्हें 23,550 रुपये, और 242 ऐसे लोग हैं जो 100 वर्ष के हो चुके हैं और उन्हें 28,735 रुपये मिलते हैं। ये भी पाया गया कि 21,389 रिटायर्ड लोग हैं जो गंभीर रूप से विकलांग हैं और उन्हें अतिरिक्त रूप से 3,500 रुपये प्राप्त होते हैं। कंट्रीब्यूटिव स्कीम के लिए 1,73,246 लाभार्थी। अगस्त महीने में 9,334 लोग वॉलंटरी रिटायरमेंट पेंशन से लाभ उठा रहे थे। ये आंकड़े ऐसे समय पर नोट किए जा रहे हैं जब पहली जनवरी 2027 में BRP की जगह पर स्टेट एज पेंशन आएगा। सरकार ने बजट में आखिरकार मींस टेस्ट त्याग दिया है। याद रहे कि स्टेट एज पेंशन 60 वर्ष के लोगों के लिए उपलब्ध होगा, लेकिन मासिक तौर पर 0.5% की कमी के साथ अगर लागू पेंशन उम्र से पहले पेंशन प्राप्त कर रहे हों तो। अभी 65 वर्ष की ओर ट्रांजिशन की ओर बढ़ रही है।
0: तो अगस्त के अंत तक मॉरिशस में 2,73,021 लोग बेसिक रिटायरमेंट पेंशन प्राप्त कर रहे थे। ये स्टेट एज पेंशन लागू होने से पहले का आखिरी आधिकारिक आंकड़ा है। नई व्यवस्था अगले साल 1 जनवरी से लागू होने वाली है। कुल आबादी के अनुपात में देखें तो ये संख्या लगभग हर 5 लोगों में एक व्यक्ति के बराबर है। आंकड़ों में देश के बढ़ती उम्र दराज आबादी की तस्वीर भी दिखाई देती है। लेकिन सवाल सिर्फ पेंशन पाने वालों की संख्या का नहीं है, सवाल ये भी है कि मौजूदा पेंशन व्यवस्था का सरकारी वित्त पर

0: कितना बोझ है और प्रस्तावित सुधार के लागू होने के बाद वास्तव में क्या बदलाव आएगा, इसी पर अर्थशास्त्री अमित भकेरता से बात की शैली निर्बन ने, उनको सुनते हैं।
1: En introduisant une pension complète à un âge progressivement porté à 65 ans, une décote de 0,5% par mois en cas de départ anticipé, une majoration en cas de report. Elle améliore donc l'équité actuelle et ralentit quelque peu la progression des dépenses. Toutefois, cette réforme, dans son état actuel, réaménage principalement la pression démographique au lieu de l'éliminer. Alors, plausiblement, sans meilleur ciblage des retraités aisés, financement contributif plus robuste, dépassant 35%, probablement beaucoup plus que ça, constitution des réserves et ajustement régulier de l'âge d'éligibilité à l'espérance de vie, mais surtout une réforme dans la gestion et dans l'allocation des classes d'actifs d'investissement.
0: 13 वर्षों के बाद नेशनल इनिशिएटिव फॉर सिविक एजुकेशन की वापसी हुई है। इस पायलट परियोजना के लिए ग्रेड 8 के 200 बच्चे दो हफ्तों तक कई विषयों के बारे में सीखेंगे। अनुशासन, सेवा भाव, जिम्मेदारी और सह अस्तित्व। बाद में ये प्रोग्राम अन्य नौजवानों के लिए भी चलाया जाएगा। विस्तार अनाबेल वुल्बे और याचना मिश्रा के साथ।
2: नेशनल इनिशिएटिव फॉर सिविक एजुकेशन की वापसी की तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। आज सुबह से प्रशिक्षकों के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हुआ है। 16 से 28 नवंबर तक इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले युवाओं का मार्गदर्शन करने के उद्देश्य से इस पहले संस्करण में ग्रेड 8 के 200 विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। देश के निर्माण के लिए एक ऐसा प्रोग्राम सहायक होगा जो नौजवानों को साथ ले आए ताकि वे सीखने के साथ साथ जिम्मेदारियों का अनुभव कर पाएं। संविधान या सरकारी ढांचों के बारे में जानने के अलावा वे देशभक्ति के बारे में भी सीख पाएंगे। ये कार्यक्रम 2 चरणों में है। पहले सप्ताह में देश के 4 क्षेत्रों में विभिन्न गतिविधियाँ और प्रशिक्षण होंगे। दूसरे सप्ताह में रेजिडेंशियल कार्यक्रम होगा। हम नौजवानों को सामाजिक कार्यों में संलग्न होने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, कैसे वे नेक कार्य के लिए साथ आ सकते हैं और एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान कर सकते हैं, हम ये सिखाएंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में जिम्मेदारी की भावना, टीम स्पिरिट और समुदाय के प्रति जुड़ाव विकसित करना है।
3: Ce qu'on attend, c'est que l'élève qui est allé suivre ce programme.
2: हम चाहते हैं कि छात्र खुद सीख कर दूसरों को समझाने में सक्षम हो। रेक्टर को भी नाइस में सिखाए गए मूल्यों की याद दिलानी होगी।
3: On a enseigné dans le nice. Donc, on voudrait que ce soit un rippling effect.
2: इस पायलट संस्करण में कई संस्थाएं शामिल हैं और निजी क्षेत्र की भी भागीदारी है। कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद इसका मूल्यांकन किया जाएगा ताकि इसकी प्रगति और संचालन की समीक्षा की जा सके और इसे ज्यादा छात्रों के लिए आगे बढ़ाया जा सके।
0: मॉरिशस को खुद को एक रिसर्च सेंटर यानी कि शोध केंद्र के रूप में स्थापित करना चाहिए और इस दिशा में SME अहम भूमिका निभा सकती हैं। ऐसा इंडियन ओशन अफ्रीका कंसोर्टियम के अध्यक्ष भूपेन डुबा का मानना है। उनके मुताबिक अब समय आ गया है कि SMEs को आने वाले बदलावों के लिए तैयार किया जाए। ऐसे व्यवसायों को तेजी से बदलती तकनीक और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बढ़ती आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI की भूमिका के बीच खुद को नई परिस्थितियों के मुताबिक ढालने में सक्षम होना होगा। इसी सोच के तहत इस गुरुवार 17 सितंबर को थ्रोबिश में SMEs प्रिपेयर्डनेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट टूरिज्म एंड इकोलिविंग विषय पर एक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर मोएशिया अफ्रीका मार्केट प्लेस की भी शुरुआत की जाएगी। कुछ खास प्रकार के ट्यूमर के इलाज के लिए एक नई तकनीक अब मॉरिशस में भी उपलब्ध कराई जा रही है। नैनो नाइफ नामक ये तकनीक कुछ मामलों में पारंपरिक सर्जरी की ज़रूरत को टाल सकती है और फिलहाल नेशनल कैंसर सेंटर में

इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। मॉरिशस मूल के प्रोफेसर एडवर्ड लाम शांगलिन लंदन स्थित इंपीरियल कॉलेज में रेडियोलॉजी के प्रोफेसर और ब्रिटेन में नैनोनाइफ टेक्निक के शुरुआती विशेषज्ञों में से एक हैं। वे अपने अनुभव और विशेषज्ञता को साझा करने के लिए इन दिनों मॉरिशस में हैं। इस तकनीक में चूमर के आसपास बेहद पतली

0: ठीक होने में मदद मिल सकती है। सब्जियों पर ठंड का असर और इसका असर उनकी कीमतों पर भी। वस्तुतः पिछले कुछ दिनों से उपभोक्ताओं को बाजार से लेकर सुपरमार्केट तक सब्जियों के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। स्मॉल प्लांटर्स एसोसिएशन के सचिव कृपालु संगुन के मुताबिक दाम में ये बढ़ोतरी जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से जुड़ी है, जिसने खेती की परिस्थितियों को प्रभावित किया है। ठंड, तेज हवाएं और पानी की कमी के कारण पौधों की वृद्धि धीमी हो रही है और बाजार में उपलब्ध सब्जियों की मात्रा भी कम हुई है। नतीजन ज़्यादातर सब्जियों की कीमतों में महज दो हफ्तों में 15-30% तक की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि स्मॉल प्लांटर्स एसोसिएशन ने उपभोक्ताओं को भरोसा दिलाया है कि अक्टूबर के मध्य तक खेतों में सब्जियों की पर्याप्त उपलब्धता बनी रहेगी। कृपालु संगुन से बात की रजनी बिकर ने, उनको सुनते हैं।
1: जब ठंडा के मौसम बना ठंडा कर रहा था जो पेड़ पौधा वहा हम नहीं करता वो लोग के भी ठंडा लगला कठुआ गल उनसे भी ना उतना फूल पत्ता नहीं करता था उनसे। इस खातिर हमने देखा जा कि आगे चल के अभी 2-3 दिन में जो पोजिक्शन बाटे कमती हो गल ऑफिस अभी 15 दिन पहले हुए से ही कमती हो गल बाटी मौसम में जो कारो में भी बाटे खेती में बाहर जो पेड़ बाके पेड़ के लेगिम बाटे लत्ती के लेकिन बाटे ई कमती हो गल बाटे में जो माटी के तरे के लेकिन बा वो अभी बा जैसे देख बड़ी कागज बाटे ढेर बहुत कागज बाटे मौसी बहन अरुई बाटे वियोलेट बाटे आलू बाटे डेरा बा अभी मौसम में जो पेड़ के पौधा पेड़ के लेगिम हा जैसे बैगन बा पीमा नामू बाटे या लत्ती के बाटे कदुआ बा करेला बाटे वोम बाटे आरिको बाटे ये सब थोड़ा महंगा हो गल बाटे ठंडा के कारण। अब जो मौसम अभी चला था अभी हवा हवा ढेर बा हवा करेला तब पत्ता के फाड़ देवेला और फूल के झरा देवेला तो ये सब के कारण दिखवा जा आज अभी थोड़ा कुना बढ़ती हो गल बाटे प्री में मैं सकेला हरीला से चाचुआ एगो 15-20 दिन और चली मैं जैसे साले गति गति हो अब अक्टूबर में तो सब हुई वन लेगी मन फिर उससे नॉर्मल हो जाए ने आगे चल के 2-3 महीना के बाद में जिससे बहाबी बोले कि पसकिलासेस में देख लब सा और जिससे रही पानी नहीं बची तब भी कुछ सब प्रॉब्लम रही मैं अभी से 15 दिन ले पीवा तनी प्लीज उमाया ऐसी ही नहीं तनी मांगा रही लेकर बाद में प्लीज उमाए नॉर्मल हो जाए जिससे तनी सालिया मोहम्मद हुई था।
0: विदेशी स्तर पर अमेरिका में ब्याज दरों में 3 साल से अधिक समय बाद पहली बार बढ़ोतरी की गई है। बढ़ोतरी महंगाई पर काबू पाने की कोशिश में दरों में आगे भी इजाफा किया जा सकता है। हालांकि इस फैसले का अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कड़ा विरोध किया था। उन्होंने ब्याज दरों में कटौती की मांग की थी और ये भी खबर में आज 17 सितंबर को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। वे अपना 76वां जन्मदिन मना रहे हैं। श्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर कई बीजेपी द्वारा कई सेवा कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। अवसर पर शुरू होने वाला है सेवा संकल्प अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा। ये इस दौरान रक्तदान शिविर स्वास्थ्य जांच पौधारोपण और जनसंपर्क गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। मौसम का हाल, मॉरिशस के लिए ऊंची लहर की चेतावनी जारी है जो कि आज दिन के 10 बजे तक के लिए लागू है। दूसरी तरफ मस्करिन्स के दक्षिण पूर्व में स्थित एक काफ़ी ज़ोरदार एंटीसाइक्लोन की वजह से हमारे इलाके पर तेज़ और ठंड हवा पाई जा रही है और इन हवाओं से जुड़े बादल रह रहकर हमारे मौसम को प्रभावित कर रही हैं। अनुमान है कि सुबह के वक्त और दिन के दौरान भी आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे जो रह रहकर घने हो जाएंगे।

जहां तहां बारिश होगी, खासकर पूर्व दक्षिण एवं ऊंचाइयों पर। सुबह के वक्त कुछ इलाकों में कभी कभी मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। आज रात के दौरान भी पूर्व दक्षिण एवं सेंट्रल प्लाटू पर जहां तहां बारिश होने की उम्मीद है। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम 16 से 18, अधिकतम तापमान 24 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। तटवर्ती इलाकों में न्यूनतम तापमान 18 से 22 और अधिकतम 24 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जिसकी झोंके कुछ इलाकों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती हैं। समंदर बहुत खराब रहेगा। प्रवाह रेखा से परे दक्षिण पश्चिम में लहरें 4 मीटर तक उठ सकती हैं और उच्च ज्वार के समय निचले इलाकों में, खासकर पश्चिम और दक्षिण में तटों पर बाढ़ की स्थिति भी पैदा हो सकती है। ऐसे में मछुआरों, मनोरंजन नौकाओं और आम जनता से जोरदार अपील की जाती है कि समंदर में न जाए और उच्च ज्वार के समय इन तटों से भी दूर रहे। और आज सूर्योदय हुआ 6:04 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:04 पर ही।

0: खबरों के अंत पर सुर्खियां अखबार फिर से। एक बयान में बॉ काउंसिल ने उन आरोपों को गंभीरता से लेने की बात कही जिनके अनुसार कुछ पुलिस अधिकारियों ने गुलशन गोविंद पर अपने वकील को बदलने के लिए दबाव डालने या उन्हें प्रभावित करने की कोशिश की है। मॉरिशस और रॉड्रिक्स में फिलहाल 2,73,000 से अधिक लोग बेसिक रिटायरमेंट पेंशन प्राप्त कर रहे। कुल आबादी के अनुपात में देखें तो ये संख्या लगभग हर 5 लोगों में से एक व्यक्ति के बराबर। कुछ खास प्रकार के ट्यूमर के इलाज के लिए एक नई तकनीक नैनो नाइफ नेशनल कैंसर सेंटर में उपलब्ध कराई जा रही। सब्जियों पर ठंड का असर और इसका असर कीमतों पर भी। पिछले कुछ दिनों से उपभोक्ताओं को बाजार से लेकर सुपरमार्केट तक सब्जियों के लिए ज्यादा दाम चुकाने पर है। विदेश में अमेरिका में ब्याज दरों में 3 साल से अधिक समय बाद पहली बार बढ़ोतरी की गई। बढ़ती महंगाई पर काबू पाने की कोशिश में दरों में आगे भी इजाफा किया जा सकता। तो अभी के लिए खबरों में इतना ही, कुछ ही समय बाद शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.
0: गुट रॉयल मेबर्ग में 59 साल के 59-year-old श्री देवराज वेनक्या जो राजेश से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सुपहर 3 बजे इनकी पत्नी श्रीमती पिंकी वेनक्या के मकान रॉयल रोड मेबर्ग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पॉइंट मुकीज की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुडे एट 3 PM। गांधी रोड मोरालबेया में 71 साल की 71-year-old कुमारी राजमुनी गुमानी जो कुमारी से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2 बजे इनके मकान गांधी रोड मोरालबेया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्रणमानियों की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुडे एट 2 PM। क्वींसलैंड मोंटाई ब्लांच में 67 साल की 67-year-old बीबी फातमा अजीर पैदाइश नाम नोटू जो फातमा से जानी जाती थी इंतकाल कर गई हैं। जनाजा आज दिन के 12:30 इनके बेटे मोहम्मद रेजा अजीर के मकान क्वींसलैंड मोंटाई ब्लांच से निकालकर दफनाने के लिए मोंटाई ब्लांच का ही कब्रिस्तान ले जा जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 9:30। मुस्के गली रिश्मा फ्लाक में 96 साल की 96-year-old बीबी

Aisa Nusia, Bibi Aisa Nusia, پیدائش نام داروغا جو آئیسو سے جانی جاتی تھی انتقال کر گئی ہیں۔ جنازہ آج دن کی ساڑھے دس بجے ان کے بیٹے نوریشان نوزیا کے مکان مسکے گلی غشماؤ فلاک سے نکال کر دفنانے کے لیے غشماؤ کا قبرستان لے جایا جائے گا۔ فنورل ٹوڈے ایٹ ہاف پاسٹ ٹین اے ایم۔ امپاس سپرے पायुत में 84 साल की 84 ईयर ओल्ड श्रीमती मंगलावती रामबुरन, श्रीमती मंगलावती रामबुरन पैराशना भोईरू जो मंगलावती से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के डेढ़ बजे इनके बेटे हेमचंद रामबुरन के मकान एपासिपे तीन पायुत से उठाकर दाह संस्कार के लिए सुल्फेरिनो बालांस की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टू डेथ हाफ पास्ट 1 PM। शेक्सपियर गली फोंजुसाक में 77 साल की 77 ईयर ओल्ड श्रीमती वसंती भोगीरथी, श्रीमती वसंती भोगीरथी पैदाइश नाम अनन जो ज्ञानती से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के एक बजे इनके बेटे सूरज भोगीरथी के मकान शेक्सपियर गली फोंजुसाक से उठाकर दाह संस्कार के लिए तेमिनिस थ्रियोले की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। मोसेलमो पिरन वाकुआ में 84 साल के 84 ईयर ओल्ड श्री बासदेव बिलू जो सुरेश से जाने जाते थे और ये पहले हेडमास्टर थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 11:30 बजे इनके मकान नंबर 14 रुत निकोलसन मोसेलमो पिरन वाकुआ से उठाकर दाह संस्कार के लिए सुल्फेरिनो की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टू डेथ हाफ पास्ट 11 AM। रॉयल रोड सेंट जूलियन डुटमो में 81 साल के 81 ईयर ओल्ड श्री गोपाल स्वामी सोमाडू जो मामे सिंगाहों से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सुपहर 3 बजे इनकी पत्नी श्रीमती निर्मला सोमाडू के मकान ओटवायाल सेंट जूलियन डुटमो से उठाकर दाह संस्कार के लिए मेजिन कॉडेमास्क की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। स्कूल लेन रिविया डे क्रियोल में 67 साल की 67 ईयर ओल्ड श्री प्यारे लाल कुपन जो अजय से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 10:30 बजे के मकान स्कूल लेन रिविया डे क्रियोल से उठाकर दाह संस्कार के लिए टोंबो मेबर की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टू डेथ हाफ पास्ट 10 AM। रुट 15 रुट रॉयल प्रोविडेंस में 87 साल की 87 ईयर ओल्ड जनाब हरुन सुधू जो बाय हरुन से जाने जाते थे इंतकाल कर गई हैं। जनाजा जिदिन के 11 बजे के बेटे बशीर सुधू के मकान रुत 15 रुट रॉयल प्रोविडेंस से निकाल कर दफनाने के लिए आलमा का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 11 AM। एवेन्यू डी रोश रुत बासें कथोबोन में 44 साल की 44 ईयर ओल्ड श्री गणेश गुहिराम जो खिशान से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2 बजे इनकी पत्नी श्रीमती बबीता गुहिराम के मकान एवेन्यू डी रोश रुत बासें कथोबोन से उठा के दाह संस्कार के लिए गांधी पालमा कथोबोन की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। रॉयल रोड बोबासे में 80 साल की 80 ईयर ओल्ड श्रीमती राजवंती हरुआ पैदाइश नाम भगवान सिंह जो राजवंती से जानी जाती थी और ये पहले डॉक्टर फेरिया स्ट्रीट ट्रेफ्लोरोजिल रहती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 1:30 बजे लाशापेल एलियनसन्स खुदवायाल बोबासे से उठाकर
दाह संस्कार

0: के लिए पालमा की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1:30 PM। तमिल टेंपल रोड क्लेमेंशा में 46 साल की 46-year-old श्रीमती सुचिता मूर्ति पैदाइश नाम गोपाल सिंह जो मीनाक्षी से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 10 बजे इनके मकान तमिल टेंपल रोड क्लेमेंशा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थुडोडूस की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुडे एट 10 AM। एमिली स्ट्रीट सेंसिलियर में 87 साल की 87-year-old श्रीमती चुरामन लोहर पैदाइश नाम दुखी जो मैडम जयराम से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन की 11 बजे के बेटे अजय लोहर के मकान एमिली स्ट्रीट सेंसिलियर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सेंसिलियर की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुडे एट 11 AM। अटलास रोड गुडलैंड्स में 72 साल की 72-year-old श्रीमती राजकुमारी बुंडा पैदाश नाम गोकुल जो अनीता से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 1 बजे इनके बेटे दिनेश बुंडा के मकान अटलास रोड गुडलैंड से उठाकर दाह संस्कार के लिए बहुश की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रमेशन टुडे एट 1 PM। और जानकी स्ट्रीट होशनुआ में 42 साल के 42-year-old श्री धूसन रिडोई जो जाकी से जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई है। अर्थी जो हैं आज दिन के 11:30 इनके पिता श्री धर्मवीर रिडोई के मकान जानकी स्ट्रीट होशनुआ से उठाकर दाह संस्कार के लिए होशनुआ की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। शोकग्रस्त इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति।
1: The Mauritius Broadcasting Corporation invites you to submit your bid for the provision of medical insurance cover for the period 2026-2027. The bidding document is available free of charge on the Procurement Policy Office website, publicprocurement.govmu.org. Please note that bids must be submitted exclusively by email to tender@mbc.mu. For queries, contact the Tender Committee on 402-8000, extension 427, or email bidsec@mbc.mu by 17th of September 2026. And remember, the deadline for submission is 24th September 2026 at 2 PM. Radio Musty. Sunday.

0: सारी मुश्किलों का काम तमाम। अब जब शुरू किया है अपना प्रोग्राम लेकर प्रभु का नाम।
1: मॉर्निंग बीट, ओह गॉड, वन मोर रिमिक्स, अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो।
2: RM2 रेडियो मस्ती इन द मिक्स।
0: ओए गुड मॉर्निंग आप सभी को। यस गुड मॉर्निंग मॉरिशस भाई। ऐसा है कि सुबह सुबह का टाइम है और हर किसी ने पकड़नी अपनी ट्रैफिक की लाइन है। आंखों में नींद है लेकिन रेडियो पर बॉलीवुड की सनशाइन है। गुड मॉर्निंग। चाय हो, कॉफी हो या फिर सिर्फ 5 मिनट और सोने देने वाला मूड, हम तो ये कहें कि वो 5 मिनट अब ऑफिशियली खत्म हो गए क्योंकि 7:07 यानी कि उठने का, भागने का, दौड़ने का टाइम। 17th of September, ladies and gentlemen, आज है World Patient Safety Day। बॉलीवुड की बात हो गई होगी लेकिन साथ में जरूरी है कि सेफ केयर फॉर लाइफ। चलिए बातें चलती रहेंगी लेकिन आप भी साथ देना ना भूलें। कुछ गेम्स है, कुछ मस्ती है, ये है जादू, गाने हैं चला दू। गुड मॉर्निंग।

0: प्यार और इश्क और मोहब्बत इसी की तो है जरूरत एवरी सिंगल डे। मस्त रहो, जबरदस्त रहो, अगस्त नहीं है सितंबर है, दिल से कहो।
1: रेडियो मस्ती।
2: Je sais ce qu'on va faire ce week-end.
3: Être bien sage.
2: Oui, mais aussi sauter sur des trampolines, plonger dans des piscines à boules et dévaler des toboggans lumineux. Parce que du 1er septembre au 31 décembre chez KFC, on reçoit un ticket pour Funtopia ou Gravity Max à Tribeca dans notre Tiki Fun Meal.
3: Ah ben, faudra être sage alors.
4: गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर अपनी पूजा को अधिक पवित्र और आनंदमय बनाएं और केजी क्लासिक प्योर घी के साथ एक सदी से भी ज्यादा भारत का असली घी मंडी पर उपस्थित है। इम्पोर्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय और रैपिड सर्विसेज।

0: Actu.
1: Radio Musty.
2: Avis à tous les amoureux des animaux. 17 au 24 septembre, rendez-vous chez Winners pour profiter de super offres sur une sélection de produits pour vos compagnons avec vos grandes marques préférées. Les 5 kg de croquettes Wagyu Kibble 10% gratuit à 572,95 € et le bol antidérapant de 14 cm à 119,95 €. Profitez également de nombreuses offres sur une sélection de produits du quotidien. Alors, ne manquez pas cette occasion de faire plaisir à vos petits compagnons et à toute la famille.
3: On est tous Winners.
4: Moments that matter with Sikom.
5: जिंदगी बहुत हाली आगे बढ़ेला हमनी के प्रोजे लंबिशियों आज सपना जोन हमनी देखी लाचा उस सब खातिर आज लेवल गल फैसला काल जाके बहुत अंतर करी तोहर कौये आगे बढ़ता तोहर लंबिशियों भी बड़ा हुआ था और आप अपन भविष्य के बारे में सोचा था पर काल जोन लम्हा तुहर खातिर मायना रखी ओकर खातिर एमएससी करे के बारे में सोच ले हवा एगो लाइफ इंश्योरेंस ई खाली तुहर परिवार खातिर सुरक्षा नहीं है बल्कि ई एगो बचत करे के अपन पैसा के फलित करे के और भविष्य खातिर आर्थिक रूप से तैयार होए के तरीका है एगो मकान किने के परियोजना लड़का के पढ़ाई एगो सुखद रिटायरमेंट या पूरा शांति से तुहर प्रोजेक्ट के साकार करे के

0: सिकोम के प्रस्तावित जीवन बीमा के संगे आप सकब आज ही से जैसन खुशी अपन भविष्य बनाए। काहे कि काल के बेहतर पल तोहर आज की तैयारी पर निर्भर बा। सिकोम के प्रस्तावित लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स पर जस्ती जानकारी खातिर हमनी के प्रतिनिधि से संपर्क कर या sikkim.mu पर जाइ। इमे नियम और शर्त भी लागू बा। सिकोम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला।
1: It was moments that matter with Sikkim. RM2 Radio Mus

0: A good beat for your morning show.
1: Come on.
0: RM2.
2: Radio Musti. जब इतनी ठंड चल रही हो, हवा चल रही हो, तो फिर लगता है कि सुबह उठना काफी मुश्किल हो जाता है। नहीं, जैसे आपने कभी नोटिस किया है कि दो तरह के लोग

0: होते हैं, सुबह के टाइम कुछ ऐसे होता है, एक जो अलार्म बजते उठ जाते हैं और दूसरे जो अलार्म को भी स्नूज करवा के इमोशनल डैमेज दे देते हैं, यानी कि 5 मिनट और बजा तो बजा फिर से बजो। लेकिन आज का रूल सिंपल है, बेड से निकलो, स्माइल करो और दिन को बोलो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
1: मॉर्निंग बीट, अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो। जेम्स
2: RM2 Radio Musty in the mix.

0: ओफ ये सुबह का ट्रैफिक, कभी यहाँ ले जाता हुआ कभी वहां ले जाता हुआ, लोग कभी कभी शॉर्टकट लेने के चक्कर में बुरे फंस जाते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि GPS भी कंफ्यूज हो जाता है कि रिकैलकुलेट करने में लग ही जाता है कि अगर आप ये रास्ता लेंगे तो मंजिल पर कब पहुंचेंगे। हम सोचते हैं कि भाई डेस्टिनेशन तो नहीं पता लेकिन पेट्रोल खत्म ना हो जाए। सीरियसली सुबह का एक छोटा सा रिमाइंडर, हर दिन का रूट परफेक्ट होना जरूरी नहीं, बस गाड़ी चलती रहनी चाहिए ये जरूरी है, और म्यूजिक अच्छा होना चाहिए जैसे RM2 पर हमेशा AM to PM। वैसे मैप्स भी बोलते हैं यू हैव अराइव्ड एट योर डेस्टिनेशन, बहुत अच्छा लगता है ना, और हम बोलते हैं भाई डेस्टिनेशन तो आ गई, अब पार्किंग कहाँ पर मिलेगी। तो बस इस वक्त स्टेयरिंग पे अपनी आंखें रखो रोड पर भी, और रेडियो पर मस्त म्यूजिक।
1: RM2, Radio Musti, in the mix.

0: to Radio Musti.
1: एगो लास्योरेंस लावी कौन जी है जे काल कुछ तोहरा हो जाए तो ई तोहर और तोहर परिवार खातिर एगो सुरक्षा है। पर जाने ला ई से तू एगो इन्वेस्टमेंट भी करे सकबा। सिकम मैक्स इन्वेस्टमेंट ऐसन कई गो ऑप्शन बा जोन बहुत फ्लेक्सिबल बाटी। तोहर महीना के पेमेंट के एगो हिस्सा तोहर लास्योरेंस लावी में जाए और दूसर हिस्सा तोहर पसंद के फोन में सकबा इन्वेस्टी करे जो निर्भर रही की आप कितना रिस्क ले सकबा। नतीजा एगो ऐसन लास्योरेंस जोन तोहर परिवार के सुरक्षा करी और तोहर निवेश योजना में भी कामे आई। सिकम के प्रस्तावित लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स पर जस्ती जानकारी खातिर हमनी के प्रतिनिधि से संपर्क कर या sikkim.mu पर जाइह। इमे नियम और शर्त भी लागू बा। सिकम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला।
2: सिकम ग्रुप, ए लाइफ टाइम कमिटमेंट।

0: और M2
1: रेडियो मस्ती
2: स्पोर्ट्स मैगजीन इज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेको द फ्लो एक्सपर्ट
0: स्पोर्ट्स न्यूज
1: रेडियो मस्ती इन द मिक्स।
2: चले भाई, स्पोर्ट्स की दुनिया में एंट्री मारने का वक्त हो गया है। कहां पर हो गया है अंधकार, कहां पर मच गया है हाहाकार। भाई अरविंद नमस्कार कीजिए, स्वीकार, गुड मॉर्निंग।
3: गुड मॉर्निंग आपको, गुड मॉर्निंग RM2 लिसनर्स। द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड, लुट गया मैनचेस्टर यूनाइटेड। प्रीमियर लीग हो या लीग कप, ओल्ड ट्रैफर्ड में एक के बाद एक सब लूट रहे हैं द रेड डेविल्स को। ओल्ड ट्रैफर्ड में अंधकार, ब्राइटन ने आकर यूनाइटेड की धज्जियां उड़ाई, बत्तियां बुझाई। इस बार कोई बहाना नहीं, 2-0 से आगे थी कागिक की टीम, लेकिन ब्राइटन ने टन टनाटन 3 गोल स्कोर करके मैनचेस्टर यूनाइटेड को कागाबाओ लीग कप से बाहर फेंका। पहले 10 मिनट में शे लेसी और मेसन माउंट का एक एक गोल, 2-0 से यूनाइटेड आगे। पर यहां से लगा द रेड डेविल्स नींद में चल रहे थे, स्लीप वॉकिंग। हाफ टाइम से पहले शागलाम्पुस कोस्टुलास का एक गोल, फिर सेकंड हाफ में 4 मिनटों के अंदर अंदर 2 गोल। ओल्ड ट्रैफर्ड में सन्नाटा, क्यों ना हो, ऐसा पिछले 50 सालों में पहली बार हुआ है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड 2-0 से आगे होकर मैच हार जाए। फुल टाइम की सीटी बजी तो यूनाइटेड के फैंस अपनी नाराजगी दिखाने के लिए अपनी टीम को फटकारने लगे, बूज ऑल अराउंड, यहां तक कि गालियां भी गाने लगे। ब्राइटन के लिए सब ब्राइट चल रहा है, ओल्ड ट्रैफर्ड में आकर मैनचेस्टर यूनाइटेड को हराना, इससे बेहतर, इससे ब्राइट और क्या हो सकता है। माइकल कारिक गरम तेल में, संभलना होगा जल्दी, कहीं भजिया न बन जाए। अन्य मैचों में एवर्टन 1 वुल्वरहैम्प्टन वंडरर्स 0, इसमें चार्ली अल्कराज का गोल रहा सेकंड हाफ में। कोवेंट्री 1 अस्टन विला 3, अब्राहम का डबल, एक गोल बार्कले का। फ्लीटवुड टाउन 1 शेफील्ड यूनाइटेड 0। आज मैनचेस्टर सिटी का मुकाबला नॉर्विच सिटी से है। अगले राउंड के ड्रॉ भी निकाले गए लिवरपूल के लिए, एक और लंदन की मोटी हड्डी। इस बार लिवरपूल चेल्सी का स्वागत करेगा, फिर फ्लीटवुड वर्सेस आर्सेनल, एवर्टन का मुकाबला न्यूकासल यूनाइटेड से, संडरलैंड ब्रेटफोर्ड, ब्रैटफोर्ड पीटरबरो, फुलहम क्रिस्टल पैलेस, बोर्नमुथ एस्टन विला, मैनचेस्टर सिटी नॉर्विच सिटी और ब्राइटन, यानी मैनचेस्टर सिटी नॉर्विच सिटी में जिसकी भी जीत होगी उसका मुकाबला ब्राइटन से है। बाजार में कच्ची ताजी मूंगफलियां नहीं मिल रही हैं, पैकेट वाले से काम ही निकालना पड़ेगा। यूईएफए यूरोपा लीग के लीग स्टेज में एसी मिलान अपने मैदान में 2-0 से हार गया बेनफिका के खिलाफ। एसी मिलान 0 बेनफिका 2, अंडेलेक 1 ओलंपिक लियो 2। संडरलैंड की जीत, एजेड अल्कमार को 1-0 से हराया। स्टुमक्रास 0 रेन 0, ओलंपियाकोस 2 यागेलोनिया 1, अपोएल बेर्शेवा 0 दिनामो ज़ाग्रेब 0, बायर लेवरकुसेन 2 सेल्ये 0, ओमोनिया निकोसिया 1 सेल्टा वीगो 0 और स्पार्टा प्राग ने अरारात आर्मेनिया को 4-1 से हराया। आज के प्रमुख मैच, लेवस्की सोफिया रेडबुल साल्सबर्ग, बेसिक्तास मार्सेई, सेल्टिक फेरेनवारोस, क्रिस्टल पैलेस लेच पोजनन, यूवेंटुस खेलेगा NEC निगमेगन टीम के खिलाफ, रियल सोसिएदाद बोर्नमुथ। स्पेन के ला लीगा में बार्सिलोना सबको कुचल मचल रहा है। इस बार रेसिंग सांतोंडेर पर 7 गोल बरसे,

0: फाइनल में गए। अगला मैच वांडा के खिलाफ होगा। सो खेल समाचार में फिलहाल इतना ही। चलते चलते प्रमुख खबर फिर से बता दें, मैनचेस्टर यूनाइटेड फिर से बदनाम हुआ। इस बार वाव का बहाना नहीं, 2-0 से जीतते हुए 3-2 से हारना, ऐसा पहली बार हुआ है पिछले 50 सालों में। बहाना बनाना सब हो गलबा पुराना, इस बार वार नहीं केवल वार ही वार, दूसरा वार यानी प्रहार हुआ, तो जागना पड़ेगा यूनाइटेड वालों को, फिर देखेंगे क्या होगा। हैव अ वंडरफुल टाइम लिस्निंग RM12, आई कैच यू अगेन वेरी सून, टेक केयर, बाय बाय।
1: कमाल धमाल माला माल, हाँ ये सच बात है कि किसी किसी का हो जाता है कभी कभी बुरा हाल, लेकिन सबके साथ होता है भाई। जो नीचे गिरता है वो एक बार उठकर संभल कर एक बार फिर से समेट कर अपने आप को लेता है छलांग। आपसे ही करेंगे माँ की हिम्मत नहीं हारना। म्यूजिक कंटिन्यूज 7:45 इन द मॉर्निंग। थैंक यू सो मच अरविंद स्पोर्ट्स अपडेट्स के लिए।
2: दिस मैगजीन वॉज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेको द फ्लो एक्सपर्ट।
3: Pour donner vie à vos projets de rénovation, choisissez Quality Décor. Carrelage, quartz, granit, ardoise, slab, tout est là pour vous dans nos 12 showrooms répartis sur toute l'île. Besoin d'un petit coup de pouce? Nous offrons des facilités de crédit pour rendre vos rêves accessibles et un service de transport pour vous livrer à la maison. Venez découvrir nos produits de qualité tout en profitant des conseils de nos experts. Suivez-nous sur Facebook, Quality Décor, pour ne pas manquer nos offres exclusives. RM2 Radio Musti

0: दोस्तों की, फैमिली की, अपनों की बहुत जरूरत होती है ना। उसके बाद लाइफ इज ब्यूटीफुल वंडरफुल। 7:53। अरे किसी को बात करनी थी भाई।
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: चले अभी कोई लाइन पर है, उनसे हम जरूर बात कर लेते हैं और देखते हैं कि उस साइड पर स्टोरी क्या चल रही है। बहुत जरूरी है क्योंकि भाई मॉर्निंग मॉर्निंग किसी को सरप्राइज करने का मौका मिल जाए तो फिर अच्छा लगता ही है। हेलो हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग।
3: हेलो,
0: हाय, गुड मॉर्निंग।
3: हाय, गुड मॉर्निंग।
0: सो पता ही लगा कि किसी का आज बहुत स्पेशल डे है।
3: Oh, yeah, it's my birthday today.
0: Hey, Vanshika, happy birthday to you.
3: Thank you, thank you

0: सो मच.
1: अच्छा आपको पता है कि किसने ये सरप्राइज करने की कोशिश की होगी? हमने हमेशा देखा है कि वो टीवी सीरीज में सब गलत दिखाते हैं, ये सास बहू के बीच में खटर पटर तू तू मैं, लेकिन यहाँ पर जो प्यार मतलब सासू माँ ने बहू के लिए क्या प्लान कर लिया? राइट, सो बहुत सारा प्यार मदर लॉ रानी जी की तरफ से मेबर्ग में है, बहुत सारा प्यार एंड फ्रॉम द होल टीम हैप्पी बर्थडे टू यू वांशिका.

0: यू वांशिका फ्रॉम द होल टीम एंड मे गॉड ब्लेस. ऐसे ही खुश रहें, मस्त रहें. और अभी थोड़ा लेट हो गए तो जल्दी जल्दी तैयार हो जाए काम पर जाने के लिए भी. लेकिन गुड न्यूज़ दैट यू गेटिंग अ वाउचर फ्रॉम लोलो हाइपरमार्केट. बहुत सारा प्यार. अपने आईडी कार्ड के साथ दो दिन में आना होगा टू कलेक्ट दिस वाउचर. एंजॉय योर सेल्फ वांशिका.
1: Thank you so much. Thank you, Future Mode. I know, and thank you to the team as well.
0: Thank you. But you haven't told us what's the plan.
1: Oh, I'm just heading to university right now and maybe dinner later.
0: All right. So enjoy your special day. Ek baar phir se congratulations. Happy birthday.
1: Thank you so much.

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
0: Radio Masti.
1: North, South,
0: 103.5.
1: East, West,
0: 96.4.
1: Center,
0: 99.4.
3: RM2 Radio Musty.
0: Radio Musty.
3: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
4: हाई स्कूल सर्टिफिकेट यानी कि HSC की परीक्षा आज से शुरू हुआ था। ये बरिस 8000 से जस्ती उम्मीदवार HSC के परीक्षा में भाग लिया था। आज छात्र लोग फूड स्टडीज के परीक्षा दिया जा। परीक्षा के दौर विद्यार्थी खातिर बेहद अहम रहेला कहे कि HSC के नतीजा आगे की उच्च शिक्षा और करियर की दिशा तय करे में महत्वपूर्ण भूमिका निभावेला। कई महीना की तैयारी के बाद अब विद्यार्थी के सामने अपन मेहनत के परीक्षा हॉल में साबित करे की चुनौती है। प्रवीण जगन्नाथ आज दिन के 10:10 लाइन बाराक्स जयन पूर्व प्रधानमंत्री की CCID देने से चल रहा मुस्तासलीक मामला के जांच के सिलसिला में फिर से पूछताछ खातिर बुलावल गलबा। प्रवीण जगन्नाथ से कर से अगते 1 सितंबर के करीब 2 घंटा तक पूछताछ करल गल रहा। ये जांच कथित तौर पर संचार के इंटरसेप्ट करे खातिर इस्तेमाल करल जाए हुला उपकरण की खरीद और उड़कर संभावित इस्तेमाल से जुड़ल बा। जाँचकर्ता ई पता लगाए की कोशिश करत हवन जा कि उपकरण की खरीद के मंजूरी के दिले रहल और एकरा कौन उद्देश्य से इस्तेमाल करल जाए के रहल। ये मामला अक्टूबर 2024 से सामने आल कई गो ऑडियो रिकॉर्डिंग के बाद चर्चा में आल रहल। ई रिकॉर्डिंग के अलग अलग प्रमुख व्यक्ति के बीच कथित टेलीफोन बातचीत के रूप में पेश करल गल रहल। मॉरिशस बॉ काउंसिल गुलशन गोविंद के वकील रूबेन मोगुंगा पिले देने से कई गो शिकायत के बाद प्रतिक्रिया दे लाते। एक बयान में बॉ काउंसिल वो आरोप के गंभीरता से ले के बात कहलेबा जेकर अनुसार कुछ पुलिस अधिकारी गुलशन गोविंद पर अपन वकील के बदले खातिर दबाव डाले के या फिर उनकरा प्रभावित करे के कोशिश कर लेबा। बॉ काउंसिल के सचिव यतीन वर्मा के अनुसार यदि ये आरोप सही पाल जाए तो मामला के जांच शुरू करे के चाहिए जिमें घटना के वास्तविक परिस्थिति और संबंधित पुलिस अधिकारी की जिम्मेदारी तय करल जाए सकी। उबलन के यदि आरोप साबित हो तो पुलिस कमिश्नर के आवश्यक कार्रवाई और उचित प्रतिबंधात्मक कदम उठाए के चाहिए। यतीन वर्मा ने सोशल मीडिया पर प्रसारित कुछ वीडियो के भी उल्लेख करलन जेकर में रूबेन मोगुंगा पीले के निशाना बनावल गलबा। उनकर अनुसार इस संभव है कि इपोस के वकील के उनकर पेशेवर कार्य के दौरान अस्थिर या दबाव में डाले के उद्देश्य से प्रायोजित करल गलबा। गौरतलब है कि वकील रूबेन मोगुंगा पीले गुलशन गोविंद के प्रतिनिधित्व करत हवन। ये जांच लागिनियों और मॉरिशस के बीच कथित तौर पर 155.7 किलो गांजा आयात करल जाए के मामला से जुड़ल बाती। मॉरिशस रोड्रिक्स में फिलहाल 2,73,000 से जस्ती लोग बेसिक रिटायरमेंट पेंशन प्राप्त करे लंजा आम करल गल। सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय के हालिया रिपोर्ट में कर जानकारी देवल गल बा। इकर में 5,300 से जस्ती लोग 90 बरिस या उकर से जस्ती उम्र के हवन जा जबकि एकर में 242 लोग ऐसे हवन जा जे लोग के उम्र 100 बरिस से जस्ती बाते। रिपोर्ट में अंशदायी पेंशन योजना के लाभार्थी के संगे संगे विभिन्न सामाजिक भत्ता पाए होला लोगन के आंकड़ा भी शामिल बाते। ये आंकड़ा ऐसा समय सामने आल बा जब मॉरिशस में जल्द ही स्टेट एज पेंशन व्यवस्था के ओर बदलाव हो। और ये खबर में आगे 13 बरिस के बाद नेशनल इनिशिएटिव सिविक एजुकेशन नाइस के वापसी होलबा।

0: ई पायलट परियोजना खातिर ग्रेड आठ के दूसौ लेका दू सप्ताह खातिर कई गो विषय के बारे में सीखन जा अनुशासन सेवा भाव जिम्मेदारी और सह अस्तित्व के बारे में बाद में ई प्रोग्राम दूसर नौजवान खातिर भी चलावल जाए। मॉरिशस खुद के गो रिसर्च सेंटर यानी कि शोध केंद्र के रूप में स्थापित करे खोजता यही दिशा में SMEs अहम भूमिका निभावे सकी। इंडियन ओशन अफ्रीका कंसोर्टियम के अध्यक्ष भूपेन डुबा ई मानेलन। उनकर मुताबिक अब समय आगल बा कि SMEs के आय हुला बदलाव खातिर तैयार रहे के चाहिए। ऐसे व्यवसाय की तेजी से बदलते तकनीक और हमने के रोजमर्रा की जिंदगी में बढ़ल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भूमिका के बीच खुद के नवा परिस्थिति के मुताबिक ढाले में सक्षम हो के परी। यही सोच के तहत आज 17 सितंबर के थोबिश में SMEs प्रिपेयरनेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट टूरिज्म एंड इको लिविंग विषय पर एगो सम्मेलन आयोजित करल जाबा। कुछ खास प्रकार के चूमर के इलाज खातिर एगो नवा तकनीक अब मॉरिशस में उपलब्ध करावल जाबा। नानो नाइफ नामक ई तकनीक कुछ मामला में पारंपरिक सर्जरी के जरूरत की टाली सकी और फिलहाल नेशनल कैंसर सेंटर में कर इस्तेमाल करल जाबा। मॉरिशन मूल के प्रोफेसर एडवर्ड लाम शांगलिन लंदन स्थित इंपीरियल कॉलेज में रेडियोलॉजी के प्रोफेसर और ब्रिटेन में नानो नाइफ तकनीक के शुरुआती विशेषज्ञ में से एगो हवन व अपन अनुभव और विशेषज्ञता के साझा करे खातिर आजकल मॉरिशस में हवन ई तकनीक में चूमर के आसपास बेहद पतली सुई लगावल जाला। एक बात सटीक तरीका से उपचार करल जाला जिकर में बड़ा चेरा लगाए के आवश्यकता नहीं पड़ेला और मरीज के जल्दी ही ठीक होई में मदद मिले सके। गल कुछ दिन से उपभोक्ता के बाजार से लेके सुपरमार्केट तक सब्जी खातिर जस्ती कीमत चुकाए के पड़ता। स्मॉल प्लांटर्स एसोसिएशन के सचिव कृपालू संगुन के मुताबिक कीमत में इबर होतरी जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से जुड़ल बा जिनकी खेती के परिस्थिति के प्रभावित कर दे बा। ठंड तेज हवा और पानी की कमी के कारण पौधा की वृद्धि गति गति होता और बाजार में उपलब्ध सब्जी की मात्रा भी कमती हो बा। नतीजन जस्ती सब्जी की कीमत में महज दो हफ्ता में 15-30% तक के बढ़ोतरी हो बाती। हालांकि स्मॉल प्लांटर्स एसोसिएशन उपभोक्ता के भरोसा दिलैले बा कि अक्टूबर के मध्य तक खेत में सब्जी की पर्याप्त उपलब्धता बनल रही। और विदेश में अमेरिका में ब्याज दर में 3 बरिस से जस्ती समय बाद पहला हला बढ़ोतरी करल गल बा। बरहल महंगाई पर काबू पाए की कोशिश में दर में आगे भी बढ़ोतरी हो सकी। हालांकि फैसला के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करा विरोध कर ले रहन उ ब्याज दर में कटौती की मांग कर ले रहन। एक संगे भोजपुरी समाचार समाप्त भल। धन्यवाद।
1: RM2 रेडियो मस्ती।

0: वैसे होता है जब ट्रैफिक में होता है लगता है कि आगे वाली गाड़ी ऐसी की वजह से ट्रैफिक अटका है और वो सोचता है कि आगे वाली गाड़ी और इस सिलसिला यूं ही चलता जाता है। नहीं लोगों की बात करें तो
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: भाई मॉर्निंग के टाइम 8:13 और हमारी बात होगी ट्रैफिक ब्रांच से और खबर आती हुई गुड न्यूज की कोई एक्सीडेंट इंसिडेंट की रिपोर्ट नहीं है। सो लेट्स कीप दैट वे इज अ डिस्टेंस मेंटेन कीजिए ट्रैफिक रूल्स का पालन कीजिए और जो यूजुअल सुबह की कंजेशन होती है वो जरूर है। वहां पर बात करें अगर हम फिनिक्स में तो काफ़ी गाड़ियाँ दिख रही हैं और चलती चली जा रही हैं। थोड़ा सा ट्रैफिक का सीन तो बनता ही है इवन टूवर्ड्स सिटी सेंटर्स यही सिचुएशन है। एट द यूजुअल कंजेशन पॉइंट्स और होस्टल की तरफ भी इशारा किया गया कि काफ़ी गाड़ियाँ धीरे धीरे करके ही आगे बढ़ रही हैं। सो चलिए आपने कुछ देखा है कुछ बताना चाहते हैं तो 5499-1294 पर अभी जान लेते हैं मौसम का हाल।
1: It's the weather broadcast with winners.
3: On est tous winners.
4: इसके लिए ऊंची लहर की चेतावनी जारी है जो कि आज दिन के 10 बजे तक लागू रहेगी। मस्करिंस के दक्षिण पूर्व में स्थित एक जोरदार एंटीसाइक्लोन की वजह से हमारे इलाके पर ठंड और तेज हवाएं पाई जा रही हैं और इससे जुड़े बादल रह रहकर हमारे मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। अनुमान है कि सुबह के वक्त और दिन के दौरान भी आसमान में बादल घिरे रहेंगे जो कभी कभार घने हो जाएंगे और बारिश हो सकती है खासकर पूर्व

0: दक्षिण एवं सेंट्रल प्लाटू पर। सुबह के वक्त कभी कभार मूसलाधार बारिश भी कुछ इलाकों में हो सकती है। रात के दौरान पूर्व दक्षिण एवं सेंट्रल प्लाटू पर जहां तहां बारिश हो सकती है। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम 16 से 18, अधिकतम 18 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। साहली इलाकों में न्यूनतम तापमान 20 से 23, अधिकतम 24 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जिसके झोंके कुछ इलाकों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकते हैं। प्रवाह रेखा से परे समंदर चंचल रहेगा। दक्षिण पश्चिम में लहरें 4 मीटर तक हो सकती हैं और उच्च ज्वार के समय निचले इलाकों में खासकर पश्चिम और दक्षिण में कुछ तटों पर बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है। इसलिए मछुआरों, मनोरंजन नौकाओं और आम जनता से जोरदार अपील की जाती है कि वे समंदर में न जाएं और उच्च ज्वार के समय तटों से भी दूर रहें। हालांकि दिन के दौरान समंदर की स्थिति में सुधार आएगा। आज सूर्योदय हुआ 6:04 पर, सूर्यास्त होगा 6:04 पर।
1: Avis à tous les amoureux des animaux! 17 au 24 septembre, rendez-vous chez Winners pour profiter de super offres sur une sélection de produits pour vos compagnons avec vos grandes marques préférées. Et parce qu'il y en a pour toute la famille, profitez également de nombreuses offres sur une sélection de produits du quotidien. Alors, ne manquez pas cette occasion de faire plaisir à vos petits compagnons et à toute la famille!
2: On est tous Winners!
3: RM2 Radio Musti.

0: to Radio Musti.
1: Samsung Galaxy S26 FE अब आ गया है सिर्फ 36,990 रुपीस में. साथ में मिल रहा है 6,000 रुपीस का डिस्काउंट. आप सब जानते ही हैं, लेकिन प्रोसेसर में आपके पास पेमेंट की चॉइस भी है. आप चाहें तो अपने बैंक कार्ड से 3 महीने में बिना किसी इंटरेस्ट की पेमेंट करें, या फिर अपने क्रेडिट कार्ड से 12 महीने में बिल्कुल बिना इंटरेस्ट की पेमेंट. और हाँ, भूलिएगा मत, गिफ्ट में मिलेंगे सैमसंग के प्लस और गूगल AI प्रो. तो देर किस बात की है, सैमसंग गैलेक्सी S26 FE अब अवेलेबल है थ्वासिसान के स्टोर्स में और thwasisan.mu पर भी.
0: RM2 रेडियो मस्ती.

0: ओए होए, मैं कह रहा हूँ कि मूड सेट हो गया मॉर्निंग मॉर्निंग में। मस्जिद जी, ये जो मॉर्निंग की घंटी बजती है, मेरो ये घंटे नहीं, ये अलार्म की घंटे होती है, यहाँ लेके उठने का टाइम।
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: अच्छा, एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये होती है कि हम फ्यूचर के लिए इतना सब कुछ प्लान कर लेते हैं, कल ये करूंगा या फिर नेक्स्ट मंथ वो करूंगा, भाई अगले साल तो पक्का। वैसे आप सोचिए कितनी सारी रेजोल्यूशंस हैं जो पूरी नहीं की, नहीं कर क्या रहे थे। अच्छा, मीनवाइल ये सब बारी बातें हो रही होती हैं तो जो आज का दिन है वो क्वाइटली कॉर्नर में खड़ा होता है और बोल रहा होता है कि हेलो, मैं भी हूँ आज का दिन। सो आज क्या ही करो कि थोड़ा काम करो, थोड़ा हंसो। हंसाने के लिए वैसे पप्पू तो है ना, तो बस पप्पू पहुंच गया अपनी बीवी को लेकर डॉक्टर साहब के पास और कहा कि डॉक्टर साहब जल्दी देखिए, जो वाइफ है ना बेहोश हो गई है। डॉक्टर ने कहा कब से? पप्पू ने कहा जब मैंने उसको शॉपिंग का बिल दिखाया। डॉक्टर ने बोला समझ गया, ये मेडिकल इमरजेंसी नहीं है, ये फाइनेंशियल इमरजेंसी है।
1: मॉर्निंग बीट, अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो।
2: RM2 Radio Musti in the mix. Jeez, everybody.

0: A good beat for your morning show.
1: Come on.
0: RM2.
2: Radio Musty.
3: अच्छा, वो भी होते हैं जो ड्राइवर साइड में बैठे होते हैं, यानी कि वो नहीं ड्राइवर साइड में बैठे, ड्राइवर की साइड में बैठे होते हैं और वो मैसे वैसे कर लेते हैं, बता दें कि ट्रैफिक सिचुएशन क्या है। और यहीं पर रीना कह रही है कि मैं तो साइड में बैठकर अपना मेकअप कर रही हूँ लेकिन मूड का मेकअप ही गाने करें। ओ ये वही ना बात। 8:33 और एशना आ गया, एशना और कहती है कि आज जेसिनी का बर्थडे है, सो स्पेशल विशेज फिया की तरफ से, हस्बैंड प्रवेश है, साथ में पुवेश एंड क्यांश की तरफ से, आहाना की तरफ से, पूरी फैमिली की तरफ से उनको लोड्स ऑफ लव। साथ में आगे जीना जी इटली से, हेलो गुड मॉर्निंग, और कहते हैं एक प्यासा गाना स्पेशली गोज आउट टू माय कजन शीला, उनका नाम है, पिछले हफ्ते में रहते हैं, उनकी पूरी फैमिली की तरफ से उनको ढेर सारा प्यार। एक्चुअली मेरे को जल्दी से मैसेज किया मॉरिशस में रहने वाली मेरी फैमिली ने और बताया कि ये मैसेज पास कर दो। अच्छा, मॉरिशस रूटेड टू इटली टू बैक टू मॉरिशस। और मेरे पर चंद्रसेन साहब, आपको भी वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। और ये है वाइफ कामन की तरफ से, डॉटर है स्नेहा दिलान की तरफ से, और मोचदा में उनके पूरी मंदिर और उनकी मंडली की तरफ से भी। वंशिका, आपको हैप्पी बर्थडे तो हमने जरूर कहा, वहीं पर कहते हैं हेलो दाना हूँ, और प्लीज़ जयमणि को भी कह दीजिए हैप्पी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे एंड मे गॉड ब्लेस। और साथ में कानुषा, आपको भी हैप्पी बर्थडे, 12 साल के हो गए, सो बहुत सारा प्यार फ्रॉम द होल फैमिली। चलिए करते हैं मस्ती जारी, गाने की बारी, हेलो गुड मॉर्निंग।
0: A good beat for your morning show. James.
2: RM2, Radio Musty, in the mix.

0: RM2
1: Radio Musty.
2: Le sport, c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
3: Milo, libère ta force.
4: Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo, libère ta force.
5: Nestlé, good food, good life.
6: Right, Thursday तो आ ही गया, लेकिन वीकेंड की खुशबू अब हवा में जैसे महसूस होने लगी है. लेकिन याद रखो, जिंदगी सिर्फ फ्राइडे का वेट करने का नाम नहीं है. आज जो काम बोरिंग लग रहा है, कल वही तुम्हारे सक्सेस की स्टोरी का हीरो बन सकता है. हर दिन बॉलीवुड मूवी जैसा नहीं होता, कभी कभी इंटरवल लंबा हो सकता है, लेकिन पेशेंस होना जरूरी है. बस अपने कॉन्फिडेंस की वॉल्यूम फुल रखो और टेंशन को म्यूट पर डाल दो. भाई, किसी और की जर्नी से अपनी लाइफ का कंपैरिजन मत करो, क्योंकि हर फिल्म का अपना काम होता है, अंजाम होता है और रिलीज डेट अलग अलग, राइट? सो छोटी सी प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस होती है. स्लो है तो क्या हुआ, पिक्चर अभी बाकी है. सो आज किसी एक इंसान को स्माइल दो, शायद उसका पूरा दिन बेटर हो जाए. जिंदगी उड़ने का नाम है, मुस्कुराने का नाम है. एक डीप ब्रेथ लो और बोलो आज का दिन अपना है. गुड मॉर्निंग. थर्सडे को थोड़ा फिल्मी बनाते हैं, थोड़ा फनी बनाते हैं और बहुत सारे पॉजिटिव वाइब्स के साथ.
2: Le sport, c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
3: Milo, libère ta force.
4: Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo, libère ta force.
5: Nestlé, good food, good life.
0: RM2
1: Radio Musty.

ऑलवेज नाइस कि एक ईरा से दूसरे ईरा में जैसे जम मार दें गानों के साथ, और कमाल है ना कैसे गाने एक बार फिर से वही टाइम याद दिला देते हैं। ऐसे ही राह के अंदर अगर ट्रैफिक में फंसे हो तो मिलते रहो, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करते रहो। थोड़ी देर में इट्स गोना बी योर टाइम फॉर मस्ट मॉर्निंग, नलमनिया होगी आपके साथ।

0: चल जाने का वक्त है, जैसे मैंने कहा कि अभी मौसम थोड़ा ठंडा ठंडा है, उन गानों के साथ यू फील द वार्मथ म्यूजिक, राइट। म्यूजिक की बात करें तो हमेशा आपके साथ और जुड़ते हैं बहुत सारे जज्बात। सो मेरे जाने का टाइम हो गया और थोड़ी देर में आने वाली नीलमणी लेकर एक और बहुत ही कमाल की म्यूजिकल पेशकश। Don't forget Mast Morning Show. So stay tuned और मैं आपसे जल्दी मिलने वाला हूँ। Till then you take your wonderful time और जैसे हमेशा कहता हूँ कि साथ देते रहो, सुनते रहो।
1: RM2 Radio Masti.

0: अब आप करुणा से समाचार सुनेंगे। नमस्कार करुणा।
1: नमस्कार अनुराधा, सभी को नमस्कार। मॉरिशस और अरुविक्स में फिलहाल 2,73,000 से अधिक लोग बेसिक रिटायरमेंट पेंशन प्राप्त करते हैं। आम की गई सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई। इनमें 5,300 से अधिक लोग 90 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं, जबकि इनमें 242 लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 100 वर्ष या उससे ज़्यादा है। रिपोर्ट में अंशदायी पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों के साथ साथ विभिन्न सामाजिक भत्ते यानी कि अलाउंस पाने वाले लोगों का आंकड़ा भी शामिल है। ये आंकड़े ऐसे समय में सामने आए हैं जब मॉरिशस में जल्द ही स्टेट एज पेंशन व्यवस्था की ओर बदलाव होने वाला है। 13 वर्षों के बाद नेशनल इनिशिएटिव फॉर सिविक एजुकेशन यानी कि नाइस की वापसी हुई है। इस पायलट परियोजना के लिए ग्रेड 8 के 200 बच्चे 2 हफ्तों तक सेवाभाव, अनुशासन, जिम्मेदारी और सह अस्तित्व सीख पाएंगे। बाद में ये प्रोग्राम अन्य नौजवानों के लिए भी बढ़ाया जाएगा। मॉरिशस में हाई स्कूल सर्टिफिकेट यानी कि HSC की परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं। इस साल 8,000 से ज़्यादा उम्मीदवार इन परीक्षाओं में भाग ले रहे हैं। आज छात्र फूड स्टडीज़ की परीक्षा देंगे। परीक्षा का ये दौर विद्यार्थियों के लिए बेहद अहम है, क्योंकि HSC के नतीजे आगे की उच्च शिक्षा और करियर की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्रवीण जगन्नाथ आज दिन के 10:30 लाइन बराक्स जाएंगे। पूर्व प्रधानमंत्री को CCRD की ओर से चल रही मुस्तासलिक्स मामले की जांच के सिलसिले में फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया है। प्रवीण जगन्नाथ से इससे पहले 1 सितंबर को करीब 2 घंटे तक पूछताछ की गई थी। ये जांच कथित तौर पर संचार को इंटरसेप्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों की खरीद और उनके संभावित इस्तेमाल से जुड़े हैं। जांचकर्ता ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन उपकरणों की खरीद को मंजूरी किसने दी थी और इन्हें किस उद्देश्य से इस्तेमाल किया जाना था। और पिछले कुछ दिनों से उपभोक्ताओं को बाजार से लेकर सुपरमार्केट तक सब्जियों के लिए ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। स्मॉल प्लांटर्स एसोसिएशन के अनुसार कीमतों में ये बढ़ोतरी जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से जुड़ी है, जिनसे खेती की परिस्थितियों को प्रभावित किया है। ठंड, हवा और पानी की कमी के कारण पौधों की वृद्धि धीमी हो रही है। तेज़ हवाएं बल्कि और बाज़ार में उपलब्ध सब्जियों की मात्रा भी कम हुई है। नतीजन ज़्यादातर सब्जियों की कीमतों में महज 2 हफ्तों में 15% से 30% तक की बढ़ोतरी आई है। हालांकि स्मॉल प्लांटर्स एसोसिएशन ने उपभोक्ताओं को भरोसा दिलाया है कि अक्टूबर के मध्य तक खेतों में सब्जियों की पर्याप्त उपलब्धता बनी रहेगी। और विदेश में गजापट्टी में कल रात के दौरान युद्ध से क्षतिग्रस्त एक इमारत के ढह जाने से कम 21 लोगों की मौत हुई है। बचाव कर्मियों और चिकित्सा अधिकारियों के मुताबिक मृतकों में 8 बच्चे भी शामिल हैं। तो इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद। नमस्कार।
2: You can find me in the club, bottle full of bub, my mind got... You're listening to Musty Mornings. Stay tuned, stay musty. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
0: गुड मॉर्निंग, 9:09 हुए हैं। मेक अ विश एंड फॉर नाउ आपका बड़ा सा वेलकम है मस्ती मॉर्निंग में। जी हाँ, आरएम टू रेडियो मस्ती के साथ आप कनेक्टेड हो चुके हो कब से, आई नो, और रास्ता भी आराम से आप एंजॉय कर पा रहे हो म्यूजिक के जरिए ऑफ कोर्स, तो आपको निराशा बिल्कुल नहीं करेंगे। यही पर आप रहना कनेक्टेड, क्योंकि 12 बजे तक नमन यही पर है। हॉरोस्कोप भी होगा, चिप्स भी होगा। फॉर नाउ बैक टू द गुड म्यूजिक।
1: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: चलिए अभी के लिए जानते हैं कि आज के राशिफल में आपका लकी नंबर और कलर कौन सा होगा। शुरुआत करते हैं वेदर।
2: एरीज मेष राशि।
1: आज आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा और किसी इम्पोर्टेंट काम में इनिशिएटिव लेना आपके फेवर में जा सकता है। बस आपको जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना है। लकी कलर आज आपका है रेड और नंबर है 9।
2: टॉरस वृषभ राशि।
1: आज थोड़ा स्लो एंड स्टेडी अप्रोच रखिए। पैसा या काम से रिलेटेड कोई छोटी सी गुड न्यूज मूड बेहतर कर सकती है। लकी कलर आज आपका है ग्रीन और नंबर है 6।
2: जेमिनी मिथुन राशि।
1: कम्युनिकेशन आज आपकी सुपर पावर है। किसी से इम्पोर्टेंट बात करनी है तो दिल

0: की बात क्लियरली कह दीजिए। लकी कलर आपका है येलो और नंबर है 5।
1: कैंसर कर्क राशि।
0: आज इमोशंस थोड़े स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, लेकिन अपनी एनर्जी उन चीज़ों पर आप लगाइए जो आपको जेन्युइनली खुश करती है। फैमिली टाइम भी स्पेशल रहेगा। लकी कलर आपका है व्हाइट और नंबर है 2।
1: लियो सिंह राशि।
0: स्पॉटलाइट आप पर आ सकती है, वर्क हो या पर्सनल लाइफ, कॉन्फिडेंस के साथ अपनी प्रेजेंस दिखाइए, बस ईगो को साइड सीट पर रखिए। लकी कलर आपका है गोल्डन और नंबर है 1।
1: वर्गो कन्या राशि।
0: वैसे टू डू लिस्ट लंबी हो सकती है, लेकिन नो वरीज, एक एक करके सब मैनेज हो जाएगा। आज परफेक्शन के पीछे भागने के बजाय प्रोग्रेस को अप्रिशिएट कीजिए। लकी कलर आपका है नेवी ब्लू और नंबर आपका है 4।
1: लीब्रा तुला राशि।
0: बैलेंस इज द की। किसी रिलेशनशिप में अगर मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है तो कॉल्मली बात करना थिंग्स को बेहतर बना सकती है। लकी कलर आज आपका है पिंक और नंबर है 7।
1: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि।
0: आज इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगा, हर बात का इंस्टेंट रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है, ऑब्जर्व कीजिए फिर एक्शन लीजिए। लकी कलर आपका है मरून और नंबर है 8।
1: सजिटेरियस धनु राशि।
0: एडवेंचर मूड ऑन है, आज कुछ नया ट्राई करने का मन करेगा, स्पॉन्टेनियस प्लान बन सकता है और चेंज ऑफ सीनरी एग्जैक्टली वही हो सकता है जो आपको चाहिए। लकी कलर आपका है पर्पल और नंबर है 3।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि।
0: मेहनत का रिजल्ट्स धीरे धीरे नजर आ रहा है, आज रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा हो सकती है, लेकिन आपकी कंसिस्टेंसी आपको आगे लेकर जाएगी। लकी कलर आपका है ब्राउन और नंबर है 8।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि।
0: आज आइडियाज की कमी होगी, यानी कि कमी नहीं होगी, किसी क्रिएटिव थॉट को सिर्फ सोच कर मत छोड़िएगा, लिखिए, प्लान कीजिए और उस पर काम शुरू कीजिए। लकी कलर आपका है इलेक्ट्रिकल ब्लू और नंबर है 11।
1: पाइसेस मीन राशि।
0: आज थोड़ा मी टाइम जरूर निकालिएगा, म्यूजिक क्रिएटिविटी या सिंपली कुछ पीसफुल मोमेंट्स आपके मूड को रिसेट कर सकता है। लकी कलर आपका है लैवेंडर और नंबर है 7।
2: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
0: गजब का है दिन क्योंकि आप जो हो साथ में हमारे जी हम मस्टी मॉर्निंग शो ऑन गोइंग है और फुली गुड वाइब्स से भरा हुआ है. क्यों? क्योंकि आज थर्सडे है भाई और प्री फंडे वाइब्स फैली हुई है, तो बस उसी के साथ दिन को और खूबसूरत बनाते हैं. अपनी स्माइल को चेहरे पर ही रहने दीजिए, कीप स्माइलिंग और बहाने को अवे यानी कि दूर रखते हैं. अभी के लिए इट्स योर आरएम2 वेयर यू मस्ट बी, कीप एंजॉयिंग द गुड म्यूजिक.
1: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: Chill vibes, happy vibes, romantic vibes, हर तरह के vibes, हर mood के लिए एक perfect गाना है आपके लिए. और हाँ, अगर आप भी अपना mood, message या फिर dedication हमारे साथ share करना चाहते हैं, no worries, बेफिकर 5491294 पर message भेज दीजिए अपना, क्योंकि आपका message, आपकी फरमाइश हमारे लिए सर्वोपरि है. गाना RM2 रेडियो मस्ती पर ongoing है 12 बजे तक आपकी ही मस्ती मॉर्निंग में. So let's dive right back with a good music आपको खुश कराने के लिए. नेक्स्ट गाना ला रहे हैं सोनू निगम की आवाज में.
1: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned, stay musty. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
0: नेक्स्ट आवर में जाने से पहले अभी के लिए एक छोटी सी रिमाइंडर आपके लिए, एंड वो है कि हर दिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होता, लेकिन हर ऑर्डिनरी डे में एक्स्ट्राऑर्डिनरी मोमेंट हो सकता है। तो अपनी आंखें को खुली रखिए, अप्रिशिएट करते हैं द लिटिल थिंग्स इन लाइफ, और जो अच्छा है उसके लिए ग्रेटफुल रहिए। तो इसे को ब्यूटीफुल बनाते हैं वन लिटिल मोमेंट एट अ टाइम। ये है पहले आवर का, जब मिलते हैं संक्षिप्त समाचार के बाद आपके ही आरएम2 रेडियो मस्ती पर। लेकिन अभी आखिरी गाना हो जाए आपके नाम।
1: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned, stay musty. Radio Musty.

0: चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे कोरोना नमस्कार।
1: नमस्कार नीलमणि,
2: सभी को नमस्कार। अगस्त के अंत तक मॉरिशस में 273,021 लोग बेसिक रिटायरमेंट पेंशन प्राप्त कर रहे थे। ये स्टेट एज पेंशन लागू होने से पहले का आखिरी आधिकारिक आंकड़ा है। नई व्यवस्था अगले साल 1 जनवरी से लागू होने वाली है। कुल आबादी के अनुपात में देखें तो ये संख्या लगभग हर 5 लोगों में एक व्यक्ति के बराबर है। आंकड़ों में देश की बढ़ती उम्रदराज आबादी की तस्वीर भी दिखाई देती है। 5,335 पेंशन लाभार्थियों की उम्र 90 वर्ष या उससे अधिक हैं, जबकि इनमें 242 लोग 100 वर्ष या

0: उसी से अधिक उम्र के हैं। लेकिन सवाल सिर्फ पेंशन पाने वालों की संख्या का नहीं है, सवाल ये भी है कि मौजूदा पेंशन व्यवस्था का सरकारी वित्त पर कितना बोझ है और प्रस्तावित सुधार के लागू होने के बाद वास्तव में क्या बदलाव आएगा। मॉरिशस में हाई स्कूल सर्टिफिकेट यानी कि HSC की परीक्षाएं आज से शुरू हुई। इस साल 8000 से ज़्यादा उम्मीदवार HSC परीक्षा में भाग ले रहे हैं। आज फूड स्टडीज़ की परीक्षा ली गई। प्रवीण जगनाथ आज दिन के 10:30 लाइन बाराक्स जाएंगे। पूर्व प्रधानमंत्री को CCID की ओर से चल रही मुस्तासलीक मामले की जांच के सिलसिले में फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया है। प्रवीण जगनाथ से इससे पहले 1 सितंबर को करीब 2 घंटे तक पूछताछ की गई थी। ये जांच कथित तौर पर संचार को इंटरसेप्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों की खरीद और उनके संभावित इस्तेमाल से जुड़ी है। विदेश में गाजा पट्टी में रात के दौरान युद्ध से क्षतिग्रस्त एक इमारत के ढह जाने से कम 21 लोगों की मौत हुई है। बचाव कर्मियों और चिकित्सा अधिकारियों के मुताबिक मृतकों में 8 बच्चे शामिल हैं। इमारत पहले से ही युद्ध के कारण क्षतिग्रस्त थी। उसके अचानक ढहने के बाद मलबे में फंसे लोगों की तलाश और बचाव अभियान चलाया गया। स्थानीय बचाव दल और चिकित्सा कर्मी प्रभावित इलाके में राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय बाद शोक समाचार। ला क्वाजे मोटाइलोंग टेरोज में 68 साल की 68-year-old श्रीमती गीता इमरित पैदाइश नाम बर्टन जो माला से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 12:30 इनके मकान ला क्वाजे मोटाइलोंग टेरोज से उठाकर दाह संस्कार के लिए तेमिनिस्त योली की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 12:30। रूट रॉयल मेबर्ग में 59 साल के 59-year-old श्री देवराज वेंकिया जो राजेश से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज 3:00 इनकी पत्नी श्रीमती पिंकी वेंकिया के मकान रूट रॉयल मेबर्ग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पॉइंट ब्रोक्यूस्त की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फिनरल टुडे एट 3 PM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी दिली हमदर्दी है।
1: You can find me in the club, bottle full of bub, my mind got... You're listening to Musty Mornings. Stay tuned, stay musty. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: वैसे दिल कह रहा है कि आज बस म्यूजिक चलता रहे ठंडी हवा की तरह. मॉर्निंग शुरू हो गया है और कब से काम भी तो वो को खास चोल दो जो भी साथ दे रहे हैं RM2 रेडियो मस्ती का भी सेकेंड आवर में आपका स्वागत है. फिर से मस्ती मॉर्निंग में निर्मनी यहाँ पर है 12 बजे तक आपके लिए टिप्स और गानों के साथ यही हाजिर होगी. तो आप बस यही पर जुड़े रहना. एंड नेक्स्ट गाना ला रहे हैं सुनिधि चौहान की आवाज़ में आपके मॉर्निंग को और भी स्पाइसी बनाने के लिए. तो चलिए डाइव करते हैं राइट बैक इनटू द गुड म्यूजिक.
1: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
0: स्वच्छ कर 19 मिनट हुए हैं हम शो डांस करते करते. आपको प्यास लग रही होगी तो पानी, जूस, चाय, कॉफी पीना या फिर डू हैव योर नारियल पानी, लेकिन हाइड्रेट करते रहिए खुद को. हम ही ब्रेक के बाद आते हैं पानी पी के. RM2
1: रेडियो मस्ती.
2: एगो लास्योरेंस लावी कौन ची है जे काल कुछ तोहरा हो जाए तो ई तोहर और तोहर परिवार खातिर एगो सुरक्षा है. पर जाने ला ई से तू एगो इन्वेस्टमेंट भी करे सकबा. सिकम मैक्स इन्वेस्टमेंट ऐसन कई गो ऑप्शन बा जो बहुत फ्लेक्सिबल बाटी. तोहर महीना के पेमेंट के एगो हिस्सा तोहर लास्योरेंस लावी में जाए और दूसर हिस्सा तोहर पसंद के फोन में सकबा एवेस्टी करे, जो निर्भर रही की आप कितना रिस्क ले सकबा. नतीजा एगो ऐसन लास्योरेंस जो तोहर परिवार के सुरक्षा करी और तोहर निवेश योजना में भी कामे आई. सिकम के प्रस्तावित लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स पर जस्ती जानकारी खातिर हमनी के प्रतिनिधि से संपर्क कर या sikkim.mu पर जाइह. इमे नियम आ शर्त भी लागू बा. सिकम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला.
3: सिकम ग्रुप, ए लाइफ टाइम कमिटमेंट.
0: RM2
1: रेडियो मस्ती.

0: रेडियो मस्ती।
1: शादी के खरीदारी खातिर अलग अलग जगह जाए के सोचत हवा तब भूल जा, एकर जरूरत नहीं पड़ी। काहे कि हलकोड़ी फैशन के हिया पूरा परिवार खातिर एक ही छत के नीचे सब कुछ मिली। डिजाइनर लहंगा, लच्छा साड़ी, जोधपुरी क्रॉप टॉप, शेरवानी सूट, ब्लेजर और वो भी सस्ता दाम में। हलकोरी फैशन, रॉयल रोड पॉम्पली मिसेस गार्डन के सामने। फोन नंबर 5799378282। हलकोरी फैशन, परंपरा, एलिगेंस और कारीते।
0: RM2 रेडियो मस्ती।

0: Fashion tips powered by Halkari Fashion, house of ready-made garments.
1: And yes, fashion tip time. आजकल ना simplicity लोग ज्यादा पसंद करते हैं, जिसमें वो क्लासिक लगे, कंफर्टेबल लगे और डिसेंट भी. And yes, fakeness से दूर लोग भागते हैं, तो अपने आप को यूनिक तरीके से ड्रेसअप करो. और टिप है कि एक स्टेटमेंट पीस काफ़ी होता है. जी हाँ, अगर आपका आउटफिट सिंपल है, एक बोल्ड बैग, स्टेटमेंट ईयरिंग्स या फिर स्टाइलिश जूते, याद करो बैलेंस रखो, क्योंकि फैशन में कभी कभी लेस इज रियली मोर.
0: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाय हल्कोरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स. RM2 Radio Musti.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
0: एंड यस, मस्ती मॉर्निंग में आप कनेक्टेड हो चुके हैं. अभी बारी है टिप्स का. कई बार ऐसा होता है ना कि किचन में हम खाना बना रहे होते हैं और एक ही कटिंग बोर्ड के साथ सब कुछ कर लेते हैं. दरअसल ये रॉन्ग करते हैं हम. एक्चुअली किचन में डिफरेंट कटिंग बोर्ड्स रखना बेहतर होगा. आप बोलेंगे क्यों, रीज़न बताती हूँ. पहले ये शेयर कर देती हूँ. रेड बोर्ड के लिए मीट, ग्रीन बोर्ड के लिए वेजिटेबल्स और वाइट बोर्ड के लिए गार्लिक और ऑनियंस जैसे इंग्रेडिएंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं. कारण सिंपल है, क्योंकि जब मिक्स्ड चीज़ें काटते हैं तो रॉ मीट के जूसेस कटिंग बोर्ड पर रह सकते हैं. इसलिए बोलते हैं कि सेम बोर्ड को वेजिटेबल्स या रेडी टू ईट फूड के लिए यूज़ करना, अवॉइड करना ही बेहतर है. छोटी सी है ये किचन हैबिट, लेकिन हाइजीन के लिए काफ़ी ज़रूरी है. तो आपके लिए और भी टिप्स लेकर आएंगे जल्द ही. अभी के लिए सॉन्ग को एंजॉय करते हैं आपके ही आरएमजी वीडियो मस्ती पर.
2: You can find me in the club, bottle full of bub, my mind got...
1: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned, stay musty. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: इलाही होकर रगा रहे हैं क्योंकि मौसम मस्त है और आपको भी मस्त मूड में डालकर अच्छा लगता है मन को। तो कुछ ही देर में आप सुन पाएंगे संक्षिप्त समाचार एंड ऑल्सो हमसे मिलने के लिए हमारे कुछ दोस्त आ रहे हैं, तो यहीं पर आप कनेक्टेड रहना, आपसे बात कराएंगे उनके साथ। तो अभी के लिए आखिरी गाना हो जाए और मिलते हैं डायरेक्टली संक्षिप्त समाचार के साथ।
1: You can find me in the club, bottle full of bub, my mind got... You're listening to Musty Mornings. Stay tuned, stay musty. Radio Musty.

0: सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। एक बार फिर आपसे करुणा जी नमस्कार।
1: नमस्कार नीलमणि, सभी को नमस्कार। 13 साल के अंतराल के बाद नेशनल इनिशिएटिव फॉर सिविक एजुकेशन कार्यक्रम फिर से शुरू किया जा रहा है। इस पहल का मकसद विद्यार्थियों में अनुशासन, सेवा की भावना और मिलजुल कर रहने यानी सामाजिक एकजुटता के मूल्यों को बढ़ावा देना है। 3 दिनों की ट्रेनिंग के बाद प्रशिक्षक नवंबर में ग्रेड 8 के 8200 विद्यार्थियों के साथ काम करेंगे, उनका मार्गदर्शन करेंगे ताकि उनमें नागरिक जिम्मेदारी और समाज के प्रति योगदान की भावना विकसित हो। पिछले कुछ दिनों से उपभोक्ताओं को बाजार से लेकर सुपरमार्केट तक सब्जियों के लिए ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। स्मॉल प्लांटर्स एसोसिएशन के अनुसार कीमतों में ये बढ़ोतरी जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से जुड़ी है, जिसने खेती की परिस्थितियों को प्रभावित किया है। ठंड, तेज हवाएं और पानी की कमी के कारण पौधों की वृद्धि धीमी हो रही है और बाजार में उपलब्ध सब्जियों की मात्रा भी कम हुई है। मॉरिशस में हाई स्कूल सर्टिफिकेट यानी कि HSC की परीक्षाएं आज से शुरू हुई। इस साल 8000 से ज़्यादा उम्मीदवार HSC परीक्षाओं में भाग ले रहे हैं। विदेश में अमेरिका में ब्याज दर में 3 साल से अधिक समय बाद पहली बार बढ़ोतरी की गई।

0: गई हैं। बढ़ती महंगाई पर काबू पाने की कोशिश में दरों में आगे भी इजाफा किया जा सकता है। हालांकि इस फैसले का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कड़ा विरोध किया था। उन्होंने ब्याज दर में कटौती लाने की मांग की थी। और गजा पट्टी में रात के दौरान युद्ध से क्षतिग्रस्त इमारत के ढह जाने से कम 21 लोगों की मौत हुई है। बचाव कर्मियों और चिकित्सा अधिकारियों के मुताबिक मृतकों में 8 बच्चे भी शामिल हैं। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। कुछ समय बाद शोक समाचार। रोट रॉयल कोयराती में 52 साल की 52-year-old बीबी शहनाज अखुराली पैदाइशी नाम सिलारू, जो मिमी से जानी जाती थी, इंतकाल कर गई हैं। जनाजा आज दिन के 2 बजे इनके पिता मामाद सिलारू के मकान रॉयल रोड कोयराची से निकाल कर दफनाने के लिए बामाशा का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 2 PM। पेचिकॉ फिनिक्स में 92 साल की 92-year-old श्रीमती परमावती बिसुनुत, जो माउटी से जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2:30 बजे इनकी बेटी दीपा साहिबदी के मकान पेचिकॉ फिनिक्स से उठाकर दाह संस्कार के लिए आली भुया कास्तल की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:30 PM। और लाक्वाजे मोटाइलोंग टेरूज में 68 साल की 68-year-old श्रीमती गीता इमरित पैदाइश नाम बर्टन, जो माला से जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 12:30 बजे इनके मकान लाक्वाजे मोटाइलोंग टेरूज से उठाकर दाह संस्कार के लिए टेमिनिस्ट्रियोले की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टू डेथ ऑफ पास्टून। शोकग्रस्त इन सभी परिवारों के प्रति हमारी दिल हमदर्दी है।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.
2: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
0: Yes, as promised, Musty Morning में कुछ दोस्त मिलने आ गए हैं हमारे साथ स्टूडियो में. गुड मॉर्निंग. एंड यस, आपने उनकी आवाज सुन ली. तो आप लोग कैसे हैं? देखा, सबको आती है हिंदी. एंड हमारे साथ बैठी हुई है, आपका नाम क्या है?
2: कविता.
0: कविता जी, आप माइक को, एंड यस, आपका माइक हमने ऑन कर लिया. हेलो कविता जी, कैसे हो आप? कविता जी, कविता जी, आपको माइक में बोलना है. हेलो.
3: नमस्ते जी.
0: नमस्ते, आप कैसे हो?
3: ठीक हूँ.
0: आप यहाँ पहली बार आई हूँ. आपको कैसा लग रहा है?
3: बहुत सुंदर.
0: बहुत सुंदर. एक्सपीरियंस कैसा है?
3: बहुत ठीक.
0: बहुत ठीक
3: है.
0: ठीक है. आप शेक कर रहे
3: हैं.
0: आपको डर लग रहा है?
3: नहीं.
0: आपको आपको बस हंसना है और बात करना है हमारे साथ, बिल्कुल चिल मोड में, क्योंकि आरएमटू रेडियो मस्ती के साथ हम बस गुड वाइब्स के साथ आपके साथ बात करते हैं, एंगेज करते हैं. एंड यस, तो आशा करते हैं कि आप अपना विजिट एमबीसी पर एंजॉय करें और हमारे साथ आप डांस करेंगे. आपको पता है वो गाना शावा शावा शावा शावा गाना
3: शावा शावा
0: किसी को आता है? आपके लिए हम चलाने वाले हैं. एंड यस, गाना चलाने से पहले आप हमें बता देते हैं कि आप कहाँ से आए हो.
3: थोड़े दूर से
0: दूर से आए बस हमसे मिलने के लिए. आप सीरा से आए? सीरा लेकर आए. तो आशा करते हैं कि आप एंजॉय करें अपना सफर. और ये नेक्स्ट गाना मैं चला रही हूँ आप सभी के लिए, आपको डांस करना पड़ेगा. तो चलिए वाइब करते हैं इस नेक्स्ट गाने के साथ. एंड थैंक यू हमारे साथ विजिट करने के लिए, स्टूडियो में आने के लिए.
1: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
0: मस्ती मॉर्निंग के सेकेंड आवर पर हम बात कर रही थी कटिंग बोर्ड्स के बारे में, लेकिन उनको साफ कैसे रखें। हमारे शेफ्स के लिए क्लीनिंग टिप है बिल्कुल सिंपल, तो वो है कि अगर आपके रसोई घर में लेमन है तो वो कटिंग बोर्ड वॉश करने के बाद आप डाल सकते हो उस लेमन को। ठीक से आपको हर कोने में रब करके क्लीन करना है, लो हो जाएगा क्लीन लेमन के साथ। और भी काम कर सकते हो आप, यानी कि आप प्लास्टिक बोर्ड्स को अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि जब मीट कट करते हो प्लास्टिक के कुछ पार्टिकल्स वो घुस जाते हैं उसमें। इसलिए कुछ लोग बोलते हैं कि वुडन वाले बोर्ड्स को यूज़ करो, क्योंकि लकड़ी जो होती है वो ज़्यादा निकलती नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम कटिंग बोर्ड्स बाय करने से पहले ये टिप आप ज़रूर यूज़ करना। एंड अभी के लिए गानों के साथ आगे बढ़ते हैं। फलक देखो गाना आ रहा है नेक्स्ट आपके लिए, एंड जल्दी ही आपके कुछ मैसेजेस भी पढ़ने वाले हैं। सो यही पर आप रहना कनेक्टेड।
1: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
0: And that was a beautiful song hamare kuch खूबसूरत लिसनर्स के लिए. अभी के लिए आपके कुछ मैसेजेस को पढ़ लेते हैं. आई नो कि आप कब से वेट कर रहे हैं कि कब बनी हमारे मैसेजेस पढ़ने वाली है. लो हो गया टाइम. फ्लैग से जना जी साथ दे रहे हैं और आज यूजुअल अपनी बेटियों के लिए प्यारा सा गाना मांग रहे हैं. रीमा, अंशनी, युवेक, ऋषि, जनिता, श्रेष्ठा, सिल्विया, शिव शरण फैमिली के लिए. ईशना भी कनेक्टेड है एंड आज उनके भाभी यानी कि सिस्टर इन लॉ जैशनी का बर्थडे है. बेस्ट विशेज मम्मी फिया, उनके हस्बैंड प्रवेश, ब्रदर इन लॉ पुवेश, बेबी कियांश, नी सहाना एंड फ्रॉम ऑल रिलेटिव्स जुहूल परिवार से. एंड वी ऑल्सो हैव दुर्गाना जी जो विश कर रहे हैं हैप्पी 14th बर्थडे ट्विंस को, श्रवण और श्रवानी को, फ्रॉम सचिन, काजल, अहान, दादी चंद्रनी, नानी ललिता एंड बिच्छू फैमिली जो पुदो दो विलेज के रहने वाले हैं. एंड ऑल्सो वी हैव अब्दुल जी और सारा बानो जी जो कनेक्टेड है हमारे साथ. एंड नेक्स्ट गाना करते हैं आप सभी सुनने वालों के नाम. एंजॉय कीजिए आपके ही आर एम टू रेडियो मस्ती पर. इट्स योर मस्ती मॉर्निंग.
1: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

0: R102
1: रेडियो मस्ती।
2: शादी के खरीदारी खातिर अलग अलग जगह जाए के सोचत हवा तब भूल जा, एकर जरूरत नहीं पड़ी। काहे कि हलकोड़ी फैशन के हिया पूरा परिवार खातिर एक ही छत के नीचे सब कुछ मिली। डिजाइनर लहंगा, लच्छा साड़ी, जोधपुरी क्रॉप टॉप, शेरवानी, सूट, ब्लेजर और वो भी सस्ता दाम में। हलकोरी फैशन, रॉयल रोड, पॉम्पली मिसेस गार्डन के सामने। फोन नंबर 5799-3782। हलकोरी फैशन, परंपरा, एलिगेंस और कारीते।
0: RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: एक जरूरी कम्युनिके सुनिए श्री सनातन धर्मीय ब्राह्मण महासभा द्वारा। श्री सनातन धर्मीय ब्राह्मण महासभा मुंबई के भारतीय विद्या भवन के सहयोग से सरल संस्कृत परीक्षाएं 2026 इन निम्न तीन परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी। रविवार 20 सितंबर सुबह 9 बजे से दोपहर 2:30 बजे बाल बोध प्रारंभ और प्रवेश की परीक्षाएं क्यूपिप कॉलेज, मॉडर्न कॉलेज और हिंदी भवन लॉन्ग माउंटेन में, जबकि शनिवार 19 और रविवार 20 सितंबर की सुबह 9 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक परिचय और कोविड की परीक्षाएं क्यूपिप कॉलेज में होंगी। तो ये था एक कम्युनिके श्री सनातन धर्मीय ब्राह्मण महासभा द्वारा।
1: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
0: It's 11:44 and और भी एक मैसेज आया है इस बार प्यारी ईशानवी की तरफ से जो डेडिकेट कर रही है एक स्पेशल गाना टू हर वन एंड ओनली मामू अश्विन सुरजी जो आज अपना बर्थडे मना रहे हैं एंड आपके इस स्पेशल डे पर लॉट्स ऑफ लव हैप्पीनेस ब्लेसिंग्स पापा प्रदीप मम्मी लता पत्नी शिमला दो लवली बहनें दिया और याशना ब्रदर इन लॉ एवं की तरफ से एंजॉय कीजिए अपना स्पेशल डे विद आरएम2 एंड टू ऑल दोस जो आज अपना बर्थडे मना रहे हैं ये वाला गाना तो बनता है

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: वैसे यहाँ पर किचन से नहीं बल्कि पेट से आवाज आ रही है और चेक करना पड़ेगा मम्मी ने टिफिन में क्या डाला है और हमारी वो दोस्त जो काम कर रहे हैं कुछ बना के लाए हो या फिर क्यों इंतजार करना पड़ेगा कुछ खाने के लिए। लेकिन आई नो कुछ तो कुछ मिल ही जाएगा आपको, तो एडवांस में विश करते हैं आपको बना पे जी। एंड ऑल्सो इजाजत भी लेती हूँ, मैं थी निर्मणि आपके साथ सुबह से लंच टाइम तक। एंड मेरी बात आने वाली है रेट्रो रिदम में पूनम। तो जिनको पुराने गानों का शौक है, टाइमलेस गानों का बहुत शौक है, तो आप यही पर रहना हमारे साथ कनेक्टेड। वैसे अभी मुझे लग रही है भूख, तो चलो बाय।
1: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned, stay musty. Radio Musty.

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2, Radio Musty.
0: Radio Musty.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
5: Time check दोपहर के 12 बज रहे हैं. सभी को नमस्कार. आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार गीता जी से. गीता जी आपको नमस्कार.
6: नमस्कार पूनम जी. सभी को हमारा नमस्कार. मॉरिशस में हायर स्कूल सर्टिफिकेट यानी HSC की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं. इस साल 8,000 से ज़्यादा उम्मीदवार HSC की परीक्षाओं में भाग ले रहे हैं. आज छात्र फूड स्टडीज़ की परीक्षा दे रहे हैं. 13 साल के अंतराल के बाद नेशनल इनिशिएटिव फॉर सिविक एजुकेशन NICE कार्यक्रम फिर से शुरू किया जा रहा है. इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों में अनुशासन, सेवा की भावना और मिलजुल कर रहने यानी सामाजिक एकजुटता के मूल्यों को बढ़ावा देना है. 3 दिनों के ट्रेनिंग के बाद प्रशिक्षक नवंबर में ग्रेड 8 के 200 छात्रों के साथ काम करेंगे. उनका मार्गदर्शन करेंगे ताकि उनमें नागरिक जिम्मेदारी और समाज के प्रति योगदान की भावना विकसित की जा सके. पूर्व प्रधानमंत्री प्रवीण जगनाथ से आज CCID की ओर से चल रही मुस्तासलीक्स मामले की जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है. इससे पहले 1 सितंबर को उनसे करीब 2 घंटों तक पूछताछ की गई थी. पिछले कुछ दिनों से उपभोक्ताओं को बाजार से लेकर सुपरमार्केटों तक सब्जियों के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है. स्मॉल प्लांटर्स एसोसिएशन के अनुसार कीमतों में ये बढ़ोतरी जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से जुड़ी हैं, जिनसे खेती की परिस्थितियों को प्रभावित किया गया है. ठंड, तेज हवाएं और पानी की कमी के कारण पौधों की वृद्धि धीमी हो रही है और बाजार में उपलब्ध सब्जियों की मात्रा भी कम हुई है. और विदेशी खबरों में हाल ही में विज्ञान पत्रिका साइंटिफिक डेटा में छपी एक बड़ी और चौंकाने वाली वैज्ञानिक रिपोर्ट के अनुसार पिछले कुछ दशकों में हमारी धरती तेजी से गर्म हो रही है, जिसका सबसे बुरा असर पोलर इलाके यानी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर पड़ रहा है. इसकी वजह से 1979 से अब तक दुनिया भर में समुद्र का जल स्तर करीब 1 इंच यानी 3.1 सेंटीमीटर से बढ़ चुका है. इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए. कुछ ही देर में शोक समाचार.

0: ला ख्वासे मोताइलोंग तेगूज में 68 साल की 68 ईयर ओल्ड की श्रीमती गीता इमरित पैदाइश नाम बर्टन और जो माला से ज्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के साढ़े बारह बजे उनके घर ला ख्वासे मोताइलोंग तेगूज से उठाकर तेमिनिस त्रियोले की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 12:30 PM। मलवी लेन सादाली वाकवा में 54 साल के 54 ईयर ओल्ड के जनाब मोहम्मद ईशान लाटोना जो ईशान से ज़्यादा जाने जाते थे इंतकाल कर गए हैं। जनाजा आज दिन के 2:30 PM उनकी बहन सफरीफा रजब के घर मलवी लेन सादाली वाकवा से उठाकर सादाली वाकवा की कल्बे इस्लाम मस्जिद ले जाया जाएगा और दफनाने के लिए फिनिक्स का कब्रिस्तान। फ्यूनरल टुडे एट 2:30 PM। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।
1: Retro Rhythm
2: RM2 Radio Musti.

0: Retro Rhythm. बारह बजकर 10 मिनट हो चुके हैं. नमस्ते, वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन. आरएम2 रेडियो मस्ती पर आप सुन रहे हैं रेट्रो रिदम और मैं हूं आपके साथ पूनम. सुबह से आपको इतने सारे आरजेस का साथ मिला, सबसे पहले नीतू का मिला, फिर इतने दिनों के बाद हमारे एक ऐसे प्यारे से दोस्त विकास इतने दिनों बाद आए और उन्होंने भी झटका दे दिया सबको कि सबको कहा कि मैं आ गया हूं. तो ये तो बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि विकास जब आ जाते हैं तो हम सबको खुशी मिलती है. उसके बाद आपको साथ मिला नीलमणि का और अब मैं आ गई हूँ, यानी कि पूनम, जहाँ पर आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत सारे गाने 60s के, 70s, 80s, 90s के. बॉलीवुड का ये जो टाइम, ये जो एरा था जहाँ पे मस्ती होती थी, जहाँ पे प्यार था, जहाँ पे कहते हैं ना एक ऐसा गुलदस्ता तैयार रहता था जो किसी को भी दे दिया जाए और वहाँ पर सिर्फ खुशबू फैल जाती है पुराने नगमों और पुराने गानों की. तो मैं हूँ आपको साथ लेकर आई हूँ बहुत सारे गाने. अगर आपको भी कोई मैसेज करना है तो आप कर सकते हैं 5499124 पर, जहाँ पे हम चलाएंगे आपकी स्पेशल डेडिकेशन पे आपकी पसंद का कोई ना कोई गाना. पर हम चाहते हैं कि अगर आपको किसी को ऐसा कुछ कहना है जो दिल से जुड़ा हो तो आप जरूर हमें मैसेज कीजिएगा 5499124 पर. और शुरू करते हैं आपके लिए दूसरा गाना, बहुत ही प्यारा, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफीज साहब की आवाज में.
1: रेट्रो रिदम, RM2 रेडियो मस्ती.

0: रेट्रो रिदम। 12:20 हो चुके हैं दोस्तों, आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम रेट्रो रिदम के साथ। हम जो नेक्स्ट गाना चलाने वाले हैं, एक बहुत ही स्पेशल पर्सन की रिक्वेस्ट पे है। उन्होंने कहा कि प्लीज़ ये गाना जब भी चलता है ना, दिल की सांसें बंद सी हो जाती हैं और मैं वो उसे एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। तो अगर कोई उस समय का कोई इंसिडेंट है तो ज़रूर बताइए। तो चलिए भैया, आपने ये बात कही तो हम ऐसे कैसे हो सकते हैं कि आपने कुछ पूछा और हम ना बताएं। तो ये जो गाना है 1963 का है, जहाँ पर राज कपूर और नूतन थे, गीतकार थे साहिर लुधियानवी। और ये फिल्म का जो गाना है बहुत ही सुपरहिट था। इस मूवी का नाम था दिल ही तो है, और ये स्पेशल गाना गाया था मन्ना डे साहब ने, जिसका नाम था लागा चुनरी में दाग। और कहते हैं कि ये गाना सुनने के बाद सभी मदहोश हो गए थे। कितनी बार इसको गाना गाया गया और सब ने कहा कि मन्ना डे साहब ने एक बार तो कहा कि मुझे ये गाना नहीं गाना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और मैं इस मोमेंट पर गाना नहीं चाहता। पर सब ने कहा नहीं, आप गाएंगे, आपका मूड भी अच्छा हो जाएगा और हमें। पर जब मन्ना डे साहब ने ये गाना गाया तो उसके बाद कहते हैं कि मन्ना डे साहब की आंखों से खुद ही इतने आंसू बहे और कहते हैं कि मैं जैसे मेरे सर से एक बहुत बड़ा बोझ सा उतर गया, क्योंकि ये गाना था ही इतना सुंदर। तो चलिए भाई, बहुत सारा प्यार इस गाने को मिला सारे वर्ल्ड से, बॉलीवुड से, और स्पेशली मन्ना डे की आंखों से तो एहसास होता ही है। पर हम भी आपको कहते हैं कि आपको ये गाना ज़रूर सुनना चाहिए, इंजॉय कीजिए इस गाने को। और अगर आपको भी कोई मैसेज भेजना है तो प्लीज दिल से भेजिए 5499124 पर।
1: रेट्रो रिदम RM2 रेडियो मस्ती।

0: रेट्रो रिदम। 12:33 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम के साथ यानी कि रेट्रो रिदम के साथ। रेट्रो रिदम में जो हम गाने बजाते हैं वो चलाते हैं आपकी पसंद के, कई गाने हमारी पसंद के होते हैं, बट कुछ मूवीज़ ऐसी आई हैं बॉलीवुड में जिन्होंने, कहते हैं ना कि एवरग्रीन मूवीज़, चाहे वो डायरेक्टर्स हों, चाहे एक्टर्स हों, चाहे वो दुनिया से चले गए हों, पर उनका नाम आज भी जिंदा है। जैसे ये दो मूवीज़ तो बहुत ही कमाल की रही, जिनको कहते हैं ना कि क्लासिक मूवीज़ का अवार्ड दिया जा चुका है ऑलरेडी। एक तो है मुगल-ए-आज़म मूवी और दूसरी है शोले मूवी। इन्होंने तो इतिहास बना दिया और उस ज़माने में ये जो गाने थे वो फिल्मों की जान हुआ करते थे और आज भी जब भी ये गाने बजते हैं ना तो पूरा माहौल अलग सा हो जाता है। तो हम एक एक करके आपके भी पसंद के गाने चला रहे हैं यहाँ पर। ये जो नेक्स्ट गाना है ये है बॉम्बे का चोर यानी मुंबई का चोर। क्या गा, उस टाइम तो जो आज का मुंबई है उसको उस ज़माने में बॉम्बे कहा जाता था और किशोर दा ने ये गाना गाया तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि मेरी हसरत है मैं हमेशा के लिए मुंबई में यानी कि बॉम्बे में रह जाऊं। और जब उन्हें ये गाना मिला जहाँ पे उनको एहसास हुआ कि भाई मुंबई जो है, बॉम्बे जो है उन्हीं का है, तो बस उन्होंने अपना पैर ऐसा रखा कि जाते जाते तक भी अपना मुंबई अपने दिल में ही लेके गए।
1: रेट्रो रिदम RM2 रेडियो मस्ती।

0: रेट्रो रिदम। 12:48 हो चुके हैं। ये रेट्रो के जो गाने हैं ना, सिर्फ गाने नहीं हैं, ये हैं यादें। जब आप इन्हें सुनते हैं तो आपको कभी बचपन याद आ जाता है, कभी जवानी याद आ जाती है, और कभी कभी वो पुराने दोस्त याद आ जाते हैं जिनको बस कभी कभी उनके साथ पूरा दिन बिता दिया करते थे। पूरी बातें दिन रात उनके साथ प्लानिंग की, हमने ये करेंगे वो करेंगे, बट फिर एक टाइम आता है वो सब बिछड़ जाते हैं। पर उनकी जो यादें हैं, उनके टाइम सुने हुए गाने, उनके साथ में देखी हुई मूवीज़ और जो टाइम आपने उनके साथ स्पेंड किया, वो दिन याद रहते हैं। तो चलिए भाई, हम भी बहुत सारे गानों के साथ थोड़े से मैसेजेस साथ ले लेते हैं। सुया बिहारी जी साथ दे रही हैं अपने पूरे परिवार के साथ में, और अपनी मम्मा के लिए बहुत सारी दुआएं दे रही हैं कि मेरी मम्मा ठीक रहें तो मैं बिल्कुल ठीक रहूँगी। क्या बात है, बिल्कुल आपकी मम्मा ठीक रहेंगी। उनको अच्छा खिलाओ पिलाओ, उनके साथ बातें करो। बुज़ुर्गों को क्या चाहिए, कोई उनके साथ बैठ के थोड़ी सी बातें कर ले। और उनकी शायद कभी उनको सुनने में प्रॉब्लम हो जाती है, कभी उनको चलने में प्रॉब्लम होती है, तो बस कभी उनके साथ कान से कान लगा के बैठ के बात सुन लिए, और कभी उनका हाथ पकड़ लिया अपने हाथों में और लेके कहीं चले गए। बस और उससे ज़्यादा उनको कुछ नहीं चाहिए होता। धनेश्वर जी अपनी पत्नी सुनीता जी के साथ साथ दे रहे हैं, और बहुत ही प्यारे से गाने के साथ में हम उनके साथ कह रहे हैं कि पूरा परिवार, देवदोस्त फैमिली और कॉलेसर फैमिली दोनों साथ बैठे हुए हैं और इंजॉय कर रहे हैं इस प्रोग्राम को। थैंक यू सो मच। वीना जी नोबल फॉन से साथ दे रही हैं, और अपने हबी को बस इतना कह रही हैं, यानी कि देव को, कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, क्या करूँ, आपके बिना मुझसे रहा नहीं जाता। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल अपने हस्बैंड के बिना क्यों जीना, इंजॉय कीजिए ज़िंदगी को, बहुत खूबसूरत ज़िंदगी है। देव जी साथ दे रहे हैं पेरिस से, और बहुत ही प्यारा दिन है आज उनके लिए, स्पेशली आज उनकी वाइफ अमृता जी का बर्थडे है, और एक प्यारे से गाने की फरमाइश की है, और पूरा परिवार स्पेशली देव जी और अंजू, सन अमीश, लिटिल ग्रैंडसन इवॉन, लिटिल ग्रैंड डॉटर अलाना, अलीसिया और एंजेलिका साथ दे रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम को, और अपनी वाइफ को बस इतना कहना चाहते हैं, क्या करूँ तुम्हारे लिए तो जान भी दे सकता हूँ, बट एक बार मांग के तो देखो। क्या बात है भाई, जान मत दीजिए, आज एक प्यारा सा गिफ्ट ज़रूर दीजिएगा हमारी तरफ से भी और अपनी तरफ से भी। इसके साथ में ललिता जीतन जी साथ दे रही हैं, ललित जी साथ दे रहे हैं यूएसए से, और बहुत सारा मैसेजेस और भी आए हैं, थोड़ी देर में फिर से पढ़ेंगे, पर ये इंजॉय कीजिए गाना, एक स्पेशल गाना देव जी आपके लिए जो कि पेरिस से साथ दे रहे हैं।
1: रेट्रो रिदम RM2 रेडियो

0: RM2 रेडियो मस्ती।
1: वेलकम टू RM2
0: रेडियो मस्ती।
2: नॉर्थ साउथ
3: 103.5,
2: ईस्ट वेस्ट
3: 96.4,
2: सेंटर
3: 99.4।
1: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
1: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
4: Time check दोपहर के 1 बज रहे हैं। सभी को नमस्कार। अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आस्था से आस्था आपको नमस्कार।
5: नमस्कार। 1 बजे की समाचारों में स्वागत है आप सभी का। मॉरिशस और रीयूनियन के बीच ड्रग्स के कथित नेटवर्क की जांच में एक नया विवाद सामने आया है। मॉरिशस बॉ काउंसिल ने उन आरोपों को गंभीर बताए हैं जिसके अनुसार पुलिस अधिकारियों ने संदिग्ध गुलशन गोविंद पर अपना वकील बदलने का दबाव डाला था। ये मामला सांसद वेरोनिक लेगोविन के पति से जुड़ा है। उनके वकील रूबेन मुंगापिले को निशाना बनाते हुए वीडियो भी प्रसारित किए गए हैं। बॉ काउंसिल का कहना है कि अगर ये आरोप सही पाए जाते हैं तो ये बचाव पक्ष के काम में रुकावट डालने की कोशिश है। ऐसी स्थिति में पुलिस कमिश्नर को कार्रवाई करनी चाहिए। पुलिस ने बॉ काउंसिल के बयान का संज्ञान लिया। उनका कहना है कि सभी आरोपों को पूरी जांच की जाएगी। पूर्व प्रधानमंत्री प्रवीण जगनाथ आज सुबह 10:30 बजे के करीब लाइन बैरक्स पहुंचे। उन्हें फोन पर कथित जासूसी के मामले की जांच के सिलसिले में बुलाया गया है। इस मामले को मिसे मुस्ताज के नाम से जाना जाता है। प्रवीण जगनाथ के साथ के वकील राउफ गुलबुल और आइवान कोलेन दाविलू भी मौजूद हैं। जांच बातचीत को गुप्त रूप से सुनने वाले कथित उपकरणों की खरीद और इस्तेमाल को लेकर की जा रही है। जांचकर्ता ये जानना चाहते हैं कि इन उपकरणों की खरीद की मंजूरी किसने दी थी और इसका इस्तेमाल किस मकसद से किया गया। ये जांच अक्टूबर 2024 से सामने आई कही कथित फोन बातचीत की रिकॉर्डिंग्स के बाद शुरू हुई थी। मॉरिशस और रोड्रिग्स में 2,73,000 से अधिक लोगों को बेसिक रिटायरमेंट पेंशन मिल रही है। सोशल सिक्योरिटी मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार इनमें 2,66,977 लाभार्थी मॉरिशस में और 6,044 रोड्रिग्स में हैं। 60 से 89 साल के 2,67,686 लोगों को हर महीने 15,555 रुपए मिलते हैं। 90 से 99 साल के 5,093 लोगों को 23,550 रुपए में दिए जाते हैं। वहीं 242 शतायु लोगों को हर महीने 28,735 रुपए मिलते हैं। 1 जनवरी 2027 से बेसिक रिटायरमेंट पेंशन की जगह स्टेट एज पेंशन लागू होगी। इसे 60 साल की उम्र से लिया जा सकेगा, लेकिन तय उम्र से पहले पेंशन लेने हर महीने 0.5% की कटौती होगी। सरकार ने बजट में घोषित आय की जांच की शर्त को लागू नहीं करने का फैसला किया है। विदेश स्तर की खबरों में नेपाल में 26 अगस्त को अचानक आई बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई है कि 22 दिन बाद भी लापता लोगों का पता नहीं लगाया जा सका है। वहीं अभी भी मलबे में दबे शव निकल रहे हैं। इस आपदा में लापता लोगों की संख्या

0: हजार के पार हो चुकी हैं। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए, बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। मुलवी लेन सदाली वक्वामे, मुलवी लेन सदाली वक्वामे 54 साल के 54 years old के मोहम्मद ईशान लातुना, मोहम्मद ईशान लातुना इंतकाल कर गए हैं। उनका जनाजा आज दिन के ढाई बजे उनकी बहन शफरीफा रजब के मकान सदाली वक्वा से निकालकर नमाज जनाजे के लिए कई इस्लाम सदाली वक्वा के मस्जिद ले जाया जाएगा और फिर दफनाने के लिए फिनिक्स का कब्रिस्तान। फ्यूनरल टुडे एट 2:30 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: RM2 Radio Musti.

0: रेट्रो रिदम।
1: 1:08 हो चुके हैं दोस्तों। अभी आप सुन रहे थे रफ़ी साहब और शारदा की आवाज़ में बहुत ही प्यारा सा गाना। पर अभी इसकी बात कहते हैं ना कि ज़िंदगी जब थोड़ी थोड़ी बदलती रही, जब बॉलीवुड में थोड़े साल गुजर जाते हैं तो कई चीज़ों का ट्रेंड चेंज हो जाता है, जैसे गानों के तरीके, उनके धुने, उसके बाद उनकी जो लिरिक्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, उसके साथ साथ में उनके डिज़ाइनर्स चेंज होते हैं, स्टाइल बदल जाता है, मूवी बनाने की मेकिंग अलग स्टाइल की हो जाती है। बट 70s का टाइम जो था ना, वो था शायद आर डी बर्मन साहब का, और उसके साथ में अगर जोड़ी बनी तो किशोर कुमार की। तो आर डी बर्मन और किशोर दा ने ऑलमोस्ट 32 मूवीज में साथ काम किया, और राजेश खन्ना के साथ तो उनकी इतनी जमी कि उनकी तिकड़ी बन गई, यानी कि आर डी बर्मन साहब हो गए, साथ में किशोर कुमार हो गए और साथ में राजेश खन्ना। और जब राजेश खन्ना का साथ मिला तो कहते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री कंप्लीटली बदल गई, और इस तिकड़ी ने क्या किया कि इतिहास रच दिया। और जब गाना आया पन्ना की तमन्ना है हीरा मुझे मिल जाए, तो सच में कहते हैं बॉलीवुड को मिला एक हीरा। एंजॉय कीजिए इस गाने को।
0: रेट्रो रिदम
2: RM2 रेडियो मस्ती।

रेट्रो रिदम। 1:19 हो चुके हैं दोस्तों, आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम रेट्रो रिदम के साथ, जहां पे बहुत सारी हम पुरानी बातें नई बातें लेकर आते हैं। और यहां पर इस समय इतने सारे मैसेजेस आए हैं और सब इंतज़ार में हैं कि काश हमारा मैसेज पढ़ा जाए। अरे आप मैसेज भेजेंगे और हम ना पढ़ें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस समय प्रकाशवंती जी साथ दे रही हैं बेल्जियम से और बहुत ही प्यारे गाने सुन रही हैं और कह रही हैं इतने प्यारे प्यारे गाने चलाओगे तो मैं कैसे काम पर जाऊँगी। बिल्कुल आप काम पर जाएंगे, बस हमें दिल में बसा के चलिए आरएम टू रेडियो मस्ती, जो हमेशा आपके लिए प्यारे प्यारे गाने लेकर आता है। तो बस आप चलते चलिए और ईयर पीस लगाइए और घर से निकल जाइए, काम तो करना ही है ना। तो चलिए जी, जना जी साथ दे रही हैं और अपनी बेटियों और पूरे परिवार के लिए बेस्ट विशेस मांग रही हैं। जीना जयश्री जी साथ दे रही हैं पेरिस से और बहुत ही प्यारे गानों की थैंक यू बोल रही हैं कि प्लीज़ गाने ऐसे ही चलाते रहिए, बहुत मज़ा आ रहा है, थैंक यू सो मच। राजन रघुपति जी साथ दे रहे हैं लंदन से और कह रहे हैं कि मुझे और कुछ कहना ही नहीं, मुझे मेरी कोई पसंद नहीं है क्योंकि गाने ही बहुत अच्छे चल रहे हैं। चलिए थैंक यू सो मच आप सभी का। निशान अमरीश जी साथ दे रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं इस प्रोग्राम को। मालिनी जी सो स्वीट, श्वेता रविश प्रिशा लोवेश आपादू फैमिली, आप सबका साथ मिलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिया जी साथ दे रही हैं और अपने पूरे परिवार के लिए और अपने बच्चों के लिए बेस्ट विशेस मांग रही है और सभी को कह रही हैं आराम से कुछ खाइएगा पीजिएगा रेस्ट कीजिएगा। और थैंक यू फिया जी, आपके गाने बहुत ही अच्छे और प्यारे होते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी आपका मैसेज आता है। इश्ना और उनकी सिस्टर इश्ना की सिस्टर जस्नी का बर्थडे है और वो उनकी मदर इन लॉ फिया की तरफ से बेस्ट विशेस प्रवेश पुवेश एंड किना कियांश आहाना देवान्द्री मामू रोशनी झुलू परिवार और सब बेस्ट विशेस दे रहे हैं और कह रहे हैं कि विशिंग यू वेरी हैप्पी बर्थडे एंड स्पेशली जो भी दिल करता है तुम आज गिफ्ट लो हमारी तरफ से और साथ में मिलते हैं जल्दी से जल्दी। क्या बात है, थैंक यू सो मच आप सभी का जो भी एक दूसरे को याद रखते हैं उनके बर्थडे पे। साथ में ही आज बर्थडे है रेशमी जी का, जिनको उनके हस्बैंड आशीष जी मिष्टी हिमाक्षी रेशमा वाकवा से छाया रामकिशन जी विशेस दे रहे हैं। साथ में ही सीता गीता एंड सभी परिवार के परिवार भी उनको विश कर रहे हैं। एक दूसरे को विशेस जब मिलती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ये आप सबके लिए जिनका भी आज बर्थडे है, इंजॉय कीजिए अपने दिन को और खूबसूरती से आगे बढ़ते जाइए। ये है गाना आप सबके लिए।

0: रेडियो मस्ती।
1: रेट्रो रिदम
2: RM2 रेडियो मस्ती।

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: रेट्रो रिदम।
1: 1:34 हो चुके हैं दोस्तों, और इस समय बहुत सारे लोग ड्राइव करते हुए इस प्रोग्राम को सुन रहे होंगे, साथ साथ डांस कर रहे होंगे, साथ साथ यादों में जुड़े होंगे। कोई रेस्ट कर रहा होगा और कोई कुछ कह रहा होगा कि भाई ये काम करना है, ये करते रहो पर गाने सुनते रहो। तो हम भी आपको यही बोलेंगे, आपके जो भी काम है उनको करते रहिए, पर आरम टू के साथ में आप साथ निभा रहे हैं तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। पर ये जो नेक्स्ट गाना है, ये आवाज़ आप सुनेंगे नितिन मुकेश की। कहते हैं ना कि जब मुकेश साहब की हो गई थी उसके बाद नितिन मुकेश ने गाना शुरू किया, और कहते हैं कि उनकी आवाज़ में इतनी गर्माहट हुआ करती थी कि इतनी अलग सी आवाज़ थी कि बॉलीवुड हिल गया। उन्होंने कहा कि इतनी मीठी और सुरीली आवाज़ मुकेश के ही खानदान से आ सकती है। और ऐसे कहते हैं ना कि जनरेशन टू जनरेशन इंसान के कुछ कर्म चलते रहते हैं, तो शायद मुकेश जी की आवाज़ में ये प्यार आया। और फिर नितिन मुकेश जी के बेटे भी एक एक्टर बने और वो सिंगर भी हैं, पर वो इतना गाते नहीं हैं, पर ये जो नितिन मुकेश जी ने तो अलग ही कारवां बदल दिया। और जब बात हुई कहते हैं मनोज कुमार की, तो मुकेश साहब गाते थे मनोज कुमार जी के लिए, और उसके बाद नितिन साहब ने गाना शुरू किया बहुत सारे एक्टर्स के लिए। जब ऐसे एक्टर्स जैसे गोविंदा हो गए, उसके बाद चंकी पांडे हो गए, इनके लिए जब गाया तो कहते हैं उनकी आवाज़ सेम बन गई। और इन्जॉय कीजिए, ये गाने बहुत ही प्यारे हैं, खूबसूरत, और आपके साथ मिल रहा है। थैंक यू सो मच एवरी वन, इन्जॉय कीजिए इस गाने को।
0: Retro Rhythm
2: RM2 Red

0: रेट्रो रिदम।
1: तो दोस्तों ये रहा रेट्रो रिदम, मैं थी आपके साथ पूनम और आप सुन रहे थे आरएम2 रेडियो मस्ती पर आपका रेट्रो रिदम प्रोग्राम। और मैं तो इतना ही कहूँगी कि जो आप सब हमारे साथ जुड़े हुए थे आपको बस इतना ही कहेंगे कि अपनी यादों को संभाल के रहिए, मुस्कुराते रहिए, वॉल्यूम हाई करते रहिए, कभी काम करते रहिए, कभी अच्छा खाइए, कभी किसी को फ़ोन और मैसेज करके उनका हाल चाल पूछते रहिए। रेडियो मस्ती हमेशा आपके साथ चलता है, एमबीसी हमेशा आपके साथ 24 आवर्स चलता है। आरएम2 स्पेशली आपको सिर्फ इतना कहता है, आपकी जो मुस्कुराहट है बहुत खूब है, जो इस समय हमें सुन रहे हैं और एक चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आ रही है उसके लिए थैंक यू सो मच। ये लास्ट गाना चलेगा हमारी प्यारी सी अनुष्का उदित की तरफ से अपने हस्बैंड अविनाश बुधन जी के लिए, और उनको बस इतना ही कहना चाहती हूँ, तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, क्या करूँ तुम्हारे बिना जी नहीं लगता। तो बस ऐसे ही अपने हस्बैंड के बिना क्या दिल लगाना, बस यही कहते हैं कि दिल लगा के रखो गानों के साथ, अपने काम के साथ, और अपनी जितनी मोहब्बत बांट सकते हो बांटते रहो। इन्जॉय कीजिए गानों को, मेरे बाद आपको साथ मिलेगा परी का, और परी लेकर आएंगे बॉम्बे टॉकीज जहाँ पर बातें होती हैं बॉम्बे की, यानी ये मुंबई इंडस्ट्री की, बॉलीवुड की, और बॉलीवुड के बहुत सारी खबरें लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते हैं परी से। तो हम तो यही करेंगे, परी को थोड़ी देर बाद बोलेंगे हेलो और आपको मैं कहती हूँ बाय बाय।
0: रेट्रो रिदम
2: आरएम2 रेडियो मस्ती।

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musty.
0: Radio Musty.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
5: Time check दोपहर के 2 बज रहे हैं. सभी को नमस्कार. आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आस्था से. आस्था आपको नमस्कार.
6: नमस्कार. 2 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का. मॉरिशस और रीयूनियन के बीच नशीले पदार्थों के कथित नेटवर्क की जांच में एक नया विवाद. मॉरिशस बॉ काउंसिल ने उन आरोपों को गंभीर बताया है जिसके अनुसार पुलिस अधिकारियों ने संदिग्ध गुलशन गोविंद पर अपना वकील बदलने का दबाव डाला था. इससे ये मामला सांसद वेरोनिक ले गोविंद के पति से जुड़ा है. उनके वकील रूबेन मुहंगा पिले को निशाना बनाते हुए कुछ वीडियो भी प्रसारित किए गए हैं. बॉ काउंसिल का कहना है कि अगर ये आरोप सही जाते हैं तो ये बचाव पक्ष के काम में रुकावट डालने की कोशिश है. ऐसी स्थिति में पुलिस कमिश्नर को कार्रवाई करनी चाहिए. पुलिस ने बार काउंसिल के बयान का संज्ञान लिया. उनका कहना है कि सभी आरोपों की पूरी जांच की जाएगी. पूर्व प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगनाथ आज सुबह 10:30 से लाइन बैराक्स में हैं. उन्हें फोन पर कथित जासूसी के मामले की जांच के सिलसिले में बुलाया गया है. प्रवीण जगनाथ के साथ उनके वकील राव गुलबुल और आइवान कोलेंदावेलू भी मौजूद हैं. जांच बातचीत को गुप्त रूप से सुनने वाले कथित उपकरणों की खरीद और इस्तेमाल को लेकर की जा रही है. आपको बता दें कि जांचकर्ता ये जानना चाहते हैं कि इन उपकरणों की खरीद की मंजूरी किसने दी थी और इनका इस्तेमाल किस मकसद से किया गया. ये जांच अक्टूबर 2024 से सामने आई कई कथित फोन बातचीत की रिकॉर्डिंग्स के बाद शुरू हुई थी. मॉरिशस और रोड्रिग्स में 2,73,000 से अधिक लोगों को बेसिक रिटायरमेंट पेंशन मिल रही है. सोशल सिक्योरिटी मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार इनमें 2,66,977 लाभार्थी मॉरिशस में और 6,044 रोड्रिग्स में हैं. 60 से 89 साल के 2,67,686 लोगों को हर महीने 15,555 रुपये मिलते हैं. 90 से 99 साल के 5,093 लोगों को 23,550 रुपये दिए जाते हैं. वहीं 242 शतायु लोगों को हर महीने 28,735 रुपये मिलते हैं. बात करते हैं स्वास्थ्य के बारे में. मॉरिशस में कुछ तरह के कैंसर के इलाज के लिए अब नैनो नाइफ नाम की नई तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है. नेशनल सेंटर कैंसर सेंटर में इस तरीके से चुनिंदा मरीजों का इलाज पारंपरिक ऑपरेशन के बिना किया जा सकता है. इस इलाज में बहुत पतली सुइयों की मदद से कैंसर की गांठ को निशाना बनाया जाता है. इससे आसपास के स्वस्थ हिस्सों को कम नुकसान पहुंचता है और मरीज को ठीक होने में भी आसानी होती है. हालांकि ये इलाज हर मरीज के लिए नहीं. कैंसर की गांठ कितनी बड़ी है और मरीज शरीर के किस हिस्से में बीमार हैं और इसे देखने के बाद ही डॉक्टर फैसला करते हैं. प्रोफेसर एडवर्ड लैमशानलिन हर महीने या 3 महीने मॉरिशस आएंगे. वे मरीजों के इलाज में सहयोग देने के साथ यहां डॉक्टरों को ट्रेनिंग भी देंगी. नेपाल की स्थिति की बात. नेपाल में 26 अगस्त को अचानक आई बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई कि 22 दिन बाद भी लापता लोगों का पता नहीं लगाया जा सका है. इस आपदा में लापता हुए लोगों की संख्या 6,000 को पार कर चुकी है. प्रभावित जिलों में दोबारा जांच के बाद लापता लोगों की लिस्ट में करीब 1,000 और नाम जोड़े हैं. नेपाल में अभी भी 6,000 से ज्यादा लोग लापता हैं. इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए.
0: News on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
1: More music in the mix.
0: Aaj Azadi hai. Bombay Talkies. Radio

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: एंड वेल फ्रेंड्स आफ्टरनून टाइम 2:08 थर्सडे की ये दोपहर जहां पर आप बने हैं हमारे म्यूजिकल हमसफर. सो हाउ इज योर हाल चाल. उम्मीद करते हैं सब कुछ ठीक ठाक. एंड दिस थर्सडे भी आपका अच्छे से शुरू हुआ है और अभी तक अच्छा अच्छा ही बीत रहा है और गुड विशेस तो हम आप तक पहुंचाते रहते हैं. मंडे के बाद ट्यूजडे वेडनेसडे एंड नाउ फाइनली थर्सडे.

सो जस्ट वन मोर डे टू गो, उसके बाद तो वीकेंड करने वाला है हम सभी का. वेलकम, सो लेट्स मेक दिस थर्सडे आफ्टरनून स्पेशल. मैं हूं परी आपके साथ. इट्स टाइम फॉर योर बॉम्बे टॉकीज. जी हाँ दोस्तों, जानते हैं मंडे टू फ्राइडे 2 से लेकर 4 बजे तक डेडिकेटेड होता है फुल ऑन बॉलीवुड के नाम, जहां पर बी टाउन की खबरें, आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज की खबरें और कुछ लेटेस्ट ट्रैक्स हम लेकर आते हैं आपके नाम. बीट इंडी पॉप, बीट बॉलीवुड सॉन्ग, सब कुछ मिलता है आपको 2 से लेकर 4 बजे तक. सो अभी हमारे म्यूजिकल हम सफर बन जाए. द नेक्स्ट वन इज अ वेरी स्पेशल वन, ए आर रहमान एंड आशा भोसले का कॉम्बिनेशन. वी हैव दिस ब्यूटिफुल इंडी पॉप आप सभी के नाम, फॉर ऑल द फैंस ऑफ ए आर रहमान, फॉर ऑल द फैंस ऑफ आशा भोसले. Enjoy this one.

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: सो वेल फ्रेंड्स, 2:18 प्रियंका चोपड़ा के पति और अमेरिकन सिंगर एक्टर निक जोनास ने 16 सितंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया और आज थर्सडे को ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपड़ा ने पति के साथ स्पेशल पोस्ट शेयर किया. उन्होंने कुछ फोटोज शेयर किए और उसी के

साथ एक वीडियो जिसमें वो बेटी मालती के साथ सिंगिंग रिहर्सल करते नजर आ रहे हैं। प्रियंका चोपड़ा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से ये पोस्ट शेयर किया और उन्होंने एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें प्रियंका चोपड़ा पति निक जोनस के साथ नजर आ रही है। दोनों काफी रोमांटिक अंदाज में नजर आ रही है। साथ ही एक तस्वीर जहां पर वो काफी खूबसूरत लोकेशन नजर आ रहा है जो काफी नेचर के बीच नजर आ रहा है, और एक तस्वीर जिसमें निक एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं और एक जहां पर वो ट्रैवल कर रहे हैं। सो यहां पर बहुत सारी पिक्चर्स के साथ उन्होंने एक ब्यूटीफुल कैप्शन शेयर करते हुए एक पोस्ट लिखा है। तस्वीरों की ये सीरीज शेयर करते हुए प्रियंका चोपड़ा ने प्यारा सा नोट भी लिखा। देसी गर्ल ने कैप्शन में लिखा है, दिस वन गोज आउट टू दैट मैन दैट मेक्स ऑल आवर ड्रीम्स कम ट्रू एवरी डे, वी लव यू गागा, एंड दैट्स अ स्पेशल स्पेशल बर्थडे विश। ये है उनकी ब्यूटीफुल वाइफ प्रियंका चोपड़ा की ओर से। सो वेल, निक जोनास जिन्होंने कल अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया और यहाँ पर उनकी लवली वाइफ सेंडिंग लोड्स ऑफ गुड विशेस। RM2 रेडियो मस्ती।

0: 92 रेडियो मस्ती।
1: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, सारीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल।

0: RM2
1: Radio Musti.
0: Samsung Galaxy S26 FE अब आ गया है सिर्फ 36,990 रुपीस में. साथ में मिल रहा है 6,000 रुपीस का डिस्काउंट. आप सब जानते ही हैं, लेकिन प्रोसेसर में आपके पास पेमेंट की चॉइस भी है. आप चाहें तो अपने बैंक कार्ड से 3 महीने में बिना किसी इंटरेस्ट की पेमेंट करें, या फिर अपने क्रेडिट कार्ड से 12 महीने में बिल्कुल बिना इंटरेस्ट की पेमेंट. और हाँ, भूलिएगा मत, गिफ्ट में मिलेंगे सैमसंग केयर प्लस और गूगल AI प्रो. तो देर किस बात की है, सैमसंग गैलेक्सी S26 FE अब अवेलेबल है थ्वासिसान के स्टोर्स में और thwasisan.mu पर भी. RM2
1: रेडियो मस्ती.

0: रेडियो मस्ती।
1: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, सारीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड अपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
0: RM2 Radio Musti.
2: एंड वेल, यहाँ पर हमारे लिसनर्स हमारा साथ दे रहे हैं। सो वी हैव एशना, हमारा साथ दे रही हैं आप, और कहते हैं कि आज सिस्टर इन लॉ जेशनी इज सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे। बेस्ट विशेज स्पेशली फ्रॉम मदर इन लॉ फिया, उनके हस्बैंड प्रवेश, ब्रदर इन लॉ पुवेश, बेबी कियांश एंड नीस अहाना, मामा है देवेंद्री, और साथ में सभी मामू एंड मामीज फ्रॉम ननंद रोशनी, सभी जुलाल परिवार, और साथ ही साथ जेशनी के लिए स्पेशल विशेज दैट मे This day bring loads of happiness and बहुत सारी खुशियां उनके नाम। चलिए विजया जी, यहाँ पर आप भी हमारा साथ दे रहे हैं। आवारा पंटू का गाना आ दे गया आपके दिल को खुशी। सो ऐसे ही कुछ प्यारे गानों के साथ आपको एंटरटेन करेंगे। थैंक यू सो मच साथ देने के लिए ऑन रेडियो मस्ती। साथ ही अब्दुल अंसारा बानू आप भी आए हैं बनकर हमारे म्यूजिकल हम सफर। सो वी हैव दिस खूबसूरत गाना आपके नाम, मधुर शर्मा की आवाज, फ्रॉम द फिल्म मिर्जापुर द मूवी। दिस वन गोज आउट फॉर ऑल द लिसनर्स जो हमारे साथ कनेक्टेड हैं। चलिए आपके इस आफ्टरनून को बना रहे हैं खास स्पेशल। दैट्स योर बॉम्बे टॉकीज़। मैं हूं परी आपके साथ दोपहर के 4 बजे तक।

0: The Time is brought to you by
1: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
0: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
2: Radio Musti.
3: North, South,
2: 103.5.
3: East, West,
2: 96.4.
3: Center,
2: 99.4.
4: RM2, Radio Musti.
2: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Time check, 3 p.m. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है आस्था, आपको नमस्कार।
6: नमस्कार, सपहर 3 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। मॉरिशस में कुछ तरह के कैंसर के इलाज के लिए अब नानो नाइफ नाम की नई तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। नेशनल कैंसर सेंटर में इस तरीके से चुनिंदा मरीजों का इलाज पारंपरिक ऑपरेशन के बिना किया जा सकता है। इस इलाज में बहुत पतली सुइयों की मदद से कैंसर की गांठ को निशाना बनाया जाता है। इससे आसपास के स्वस्थ हिस्सों को कम नुकसान पहुंचता है और मरीज को ठीक होने में भी आसानी होती है। हालांकि ये इलाज हर मरीज के लिए नहीं है। कैंसर की गांठ कितनी बड़ी है और शरीर के किस हिस्से में है, इसे देखने के बाद ही डॉक्टर फैसला करते हैं। प्रोफेसर एडवर्ड लामशानिन हर 3 महीने में मॉरिशस आएंगे। वे मरीजों के इलाज में सहयोग देने के साथ यहाँ के डॉक्टरों को प्रशिक्षित भी करेंगे। गन्ने की खोई से अब घावों के लिए खास पट्टी बनाई जा रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस के शोधकर्ता इसे एक त्वचा रोग से होने वाले घावों के इलाज के लिए तैयार कर रही है। इस पट्टी में कीटाणुओं से लड़ने वाला एक तत्व भी होगा। शोध सफल रहा तो इसे बीमारी से प्रभावित देशों में उपलब्ध कराया जा सकेगा। मॉरिशस में पिछले 2 हफ्तों के दौरान ज्यादातर सब्जियों के दाम 15-30% तक बढ़े हैं। बाजारों और बड़े बिक्री केंद्रों में इसका असर दिखा जा रहा है। छोटे किसानों के अनुसार ठंड, तेज हवा और पानी की कमी के कारण फसलों की बढ़त धीमी हुई है। इससे बाजार में सब्जियों की उपलब्धता भी कम हुई है। हालांकि फिलहाल ज्यादा चिंता की बात नहीं है। खेतों में मौजूद सब्जियां अक्टूबर के मध्य तक देश की मांग पूरा करने के लिए पर्याप्त मानी जा रही है। 13 साल बाद नेशनल इनिशिएटिव फॉर सिविक एजुकेशन यानी नाइस की वापसी हो रही है। इसके प्रारंभिक चरण में ग्रेड आठ के 200 विद्यार्थी हिस्सा लेंगे। 16 से 28 नवंबर तक चलने वाली इस पहल में छात्रों को अनुशासन, जिम्मेदारी, सेवा भावना, मिलजुल कर रहने और सामूहिक रूप से काम करने की सीख दी जाएगी। पहले सप्ताह में देश के 4 क्षेत्रों में अलग अलग गतिविधियां और प्रशिक्षण होंगे। इसके बाद छात्र 1 सप्ताह तक आवासीय कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसकी शुरुआत से पहले प्रशिक्षकों के लिए 3 दिन का विशेष प्रशिक्षण भी आयोजित किया जाएगा। नेपाल में 26 अगस्त को अचानक आई बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई है कि 22 दिन बाद भी लापता लोगों की तलाश जारी है और अभी तक सैकड़ों लोगों की लाशें नहीं मिली हैं। वहीं भी मलबे में दबे शव निकाल रहे हैं। इसी के साथ ये समाचार समाप्त हुए। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। Trop de douce, Despero Entry Road, Trop de douce, 69 years old की श्रीमती तिलक की मृत्यु हो गई है। पैदाइश बगालू, लोग उन्हें बेटिया के नाम से अधिक जानती थी। उनके अर्थी आज शाम साढ़े चार बजे उनके भांजे रवीन बगालू के मकान थोदूस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुशों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टूडे 8:30 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
2: On NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
7: More music in the mix.
2: Aaj Azadi hai.
8: Bombay Talkies,
2: Radio Musti.
4: Radio Musti.

0: north, south, east, or west. Tune into the very best. Radio Masti, your number one Bollywood station.
1: So, well, good music continues. ये है RM2 Radio Masti, जहाँ पर आप हमारा साथ दे रहे हैं. Afternoon time, it's 3:45 already. साथ देते रहिए and keep enjoying ये खूबसूरत गाने. For now, we have this गाना from the film Shiddat, dedicate कर रहे हैं आप सभी के नाम जो दे रहे हैं हमारा साथ.

और इन्हीं ट्रैक्स के साथ इट्स टाइम फॉर परी टू से अलविदा. थैंक यू सो मच, आपने इतने प्यार से साथ दिया. और वेल, यहाँ पर हमारे सभी लिसनर्स साथ दे रहे हैं. विजया जी, आप भी हमारा साथ दे रही हैं. थैंक यू फॉर स्टेइंग कनेक्टेड.

0: to Radio Mystique.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
0: Radio Musti.
1: North, South,
0: 103.5.
1: East, West,
0: 96.4.
1: Center,
0: 99.4.
3: RM2, Radio Musti.
0: Radio Musti.
3: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
4: Time check, 4 p.m. सुनते हैं देश विदेश की खबरें आस्था से. आपको नमस्कार.
5: नमस्कार. 4 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का. गन्ने की खोई से अब घावों के लिए खास पट्टी बनाई जा रही है. यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस के शोधकर्ता इसे एक त्वचा रोग से होने वाले घावों के इलाज के लिए तैयार कर रहे हैं. इस पट्टी में कीटाणुओं से लड़ने वाला एक तत्व भी होगा. शोध सफल रहा तो

0: इसे बीमारी से प्रभावित देशों में उपलब्ध कराया जा सकेगा। गिश्ते के औद्योगिक क्षेत्र और M2 मोटरवे के किनारे ज्यादा पेड़ लगाकर इलाके को हरा भरा करने की पहल गिश्ते इको इंडस्ट्रियल जोन परियोजना के दूसरे चरण की शुरुआत पर्यावरण मंत्री की मौजूदगी में हुई। IBL ग्रुप की स्कॉट लिमिटेड द्वारा तैयार इस परियोजना को करीब 30 कंपनियों के साथ स्थानीय और सरकारी अधिकारियों का सहयोग मिल रहा है। मॉरिशस में पिछले दो हफ्तों के दौरान ज्यादातर सब्जियों के दाम 15-30% तक बढ़े। बाजारों और बड़े बिक्री केंद्रों में इसका असर देखा जा रहा है। छोटे किसानों के अनुसार ठंड, तेज हवा और पानी की कमी के कारण फसलों की बढ़त धीमी हुई। इससे बाजार में सब्जियों की उपलब्धता भी कम हुई है। हालांकि फिलहाल ज्यादा चिंता की बात नहीं है। खेतों में मौजूद सब्जियां अक्टूबर के मध्य तक देश की मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त मानी जा रही है। दक्षिण अफ्रीका में दो महीने के भीतर 9 महिलाओं के शव मिलने से चिंता बढ़ गई है। ताज़ा मामला जोहान्सबर्ग के पूर्वी इलाके डोनपार्क का है, जहां सड़क किनारे चादर में लिपटा एक महिला का शव मिला। उसकी पहचान अभी नहीं हुई है। जुलाई से अब तक अलग अलग इलाकों में 8 अन्य महिलाओं के शव मिल चुके हैं। कई शवों पर चोट के निशान पाए गए। हालांकि पुलिस ने अभी भी ये साफ नहीं किया है कि सभी मामले आपस में जुड़े हैं या इसके पीछे किसी एक व्यक्ति का हाथ है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। हम आपसे मिलेंगे ठीक 6 बजे एक पूरे समाचार बुलेटिन के साथ।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: तो चलिए यहाँ पर 4:07 साथ दे रहे हैं आप ऑन RM2 रेडियो मस्ती हांसनी विल बी जॉइनिंग इन सून एंड दैट्स योर रफ्तार वाइब्स
1: नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट ट्यून इन टू द वेरी बेस्ट रेडियो मस्ती योर नंबर वन बेलोवेड स्टेशन

0: 4:35 PM, a warm welcome on Radio Masti, wishing you all a great afternoon. आप सभी सुनने वालों का हम स्वागत करेंगे. यहाँ पर आ गई है आपके साथ हंसनी. आई बी विद यू, साथ साथ चलने के लिए इन आज का रफ्तार वाइब्स. थर्सडे वाला ये जो दिन आया है, थर्सडे की आफ्टरनून है जी, और वीक का प्रेशर अब धीरे धीरे कम हो रहा है ना. दैट्स ग्रेट. सो आर एम टू रेडियो मस्ती आपके साथ आपकी आफ्टरनून एनर्जी बूस्ट करने के लिए बिल्कुल हम है तैयार विद द ग्रेटेस्ट सॉन्ग्स, धमाकेदार गाने. सो क्या हाल चाल है? रियली होप कि आज का दिन ठीक से गया है, और अगर ठीक नहीं था तो अभी ठीक बनाएंगे. वेल सेट. ऑलराइट, यहाँ पर कुछ अच्छी अच्छी बातें, कुछ मोटिवेशनल यहाँ पर जो सोच है, जो बातें हैं, हम लेकर आएंगे टू बूस्ट अप योर मूड एज वेल एज योर एनर्जी लेवल. सो ट्रैफिक चाहे स्लो हो, लेकिन हमारी एनर्जी बिल्कुल स्लो नहीं होने वाली है. दैट्स करेक्ट. बिल्कुल यहाँ पर साथ जारी है हमारा अप टिल 7 PM. जॉइन अस इन आज का रफ्तार वाइब्स. आप स्टीयरिंग संभाल लीजिए और बाकी मोड रिफ्रेश करने की पूरी जिम्मेदारी हमारी, राइट? सो यहाँ पर जितने भी हमारे दोस्त इस समय ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, ऑलरेडी यू आर इन द क्यू, यहाँ पर कतार लंबी है आपके सामने. ओहो, आप कितने बजे घर पहुँचने वाले हो? आराम से, इत्मीनान से आप अपनी स्टीयरिंग को संभाले. प्लीज बी सेफ एंड डोंट वरी, आप अकेले तो नहीं है, पूरी जो ड्राइव टाइम फैमिली है ना आपके साथ बिल्कुल जुड़ गई है टू बी पार्ट ऑफ आज का रफ्तार वाइब्स. थोड़ी देर में यहाँ पर अरविंद विल जॉइन अस. वो आएंगे टू गिव अस द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स न्यूज, और कुछ हमारी बातें, कुछ आपकी तरफ से भी बातें हो जाएगी. दैट्स राइट. इसके लिए करेंगे आप लोगों का इंतजार ऑन 5:49, 12:94. सो हम तो बिल्कुल है तैयार जी. क्या आप हो सब रेडी हमारे साथ टू बी इन फॉर आज का रफ्तार वाइब्स? इस यस यहाँ पर आपका जवाब आ गया है, ओनली यस, ये तो हमें पता है. तो चलिए अपने म्यूजिकल सफर को हम आगे बढ़ाते हैं.
1: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स,
2: RM2.

0: RM2
1: Radio Masti.
0: Feel the Masti.
2: Sports Magazine is brought to you by Quality Decor, the floor expert.
1: Sports News.
0: Radio Masti in the mix.
3: Well tuned on Radio Masti. Yes, a special time to ho hi chala hai to get the latest from the sports world. To yahan par chaliye hum Arvind ka warm welcome kar lete hai. Wishing you a great afternoon, Arvind. Aap kaise ho?
4: Good afternoon aapko, Hansini. Good afternoon, Radio Masti listeners. Shuru karenge air badminton ke saath. Vise jab main aa raha tha, I was quite excited ki khush khabri sunaye ki aaj subah hum log bata rahe the ki air badminton ki hamari team दूसरा मैच जीतकर क्वालिफाई हुई. यस, दे क्वालिफाइड. आज सुबह सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई हुए, लेकिन सेमीफाइनल में उनकी हार हुई बिने के खिलाफ 60-50. तो ये टीम टूर्नामेंट है जिसमें मॉरिशस ने एक मैच जीता, लेकिन दूसरा मैच हमारी टीम हार गई. तो अब तीसरे स्थान के लिए मैच इनको खेलना होगा. इन्होंने अच्छा खेला वीकेंड से फॉर दैट लेवल. बाकी स्पोर्ट्स के बारे में आपको बता दें, इट्स द यूरोपा कप आज मैच होंगे, लीग स्टेज के मैच. सबसे पहले लेव्स्की सोफिया और भी साल्सबर्ग, क्रोएटी होफेनहाइम, बेसिकतास मार्सेई, सेल्टिक फेरेनवारोस, क्रिस्टल पैलेस, लेच पोज़्नन, यूवेंटुस का मुकाबला एनईसी निजमेगन से होगा. ये मैच एमबीसी टीवी पर लाइव. लिल स्टॉर्म अगेंस्ट टोरेंजे, रियल सोसिएदाद बोर्नमुथ, प्लाजेन यूनियन सेंट जिलवाज. सो आज इंग्लैंड की दो टीमें मैदान में उतरेंगी. कल एक टीम की जीत हुई, आज दो टीमें हैं, क्रिस्टल पैलेस और बोर्नमुथ. इंग्लैंड की बात हुई तो इंग्लिश लीग कप के थर्ड राउंड में मैनचेस्टर सिटी और नॉर्विच सिटी के बीच मुकाबला होगा आज. जो जीतेगा उसका मुकाबला है ब्राइटन से. ब्राइटन जिसने कल रात मैनचेस्टर यूनाइटेड को अंधकार में भेजा, मैनचेस्टर यूनाइटेड की हार हुई. 50 साल बाद ऐसा हुआ ओल्ड ट्रैफर्ड में कि 2-0 से मैनचेस्टर यूनाइटेड की जीत हो रही थी और 3-2 से ये मैच हार गए. आज दिन भर इसी के बारे में सभी लोग चर्चा कर रहे हैं. भोजपुरी में एक कहावत है, छिलल खांसी भागल. सुनाए कभी? सुनाए भोजपुरी में, यानी जीत के एकदम करीब लेकिन हाथ से फिसल गई.
3: एक्चुअली क्या है कि नजर लगे
4: हैं, चुप हैं आप, कुछ
3: एकदम सन्नाटा छा गया है.
4: सन्नाटा छा गया
3: लगता है, नजर लग गई है भाई.
4: सब लोग कहते हैं ब्राइटनेस जब आता है तो वही उजाला चारों तरफ ब्राइट होता है, लेकिन ब्राइटन की टीम जब ओल्ड ट्रैफर्ड आई तो अंधकार हो गया.
3: यहाँ पर ब्राइटन जब आता है तो ये हो गया है,
4: हो जाता है. और कल प्रीमियर लीग के लिए ब्रेंटफोर्ड का मुकाबला चेल्सी से. सैटरडे फिक्स्चर्स आपको दे दें, स्पर्स एस्टन विला ये अर्ली किक ऑफ होगा, फिर ब्राइटन आर्सेनल, ये दैट्स गोइंग टू बी ए बिग मैच. ब्राइटन जो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है उसका मुकाबला आर्सेनल से, वो भी ब्राइटन होम. यहाँ पर एक स्टेटमेंट है कि आर्सेनल जो अभी रफ्तार पकड़ चुकी है ये टीम, क्या ब्राइटन के खिलाफ दे कैन डू दैट. गुड मैच ब्राइटन अगेंस्ट आर्सेनल. एवर्टन इप्सविच, फिर न्यूकासल यूनाइटेड हल सिटी, ये मैच एमबीसी टीवी पर लाइव. नॉटिंघम फॉरेस्ट कोवेंट्री, सैटरडे लेट मैच होगा ये. संडे फिक्स्चर्स, बोर्नमुथ लिवरपूल, लीड्स यूनाइटेड क्रिस्टल पैलेस, मैनचेस्टर सिटी सन्डरलैंड, ये सभी मैच 5 बजे खेले जाएंगे. फुलहम मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए ए वे मैच ये सारे 7 बजे के लिए हैं. सो फुटबॉल के को लेकर काफी कुछ होगा इन आने वाले दिनों में. लेट्स चेक आउट द क्रिकेट लेटेस्ट, क्योंकि आज भारतीय टीम अपना तीसरा और अंतिम T20 मैच खेलेगी. ये 6 बजे शुरू होगा. सो इट्स कंफर्म 6 बजे. तो आज कुछ फ्रेंच खिलाड़ियों को, यानी वे खिलाड़ी जो 2 मैचों में नहीं खेल पाए उनको मौका दिया जा सकता है. वैभव सूर्यवंशी टीम में है, सो आज मोस्ट प्रोबेबली उसको मौका दिया जा सकता है खेलने के लिए. लेट्स वेट एंड वॉच. और ये एक कीर्तिमान होगा कि पहली बार आप इंटरनेशनल लेवल मॉरिशस की मॉरिशस ने बल्कि सूर्यवंशी को ये मैच खेलने का मौका मिलेगा। फीफा अंडर 15 वर्ल्ड कप लोकल स्तर पर बात करें और फेस्टिवल वेवेंसिस मॉरिशस को ग्रुप आ में निकाला गया है, तो फीफा आज वहां पर ड्रॉ निकाले गए फॉर दी वर्ल्ड कप अंडर 15 जो 22 से 31 अक्टूबर से तक लगेगा अज़रबैजान में। मॉरिशस ग्रुप आ में उसके साथ होगा बोस्निया हर्ज़ेगोविना, ब्रुनेई, गुयाना, ईरान और वियतनाम। तो हमारी टीम तैयार है, 21 खिलाड़ियों का नाम आ चुका है, अब देखेंगे इनको कब इनमें से किसको चुना जाएगा आगे खेलने के लिए। सोहन सिंह कहेंगे कि कभी खुशी तो कभी गम, सो सब दिन ना हो एक समान, यू विल हैव योर, आप लोगों का दिन भी आएगा,
3: बिल्कुल आएगा और जल्द ही आएगा।
4: ओके, लेट्स वेट फॉर दैट, जल्द आएगा। तो आई एम श्योर कि हमारे विशाल भाई है ना कैंटीन वाले,
3: अभी सुन रहे हैं।
4: हाँ, सुन रहे हैं। मैंने पूछा उनसे, सुबह सुना स्पोर्ट्स न्यूज, उसने कहा हाँ काम करके सुन रहा था लेकिन वो
3: फोकस नहीं था,
4: नहीं वो वाइब्स उनको मिल रहा था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में हमने क्या कहा।
3: ओके,
4: ठीक, तो उनको हम सलाम कहते हैं और सभी लोग जो बहुत लोग ऐसे हैं जो ड्राइव करते हुए यू नो दे आर स्ट्रेस्ड और घर जा रहे हैं ड्राइव करते हुए, तो जब एक दो ये छोटी मोटी बातें हम लोग जोड़ देते हैं तो हंसते हैं अपने दोस्तों को याद करके कि यू नो कि इसने ये कहा उसने वो कहा स्पोर्ट्स के बारे में। सो दैट्स द फील गुड फैक्टर, नथिंग सीरियस, दिल पे मत लो यार, हम लोग यहाँ पर आपको रिलैक्स करने के लिए ऐसा कहते हैं।
3: ऊपर से आप ये सब शेयर कर रही हैं, काम का स्ट्रेस तो है ही था यहाँ पर, एक्चुअली आपने फुटबॉल स्ट्रेस
4: नहीं नहीं ये देश के साथ होता है, देश के साथ।
3: ओके, सो लेट्स गिव इट अ ट्राई, यहाँ पे स्ट्रेस फ्री हम हो जाते हैं एंड वी डू कीप द ट्रस्ट कि हम लौटकर वापस
4: जरूर आएंगे।
3: या थैंकिंग यू सो मच अरविंद फॉर ऑल द न्यूज।
4: यू वेलकम।
2: दिस मैगजीन वाज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेको, द फ्लो एक्सपर्ट।
1: Pour donner vie à vos projets de rénovation, choisissez Quality Décor. Carrelage, quartz, granit, ardoise, slab, tout est là pour vous dans nos 12 showrooms répartis sur toute l'île. Besoin d'un petit coup de pouce? Nous offrons des facilités de crédit pour rendre vos rêves accessibles et un service de transport pour vous livrer à la maison. Venez découvrir nos produits de qualité tout en profitant des conseils de nos experts. Suivez-nous sur Facebook, Quality Décor, pour ne pas manquer nos offres exclusives.

0: RM2
1: रेडियो मस्ती।
2: गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर अपनी पूजा को अधिक पवित्र और आनंदमय बनाएं और केजी क्लासिक प्योर घी के साथ एक सदी से भी ज्यादा भारत का असली घी मंडी पर उपस्थित है। इम्पोर्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय आर रैपिड सर्विसेज लिमिटेड। फोन नंबर 4128468। आर के जी क्लासिक प्योर घी विशेस यू अ पायस गणेश चतुर्थी।
3: एगो लास्योरेंस लावी कौन जी है जे काल कुछ तोहरा हो जाए तो ई तोहर और तोहर परिवार खातिर एगो सुरक्षा है। पर जाने ला ई से तू एगो इन्वेस्टमेंट भी करे सकबा। सिकम मैक्स इन्वेस्टमेंट ऐसन कई गो ऑप्शन बा जोन बहुत फ्लेक्सिबल बाटी। तोहर महीना के पेमेंट के एगो हिस्सा तोहर लास्योरेंस लावी में जाए और दूसर हिस्सा तोहर पसंद के फोन में सकबा इन्वेस्टी करे जो निर्भर रही कि आप कितना रिस्क ले सकबा। नतीजा एगो ऐसन लास्योरेंस जोन तोहर परिवार के सुरक्षा करी और तोहर निवेश योजना में भी कामे आई। सिकम के प्रस्तावित लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स पर जस्ती जानकारी खातिर हमनी के प्रतिनिधि से संपर्क कर या sikkim.mu पर जाइह। इमे नियम और शर्त भी लागू बा। सिकम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला।
4: सिकम ग्रुप ए लाइफ टाइम कमिटमेंट।
5: Enzo, mon beau arrange mon lacaz. Enzo, mon beau fait rénovation. Ça joue là, c'est cote métrique. Depuis les premiers jusqu'à les 30 septembre, découvrez à 7-6 prises, c'est gros promo. L'eau carreau, douche, sanitaire et robinetterie. Septembre promo, 7 promo, cote métrique. Métrique, une enseigne du groupe Karimji.
0: RM2
1: Radio Musty.
6: आफ्टरनून टाइम में 5:10 हो चला है। वैसे आज के शो में होंगे अमेजिंग सॉन्ग्स, थोड़ी सी और मस्ती और कुछ आपकी तरफ से और हमारी तरफ से भी दिलचस्प बातें। तो माय डियर फ्रेंड्स, सीट बेल्ट ऑन, आंखें और आपके सब फोकस सड़कों पर। एंड ऑफ कोर्स म्यूजिक का जो वॉल्यूम है थोड़ा सा अप कर लीजिए। यहाँ पर द बेस्ट मिक्स म्यूजिक हम लेकर आ रहे हैं। दिस इज रफ्तार वाइब्स ऑन रेडियो मस्ती। अगर अभी आपने बस रेडियो ऑन कर लिया है, मे बी अभी आपने कुछ टाइम निकाला है, कितने बिजी आप थे कोई बात नहीं, हम सभी का वेलकम जो करते हैं।

0: of the show. वैसे घर की तरफ वापसी हो रही है, so please be safe on the road, take very good care and focus on your driving. और अभी कुछ टाइम हो चला है टू रिलैक्स, कुछ आराम फरमाने के लिए, टू टेक अ ब्रेक. एक्चुअली सुबह से कितना सारा काम हो रहा है ना, तो अभी के लिए कुछ मी टाइम हो जाए, आई मी एंड माई सेल्फ वाला टाइम अगर हो जाएगा सो दैट विल बी ग्रेट. एक्चुअली तो जल्दी से मूड को हैप्पी मूड पे स्विच कर लीजिए, यही तो हम चाहते हैं ना. वैसे आज आपको स्माइल किस वजह से हुई है, जरा आप सोच लीजिए, दिमाग लगाइए कि आज किस बात पर आपको बस हैप्पी हुए हैं, कोई गुड न्यूज़ आपको मिला है, या फिर किसी का स्वीट मैसेज आया, या फिर ऐसे ही जिंदगी से कुछ और प्यार आ गया है, या फिर कोई एक ऐसा फेवरेट गाना जो चल पड़ा और सुनते ही जो आपका मूड है वो ऑटोमेटिकली बेटर हो गया. सोचिए यहाँ पर, टेक योर टाइम, लेकिन यू कैन सेंड अ मैसेज अगर आप फ्री हो तो. राइट, हम सुनी है आपके साथ, कुछ ऐसी बातें हर शेयर कर लेते हैं. एंड वेटिंग फॉर यू एज वेल ऑन 549-1294. वी आर हियर टू एंटरटेन यू इस सफर को और भी ईजी बनाने के लिए. ट्रैफिक हो रही है, लंबी कतार आपके सामने है, फंसे हुए हो आप, तो जस्ट चिल. यहाँ पर वी हैव गॉट म्यूजिक जो आपके एंटरटेनमेंट में बिल्कुल यहाँ पर आप लोगों का साथ निभाने वाला है. हमारे गाने और आपका साथ, कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही है. वेलकम इन रफ्तार वाइब्स.
1: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स,
2: RM2.

lot of our music और ये driving time यहाँ पर इस तरफ तार vibes on our radio musti. So आप जहाँ भी drive कर रही हैं, please safe जो है आप drive कर लीजिए. Be very safe, be cautious. और जी हाँ.

0: हमारे साथ बने रहिए इस रफ्तार वाइब्स के सफर में. म्यूजिक है, मस्ती है और थोड़ी सी मोटिवेशन भी हम लेकर आते हैं. मे बी आज का दिन थोड़ा सा आप लो फील कर रहे थे आज का दिन. दैट वाज नॉट सो नाइस. होता है, धीरे चलो लेकिन कभी रुकना मत. ये आज का सिंपल रूल है जो हम लेकर आए हैं. छोटी जो छोटी कोशिशें हैं वो बड़ी सफलताएं बनाती हैं, ये तो आपको पता है ना. मुश्किल समय हमेशा नहीं रहता है, लेकिन जो मजबूत लोग होते हैं वो हमेशा आगे बढ़ते हैं. तो आज की मेहनत ही कल की सफलता की नींव है. सो कीप बीइंग स्ट्रॉन्ग. ये जो आप लो फील कर रहे हो, मे बी आप ओवर स्ट्रेस्ड हो, ये होता है. यहाँ पर स्ट्रेस की वजह से कभी कभार जो मूड है वो थोड़ा सा लो हो जाता है, लेकिन कीप स्ट्रॉन्ग. यहाँ पर रेडियो मस्ती इज हियर टू बूस्ट अप योर मूड और एनर्जी लेवल भी हम बढ़ा लेते हैं. अपने सपनों पर इतना विश्वास रखिए कि मुश्किलें भी छोटे लगने लगी. राइट, थक आप हो जाते हो, ये तो हमसी बात है, हम थक जाते हैं, वी आर ह्यूमन बीइंग्स. लेकिन थोड़ा आराम करना भी ज़रूरी है. राइट, लेकिन अपने सपनों को कभी मत छोड़िए, क्योंकि अगर ये आप देखेंगे तो आगे की कामयाबी पर फोकस आप करेंगे तो आसमां से ऊंचा रहने वाली है आपकी कामयाबी. राइट, सो वी आर हियर टू बूस्ट अप योर मूड एंड वी आर हियर टू बूस्ट अप योर मोटिवेशन एज वेल. कीप गोइंग. यहाँ पर जैसे आप बढ़े ही हो ना आगे घर जाने के लिए, तो ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहें. जिंदगी चाहे जैसे भी हो, हालात जैसे भी हो, लेकिन आप आगे देखेंगे तो आप बहुत दूर जाएंगे. वी आर हियर आपके साथ टू मेक इट ईजी. यहाँ पर सफ़र को और भी हम आसान बनाते हैं, हंसमुख बनाते हैं और कोशिश हम कर लेते हैं होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट सेट करने के लिए. आपके साथ हंसनी है एंड वी आर कनेक्टिंग यू विद द बेस्ट ऑफ सॉन्ग्स इन आज का रफ्तार वाइब्स.
1: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
2: RM2

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio.

0: RM2
1: Radio Masti.
0: Feel the Masti.
2: Fashion tips powered by Halkari Fashion, House of Ready-Made Garments.
3: ग्रेट गानों के साथ यहाँ पर अभी टाइम हो चला है टू हैव सम फैशन टिप्स जो हमारी मदद कर लेते हैं ऑफ कोर्स टू लुक मोर ग्लैमरस. तो आज वार्डरोब से आपने क्या निकाला है या फिर आप देख रहे थे अपने वार्डरोब को और बाय चांस जो हमारे लेडीज़ है स्वीट गर्ल्स है वैसे नज़र पड़ गई है ऑन योर रेड वेलवेट ड्रेस. तो यहाँ पर इसके साथ जुड़े हैं सम फैशन टिप्स टू मेक इट अ बिट मोर एलिगेंट. सो आज के लिए रेड वेलवेट ड्रेस के बारे में क्या कुछ हम करने वाले हैं, स्टे कनेक्टेड. अपने आप में ऑलरेडी इट्स लग्जूरियस और देखने में और भी ग्लैमरस है वो स्पेशल कलर. तो शूज़ के साथ जो मैचिंग होगा दैट विल बी ब्लैक, न्यूड या फिर गोल्ड भी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं. डीप रेड हील्स को आप चूज़ करेंगे सो दैट विल बी वाव. और ये जो ज्वेलरी के बारे में है अगर आपको पता है तो कुछ एड ऑन हम लेकर आए हैं ज्वेलरी के साथ. वेलवेट के साथ डेलिकेट गोल्ड ज्वेलरी बहुत एलिगेंट लगती है. और इयररिंग्स के लिए भी आप चूज़ कर सकते हो छोटे इयररिंग्स. बैग जो है आप ले सकते हैं एक छोटा वाला ब्लैक कलर का आप ले सकते हो. गोल्ड या शैंपेन क्लच भी परफेक्ट रहता है विद द रेड वेलवेट ड्रेस. और मेकअप थोड़ा सा सॉफ्ट ग्लैम लुक के लिए आप बस न्यूड मेकअप को चूज़ कर सकते हैं. एंड हेयर यहाँ पर लेट्स से स्लीक बन एक सोफिस्टिकेटेड लुक के लिए या फिर थोड़ा सा सॉफ्ट कर्ल्स के बारे में अगर आप सोच रहे हो तो ये भी एक रोमांटिक वाइब दे देता है. और नेल्स दैट कैन बी लेट्स से न्यूड बर्गंडी या फिर क्लासिक रेड या फ्रेंच टिप्स ये सब अच्छा जाता है यहाँ पर लुक जो है और भी यू नो एलिगेंट. ये आपको वो एलिगेंट लुक देगा डेफिनेटली. सो जो अवॉइड आप कर सकते हो विद द रेड वेलवेट ड्रेस दैट विल बी बहुत ज़्यादा ज्वेलरी क्योंकि जो कलर है अपने आप में एक ब्राइटनेस देता है. ब्राइट कंट्रास्टिंग कलर्स को आप अवॉइड करें या फिर जो ज़्यादा एम्बलिश्ड वाले एक्सेसरीज है उनको थोड़ा सा आप अवॉइड करेंगे तो बस आपके लिए ठीक रहेगा क्योंकि वेलवेट ऑलरेडी रिच टेक्सचर देता है. तो परफेक्ट पार्टी कॉम्बो के बारे में एक यहाँ पर एक लाइक कॉम्बो हम आपको दे रहे हैं रेड वेलवेट ड्रेस प्लस ब्लैक गोल्ड हील्स और आपके छोटे वाले इयररिंग्स. बाल बिल्कुल अच्छे आपने बना लिए हैं साथ में बेरी न्यूड मेकअप.

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio.

0: और M2
1: रेडियो मस्ती
2: Vous êtes grande nouveauté chez McDonald's. Découvrez le spicy chicken fillet préparé avec du blanc de poulet 100% local. Du goût, du croustillant, une bonne dose de spicy et surtout, trois façons d'en profiter. En burger, en wrap ou en morceaux. À toi de choisir. Un nouveau goût bien de chez nous. Notre poulet, notre fierté. Local, never tasted this good.
3: McDonald's, ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
2: Le nouveau spicy chicken fillet à découvrir dès maintenant chez McDonald's.
0: RM2
1: Radio Musti.
4: जी हाँ, रेडियो मस्ती आपके साथ है एंड यस वी डू ब्रिंग यू ओनली द बेस्ट. तो आज का सिंपल रूल यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं. इट्स लाइक सिंपल रूल, लेकिन यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे तो आपके लिए बिल्कुल सही आ जाएगा. नो बेफिजूल की सोच, नो स्ट्रेस, नो ओवरथिंकिंग, बस गुड वाइब्स. वॉल्यूम अप कर लीजिए, वरीज डाउन एंड डेफिनेटली लेट गो द गुड वाइब्स बिगिन. कभी लाइफ बहुत ही बिजी हो जाती है ना, इसीलिए थोड़ा स्लो डाउन, रिलैक्स करें एंड जो मोमेंट है ना, बस उसको आप एंजॉय कर लीजिए. जो हो गया है उसको छोड़ो, जो आगे आएगा वो बाद में देखेंगे ना. अभी के लिए बस गुड वाइब्स ऑन रेडियो मस्ती. चलिए अभी के लिए वी हैव गॉट योर डेडिकेशंस. येशना यहाँ पर आई है. हेलो जी, कैसी हो? यहाँ पर आप तो हो फ्रॉम पोर्टरेस. आज का मौसम बहुत ही अच्छा था एंड रियली एंजॉयिंग द मूड ऑफ रेडियो मस्ती. अभी घर पहुंच गई है हमारी दोस्त और खाना बना रही है. ये ज़रूरी है टू एंजॉय द म्यूजिक, क्योंकि जो प्यार है

यहाँ पर द फ्लो है बिल्कुल एक कोजी माहौल बना देता है आपके किचन में. सो थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग द लव टू रेडियो मस्ती. यहाँ पर बॉन कुराज टू यू और अगला जो गाना है वो डेफिनेटली आपके लिए. एंड वी हैव एशना अब जो यहाँ पर साथ निभा रही है आज भाभी जी और नाम है उनका जिसनी.

हमेशा आप खुश रहिए, ये उनके शुभकामनाएं हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर ब्रिंगिंग योर फीलिंग्स एंड योर विशेस ऑन 54991294. यहाँ पर डबल सेलिब्रेशन जारी है. विशिंग हैप्पी बर्थडे टू ट्विंस श्रवण एंड श्रवणी. वी हैव विशेस कमिंग फ्रॉम सचिन, काजल, अहान, दादी चंद्रानी, नानी ललिता और सभी बिच्छू परिवार है जो पुथोदो विलाज से आए हैं टू कन्वे द विशेस. तो चलिए, हंसनी आई है ना आपके साथ और रेडियो मस्ती मिलकर हम विश करना चाहेंगे उन सभी लोगों को जो आज अपने स्पेशल दिन मना रही है.

0: केवल चौंद मस्ती यहाँ पर इशारा है कि कुछ ही पल में हम बढ़ने वाले हैं समाचार बुलेटिन की ओर और इसके बाद बिल्कुल हम मिलेंगे कुछ और बातें शेयर करेंगे राइट ऑन रेडियो मस्ती फॉर आवर रफ्तार वाइब्स। स्टे वेल ट्यून्ड।
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
3: Radio Musti.
1: North, South,
3: 103.5.
1: East, West,
3: 96.4.
1: Center,
3: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
5: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
0: Good evening, आप सभी को चेक द टाइम शाम के 6:06 बजे हैं।

नमस्कार, 6 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। नजर सबसे पहले डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आगालिगा में पिछले कुछ दिनों से बिजली, रोटी की आपूर्ति, इंटरनेट और मरीजों को मॉरिशस लाने जैसी समस्याएं सामने आई हैं। स्थानीय निवासियों ने इनका स्थायी समाधान करने की अपील की। हिंदू जागरूक ने रिन्यूएबल ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों के सेक्टर में मॉरिशस के साथ सहयोग जारी रखने की इच्छा जताई। इसके अध्यक्ष अशोक हिंदुजा ने प्रधानमंत्री डॉ नवीन राम गुलाम से रस्मी मुलाकात की। पर्यावरण मंत्री की उपस्थिति में गिश्ते इको इंडस्ट्रियल जोन परियोजना के दूसरे चरण का उद्घाटन। आईबीएल ग्रुप की स्कॉट लिमिटेड की पहल है, इसमें करीब 30 कंपनियां शामिल। इसका उद्देश्य औद्योगिक सेक्टर और M2 मोटरवे के किनारे वृक्षारोपण पर हरित परिवर्तन को बढ़ावा देना है। मॉरिशस में आज विश्व स्वच्छता दिवस की शुरुआत हुई। 20 सितंबर के विश्व सफाई अभियान से पहले देश भर में करीब 60 समूह सफाई मुहिम में जुटे।

0: 20 पीमा का SSO Disability Services Center भी पिछले 6 वर्षों से 5 से 45 वर्ष के युवाओं और वयस्कों के साथ इसमें भाग ले रहा है। सरसिव सागर राम गुलाम की 126वीं जयंती पर जोन 2 के करीब 300 छात्रों ने उनके जीवन संघर्ष और एक स्वतंत्र व समृद्ध मॉरिशस के सपने को रचनात्मक रूप से प्रस्तुत किया। कार्यक्रम आज सुबह कोंडिमा स्टेट कॉलेज में हुआ। प्रधानमंत्री मार्क कोनी ने कनाडा के यूरोपीय संघ का सहयोगी सदस्य बनने की महत्वाकांक्षा का स्वागत किया। इस बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। इन सुर्खियों को अब देते हैं विस्तार। पिछले कुछ दिनों से अगालिगा में समस्याएं फिर बढ़ गई हैं। बिजली की कटौती, खराब ओवन के कारण रोटी की आपूर्ति में दिक्कत, इंटरनेट कनेक्शन बाधित होना और मरीजों को मॉरिशस लाने में परेशानी जैसी समस्याएं सामने आई हैं। द्वीप समूह के अलग थलग होने के कारण रोजमर्रा की ये समस्याएं जल्द ही गंभीर रूप ले सकती हैं। स्थानीय निवासियों की मांग है कि इन समस्याओं के स्थायी समाधान खोजे जाएं ताकि उन्हें बार बार इन्हीं परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। हम आपको बता रहे थे सुर्खियों में कि भारतीय कारोबारी समूह हिंदुजा ग्रुप ने रिन्यूएबल ऊर्जा में निवेश करने और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के सेक्टर में मॉरिशस के साथ सहयोग जारी रखने की इच्छा जताई है। इसके अध्यक्ष अशोक हिंदुजा ने आज दोपहर बाद पोर्टली में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से मुलाकात की। मॉरिशस में कैंसर के इलाज में एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। प्रोफेसर एडवर्ड लामचांगलिन नेशनल कैंसर सेंटर में नैनो नाइफ टेक्निक के रूप में अपनी विशेषज्ञता लेकर आए हैं। ये जटिल और अप्रत्याशित कैंसर के इलाज के लिए एक अत्याधुनिक टेक्निक है।
1: नैनोनाइफ सिस्टम का प्रयोग कैंसरग्रस्त ट्यूमर के इलाज के लिए किया जा सकता है। ये एक नया और अनोखा इलाज है जो परंपरागत सर्जरी की जगह ले रहा है। ये एक अल्ट्रासाउंड सुई है जिसके चलते काटने की जरूरत नहीं है और इससे मरीज बेहतर तरीके से ठीक भी हो सकता है। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर आश्ले चिन्या ने कहा, लंदन के इंपीरियल कॉलेज के प्रसिद्ध रेडियोलॉजी विभाग के प्रोफेसर एडवर्ड लामशामलिन इन दिनों मॉरिशस में हैं। नैनो नाइफ के पायनियर हैं, मॉरिशन मूल के हैं और उन्होंने यूनाइटेड किंगडम में ये नई और अनोखी प्रणाली शुरू की है। इन दिनों वे लंदन के इंपीरियल कॉलेज के प्रोफेसर हैं और वे हर 3 महीने देश आने का इरादा रखते हैं ताकि नेशनल कैंसर सेंटर के कर्मचारियों को प्रशिक्षित कर सके और ये इलाज कर सके। प्रोफेसर एडवर्ड रामचंदिंग ने कहा,
2: Everything at each step needs to be organized properly, for example.
1: हर चरण पर ठीक से आयोजन करना बहुत जरूरी है और ऐसा करना चाहिए। जैसे प्री एडमिशन न सिर्फ प्रक्रियाएं बल्कि मरीज के ठीक होने के बाद की प्रक्रिया भी इससे संबंधित है। वार्ड में कर्मचारियों की ओर से देखभाल जरूरी है, भविष्य में फॉलोअप भी है। हर
0: पर्यावरण मंत्री की उपस्थिति में रिश्ते इको इंडस्ट्रियल जोन परियोजना के दूसरे चरण का औपचारिक उद्घाटन। IBL ग्रुप की कंपनी स्कॉट लिमिटेड द्वारा तैयार की गई इस परियोजना को लगभग 30 कंपनियों का समर्थन प्राप्त है। इसका उद्देश्य औद्योगिक सेक्टर और M2 मोटरवे के किनारे पेड़ लगाकर हरित परिवर्तन को बढ़ावा देना है। स्थानीय निकायों और अधिकारियों द्वारा समर्पित ये पहल एक अधिक हरित भविष्य के लिए सामूहिक प्रतिबद्धता को मजबूत करती है।
3: रिष्टिया के औद्योगिक इलाके में पिछले कुछ सालों के दौरान पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने की दिशा में कई प्रयास किए गए हैं। ये पहल सरकारी और निजी क्षेत्र के बीच साझेदारी के तहत रिष्टिया इको इंडस्ट्रियल जोन परियोजना के माध्यम से आगे बढ़ाई जा रही है। इस परियोजना के दूसरे चरण की शुरुआत

0: इसी सितंबर महीने में हो रही हैं। इस साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर IBL ग्रुप की कंपनी स्कॉट लिमिटेड में किए गए। स्कॉट लिमिटेड इस परियोजना की शुरुआत करने वाली कंपनी है। IBL ग्रुप के डेप्यूटी CEO पैट्रिस रोबेर कहते हैं, इलाके के सभी आर्थिक साझेदारों को एकत्रित किया है। हर एक अपने स्तर पर अपनी भूमिका निभाएगा ताकि पौधे रोपकर वे इस इलाके को हरा भरा कर सके। दूसरा चरण इसी कार्य को जारी रखेगा। 5-10 साल पहले ये पेड़ यहाँ नहीं थे। इससे ये पता चलता है कि इस तरह की परियोजना सफल हो सकती है। औद्योगिक इलाके में पेड़ लगाने के अलावा इस परियोजना के तहत गिश्टिया में मोटोवे के किनारे और आसपास के इलाकों में भी पेड़ लगाए जाएंगे। गिश्टिया की करीब 30 कंपनियां इस पहल में हिस्सा ले रही हैं। इसमें सरकारी अधिकारी, गैर सरकारी संगठन और समाज के विभिन्न वर्ग मिलकर काम कर रहे हैं। मरीन बायोटेक्नोलॉजी कंपनी के डिजिरे सिनापो कहते हैं, इस सड़क को यूं ही छोड़ दिया गया था, सभी पेड़ काट दिए गए थे, इसमें फिर से पौधे लगाए गए हैं। मूवमा एंटी पोल्यूशन के अध्यक्ष ग्रेगोरी निंग कहते हैं, हम ऊपर जमा पानी को नदी में जाने से रोकते हैं, इसके लिए पौधे लगाए हैं ताकि पानी मिट्टी में समा सके और वो होल्स में जा सके। पर्यावरण मंत्री राजेश भगवान के अनुसार स्वेच्छा से पर्यावरण की जिम्मेदारी निभाने वाली इस पहल को पूरे देश में दोहराया जाना चाहिए। मंत्री राजेश भगवान कहते हैं, इसमें भाग लेने वाले हर उद्योग इस इलाके के लिए कटिबद्धता ले रहा है। मोगी फैसिलिटीज 1.2 किलोमीटर के दायरे तक सफाई की जिम्मेदारी ले रही है। सरकार इसी संस्कृति को बढ़ावा देना चाहती है।
1: Un véritable engagement continu. Et c'est exactement la culture que le gouvernement veut promouvoir.
0: इको इंडस्ट्रियल जोन परियोजना की शुरुआत से अब तक रिश्तेया और आसपास के इलाकों में 600 से ज्यादा पेड़ लगाए जा चुके हैं।
2: मॉरिशस में आज विश्व स्वच्छता दिवस की शुरुआत हो गई है। आगामी रविवार 20 सितंबर को होने वाले विश्व सफाई अभियान से पहले देश के विभिन्न इलाकों में लगभग 60 समूह इस मुहिम में जुट गए हैं। पॉइंट ऑफ पीमो में ट्रियोले का SSO डिसेबिलिटी सर्विसेज सेंटर 5 से 45 वर्ष की आयु के युवाओं और वयस्कों के साथ मिलकर पिछले लगभग 6 वर्षों से इस पहल में भाग ले रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगनाथ से डेटा इंटरसेप्शन और निगरानी के लिए कथित अवैध उपकरणों के मामले में पूछताछ की गई। पुलिस के अनुसार उन्होंने सवालों के जवाब देने से इनकार किया। वे आज सुबह करीब 10:30 बजे से लाइन बैरक्स पहुंचे और करीब 2 घंटे बाद घर लौटे। उनके अनुसार उनके अनुरोध पर आगे की पूछताछ बाद की तारीख तक स्थगित कर दी गई है। नेशनल क्राइम एजेंसी की स्थापना के सिलसिले में राष्ट्रीय सभा में 9 बिल पेश किए जाएंगे। इस शुक्रवार को मंत्रिपरिषद में पहले इन पर विस्तार से विचार किया जाएगा। आज रात इनमें से एक विधेयक पर विशेष नजर डाली जा रही है, फाइनेंशियल क्राइम्स बिल, जो वित्तीय अपराधों से जुड़े कई अपराधों को एक ही कानून के तहत एकजुट करेगा। गोपियो इंटरनेशनल के एक डेलीगेशन ने कल ट्रेजरी बिल्डिंग में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से मुलाकात की। चर्चा का मुख्य विषय मॉरिशस के उच्च दर्जे को फिर से पुष्ट करना था, जिसके तहत इसे भारतीय मूल के लोगों की वैश्विक राजधानी कहा जाता है। इसके अलावा इस संगठन के युवाओं की एक बैठक भी हर 2 साल में मॉरिशस में आयोजित किए जाने का प्रस्ताव रखा गया। केवल नगर से स्टेट हाउस रिजवी तक शिव सागर राम गुलाम का सफर आज भी नई पीढ़ी को प्रेरित करता है। उनकी 126वीं जयंती के मौके पर जोन 2 के करीब 300 छात्रों ने उनके जीवन, उनके संघर्ष और एक स्वतंत्र, एकजुट और समृद्ध मॉरिशस के उनके सपने को फिर से जीवंत किया। आज सुबह कोंदेमास स्टेट कॉलेज में युवाओं का देश प्रेम और रचनात्मकता देखने को मिली। अशिता रघु।
0: सिर्फ एक राजनेता के तौर पर नहीं बल्कि इतिहास में अपनी पहचान बनाने वाले उस इंसान को याद किया गया जो इस 7वें शशि सागर राम गुलाम मेमोरियल लेक्चर का केंद्र रहा। ये कार्यक्रम महात्मा गांधी संस्थान में आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम और कई अन्य महानुभाव मौजूद थे। कई किस्सों और यादों के जरिए मॉरिशस विश्वविद्यालय के चांसलर डॉक्टर निरंजन गोपी ने

0: सचिव सागर राम गुलाम की एक ऐसी तस्वीर पेश की जिसमें वे आम लोगों के करीब नजर आते हैं। उनकी सादगी, दूसरों के प्रति उनकी भलाई की भावना और लोगों का ख्याल रखने की आदत पर खास तौर पर रोशनी डाली गई।
1: Grandeur d'âme, bien entendu, nurtured by qualities that are sourced in the heart and the spirit.
0: महानता बेशक इंसान के उन गुणों से जुड़ी होती है जिनकी जड़ उसके दिल और सोच में होती है। एक व्यक्ति ने अपनी माँ से जुड़ा एक किस्सा सुनाया जो बेलिया के उसी स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन केवल की तरफ से फेंका गया एक छोटा सा पत्थर गलती से उन्हें लग गया। केवल ने सिर्फ उस लड़की से माफी ही नहीं मांगी बल्कि नुकसान की भरपाई के तौर पर उसे एक छोटा सा तोहफा भी दिया। मेरे एक दोस्त ने सचिव सागर राम गुलाम से उस समय इलाज कराया था जब उनकी उम्र करीब 34 साल की थी। ये बात 1992 या 1993 की है। एक दिन मेरे दोस्त के पिता अपने ट्रक में चावल की बोरियां लेकर जा रहे थे। ये चावल फोंजीसाक में बेचने के लिए थे जहां वे रहते थे। जब वे देफोज गली से गुजर रहे थे तभी अचानक बारिश शुरू हुई। उन्होंने सचिव सागर राम गुलाम के घर के सामने ट्रक रोका और दरवाजा खटखटाया। सचिव सागर राम गुलाम ने दरवाजा खोला और उन्हें तुरंत पहचान लिया। उन्होंने चावल की बोरियां अपने गैरेज में उतारने का सुझाव दिया ताकि बारिश से चावल खराब न हो। बारिश रुकने के बाद वे दोबारा अपना सफर शुरू कर सके थे। ये यादें राष्ट्रपिता सचिव सागर राम गुलाम के व्यक्तित्व का एक अलग पहलू सामने लाती हैं। पेशे से डॉक्टर सचिव सागर राम गुलाम का शिक्षा और सामाजिक तरक्की से भी गहरा जुड़ाव था। गवाहियों के अनुसार उनका ये मानवीय पक्ष उनके राजनीतिक जीवन के साथ हमेशा जुड़ा रहा।
1: As a doctor, his vocation was to relieve human suffering and save lives.
0: एक डॉक्टर के तौर पर उनका उद्देश्य इंसान की तकलीफ कम करना और लोगों की जान बचाना था। राजनीति और इंसानी मामलों में उनकी गहरी दिलचस्पी उन्हें अपने देशवासियों की शिकायतें और परेशानियां सुनने के लिए प्रेरित करती थी। वे उस सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था की बुराइयों के खिलाफ लड़ना चाहते थे जिसकी वजह से कई लोग तकलीफों और मुश्किलों का सामना कर रहे थे। उनकी महानता इस बात से भी थी कि वे अपना उद्देश्य पूरा करने में कामयाब रहे। अपने देश को आज़ादी की ओर ले जाना, वो भी समाज में मौजूद बंटवारे और विरोध का सामना करते हुए। इस मौके पर संगीत के जरिए भी सचिव सागर राम गुलाम को श्रद्धांजलि दी गई। उनके सम्मान में एक गीत पेश किया गया। ये सम्मान सचिव सागर राम गुलाम की 126वीं जयंती से कुछ दिन पहले आयोजित किया गया। उनका जन्म 18 सितंबर को हुआ था। ये मौका नई पीढ़ी तक उनके राजनीतिक सफर के अलावा उन मूल्यों और विचारों को पहचानने का भी है जिन्होंने उनकी जिंदगी और मॉरिशस के इतिहास को आकार दिया।
2: तो ये रिपोर्ट आप सुन रहे थे सचिव सागर राम गुलाम की जयंती के उपलक्ष्य में, उनके सम्मान में, उनकी यादों को उजागर करने के लिए और उनके मूल्यों तथा सिद्धांतों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए एक मेमोरियल लेक्चर का आयोजन किया गया था। गोपी इंटरनेशनल के एक डेलीगेशन ने कल प्रधानमंत्री से मुलाकात की। चर्चा का मुख्य विषय मॉरिशस के उस दर्जे को फिर से पुष्ट करना था जिसके तहत इसे भारतीय मूल के लोगों की वैश्विक राजधानी कहा जाता है। इसके अलावा इस संगठन के युवाओं की एक बैठक भी हर दो साल में मॉरिशस में आयोजित किए जाने का प्रस्ताव रखा गया।
0: ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन यानी गोपियो इंटरनेशनल दुनिया भर में करीब 3,50,00,000 सदस्यों को एकजुट करता है। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम के साथ हुई इस मुलाकात के दौरान प्रतिनिधि मंडल ने भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों को एकजुट करने में मॉरिशस की खास भूमिका पर चर्चा की। गोपियो इंटरनेशनल के महासचिव रविंदरन अर्जुनन कहते हैं, 1996 में हमने मॉरिशस को PIO यानी पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन की राजधानी घोषित किया था। हम इसे दोहरा रहे हैं और प्रधानमंत्री के साथ इसके लिए एक स्मारक के निर्माण के बारे में बात की। हमने हर दो साल पर मॉरिशस में डायस्पोरा के नौजवानों को एकत्र करने के बारे में भी बात की। गोपियो 30 साल से ज्यादा समय से कायम है। अब अगली पीढ़ी को तैयार करने का समय आ गया है। पिछले सप्ताहांत मॉरिशस में इस संगठन का 16वां सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में भारतीय संस्कृति और व्यापार को बढ़ावा देने के साथ साथ कई मुद्दों पर चर्चा की गई।
2: मॉरिशस में फ्रांस के नए राजदूत अलेक्सिस लॉये और थाईलैंड के नए राजदूत एकापोल पुलपिपात ने स्टेट हाउस रेजुई में राष्ट्रपति धर्मगोकुल को अपने परिचय पत्र सौंपे। फ्रांसीसी राजनयिक विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय मुद्दों पर सहयोग और आदान प्रदान को

0: मजबूत करना चाहते हैं।
1: फ्रांस के नए राजदूत ने औपचारिक रूप से मॉरिशस में अपना पद संभालना शुरू किया। कार्यसूची में कई क्षेत्रों में सहयोग की बात शामिल, जैसे शिक्षा, जल, ब्लू इकोनॉमी, समुद्री सुरक्षा, जलवायु। इसके अलावा द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर भी ध्यान केंद्रित। अन्य मुद्दा इलाकाई सहयोग। 2027 के लिए मॉरिशस रेनियन जॉइंट कमीशन निर्धारित। फ्रांस के राजदूत अलेक्सिस लॉये ने कहा,
2: notre relation s'inscrit dans un contexte régional qui est le sud-ouest de l'océan Indien.
1: हमारा संबंध इलाकाई परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत है। हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में महासागर में समान चुनौतियों एवं खतरों का सामना करते हैं। हमें अपने संसाधनों की रक्षा करनी है, ब्लू इकोनॉमी को लेकर सभी प्रकार के व्यापार से संघर्ष करना है। ये सब एक साथ मिलकर कर सकते हैं। हिंद महासागर आयोग के जरिए ये सब किया जा रहा है। फ्रांस भी इसमें भाग लेगा। पिछले अप्रैल महीने से अध्यक्षता संभाल रहा है। फ्रांसीसी प्राथमिकताओं पर कार्य करेंगे, जैसे कि समुद्री सुरक्षा, प्राकृतिक खतरों का संचालन और आत्मनिर्भरता तथा खाद्य सुरक्षा। इसके साथ ही वार्ता की बदौलत पिछले साल से राष्ट्रपति दौरे से तय कई पहल से संबंधित जायजा भी लिया गया।
0: मॉरिशस विश्वविद्यालय में शोधकर्ता त्वचा संबंधी घावों के लिए एक नया बैंडेज तैयार कर रहे हैं। इसकी खूबी ये है कि इसे गन्ने की खोई यानी बगस से बनाया गया है और इसमें एक एंटीबैक्टीरियल घटक शामिल है। ये शोध कई स्थानीय संगठनों को एक साथ लाता है और अंततः इस बीमारी से प्रभावित देशों में इसके व्यावसायिक उत्पादन का रास्ता खोल सकता है। क्या होगा यदि मॉरिशस के तट पर मौजूद जहाज़ों के मलबे समुद्री जीवन के लिए असली आश्रय बन जाएं? मॉरिशस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा 5 जहाज़ के मलबों पर किए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि आर्टिफिशियल चट्टानों की भूमिका निभा सकती हैं वे, और जो मछलियों को छिपने की जगह और मूंगों को विकसित होने के लिए सतह प्रदान करती हैं। बढ़ते हैं विदेश की खबरों की ओर। कनाडा के प्रधानमंत्री मैकोनी ने यूरोपीय संसद में अपने भाषण में कहा कि यूरोप और कनाडा एक साथ मिलकर अधिक मजबूत हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो यूरोपीय संघ की इस महत्वाकांक्षा का स्वागत करते हैं, जिसके तहत कनाडा को यूरोपीय संघ का सहयोगी सदस्य बनाया जाना है। इसी के साथ अन्य खबरें विस्तार से इस रिपोर्ट में विधि मासी बोरन के साथ।
3: गाजा पट्टी में रात भर में एक युद्ध क्षतिग्रस्त इमारत के ढह जाने से 8 बच्चों सहित कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग लापता हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि गाजा शहर के तल अल हवा इलाके की 6 मंजिला इमारत एक साल पहले हुए इजरायली हमले के बाद से एक तरफ खतरनाक रूप से झुक गई थी। उन्होंने बताया कि विस्थापित परिवार मजबूरी और बेबसी के कारण इसके अंदर रह रहे थे। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों और एक मिस्र की टीम ने बचे हुए लोगों की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि उपकरणों की कमी के कारण राहत और बचाव कार्य धीमी गति से चल रहा है। रूस ने 16-17 सितंबर की रात को कीव पर ड्रोन और मिसाइल से हमला किया, जिससे यूक्रेन की राजधानी में एक शैक्षणिक संस्थान को नुकसान पहुंचा और कम से कम 18 लोग घायल हो गए। ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमरीकी सरकार ने एक व्यापक कानून का समर्थन किया है, जिसके तहत रूसी तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर 100% तक शुल्क लगाया जा सकेगा। यूरोपीय आयोग की अध्यक्षा उर्सुला वन डर लेयन ने बुधवार को कनाडा को यूरोपीय संघ का पहला सहयोगी सदस्य बनाने का प्रस्ताव रखा, जो अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के कारण ओटावा को यूरोप के करीब ला रहा है। उत्तरी कैरोलिना के शॉलट में बोलते हुए ट्रंप ने सुझाव दिया कि कनाडा को यूरोपीय संघ का सहयोगी सदस्य बनने की अनुमति देना एक शत्रुतापूर्ण कृत्य हो सकता है और इस प्रस्तावित कदम के जवाब में यूरोपीय संघ पर और अधिक टैरिफ लगाने की धमकी दी।
0: और अब चले जानते हैं कि मौसम का हाल कैसा रहेगा। मस्करीन्स के दक्षिण दक्षिण पूर्व में एक एंटीसाइक्लोन पाया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे इलाके पर तेज़ हवाओं का असर है। पूर्वानुमान है कि आज रात को और कल सुबह के दौरान देश के पूर्व और सेंट्रल प्लेटू पर रह रहकर बरसात होगी। अन्य

कहों पर धूप खिली रहेगी। दिन के दौरान देश भर में मौसम सुहाना रहेगा। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। प्रवाल रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा, 3 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। विशेषकर दक्षिण और पूर्व में मौसम समुद्र ज्यादा खराब रहेगा, समुद्र में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 14 से 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 21 से 24 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम साहली इलाकों पर 18 से 21 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। सूर्यास्त 6:04 पर, सूर्योदय 6:03 पर होगा।

0: तो देश विदेश और मौसम संबंधी जानकारियों के साथ हम पहुंच गए हैं इस बुलेटिन के अंत में। तकनीकी सहायक हमारे साथ रहे फैजन, उनको हम धन्यवाद देते हैं। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। La Marie Okuleme, La Marie Okuleme, 69 years old की, 69 साल की माया देवी गर्भरन की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें माया के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी कल दिन के 11 बजे, कल शुक्रवार को दिन के 11 बजे एलियनसन बुबासन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगाहा की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। ब्रांच रोड रिश्मो फ्लाक में 56 साल के 56 years old के नंदेव चिनातो की मृत्यु हो गई है। नंदेव चिनातो की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें पोलो के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी कल सुबह के 10 बजे उनकी पत्नी मिकाएला चिनातो के मकान रिश्मो फ्लाक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावेंचियो की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। मोसलमो फेव्यू मोदालबियामी 83 साल की 83 years old की कर्मा लुमदेवी अरुमुगम वे पहले हेड टीचर की हैसियत से काम करती थी। उनके अर्थी कल दिन के ढाई बजे उनकी बेटी बीना कुंजल के मकान मौदालबिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्रेमानियों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 2:30 PM। आले जाकलिस कालिये में 67 साल की 67 years old के कुष्मावती घुरा की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम रामदयाल, लोग उन्हें कुमारी के नाम से अधिक जानती थी। उनके अर्थी आज दिन के कल शुक्रवार को सुबह के 9:30 बजे उनके पति सुखदेव घुरा के मकान लिस्कालिये से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रोजबेल की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 9:30 AM। अवेन्यू तेलफेयर बेल रोज कैट्रोबोन में हेम नारायण सोबुरा 84 साल के 84 years old के हेम नारायण सोबुरा की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल दिन के 12 बजे एलियनसन बोबासन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट नून। रोटन मवान बैतू काटोबोन में 57 साल के 57 years old के प्रवींद्रनाथ रघुनंदन की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें रवीन के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी कल सुबह के 9:30 बजे उनके भाई महेश रघुनंदन के मकान काट्रोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 9:30 AM। मामजेलो कोयराची में 61 साल के 61 years old के रितानंद रामादीन की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें विजय के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी कल दिन के 10 बजे उन्हीं के मकान कोयराची से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्यामिनिस्त्रियोले की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: RM2 Radio Masti
2: Raftar Vibes Filmy Rides
1: RM2

6:31 PM वेलकम ऑन रेडियो मस्ती वंस अगेन। समाचारों के बाद फिर से हमारी मुलाकात इन रफ्तार वाइब्स। यहाँ पर है आपके साथ हंसनी और ये जो म्यूजिकल सफर है हम बस तय कर रही हैं आपके साथ। विशिंग यू ऑल अ ग्रेट टाइम ऑन रेडियो मस्ती, विशिंग यू ऑल अ गुड इवनिंग, अ ग्रेट

0: सफर जो यहाँ पर जारी हो गया है और यकीन मानिए आप लोगों के आने से कुछ और स्पेशल बन ही जाता है। तो बताओ जरा कि आज का दिन कैसा रहा? Really hope you had a great one. अगर ठीक नहीं है, मूड थोड़ा सा डाउन है, कोई बात नहीं, अभी ठीक बनाएंगे। We'll be having music up till 7 p.m. for Aftar Vibes. इसके बाद आएगी आज दिव्या लेकर आजकल इवनिंग लाउंज with a wonderful selection of music, of course, entertainment जहाँ पर उनको बस उनके साथ हम रहने वाले हैं and she will join us next after 7 p.m. तो यहाँ पर drive time है, please be safe on the road और अभी भी यहाँ पर सफर जारी है, still reaching back home, so wish you a safe drive back. और यहाँ पर म्यूजिकल संगम तो होता रहता है, मुस्कुराते रहिए क्योंकि आपकी एक मुस्कान किसी का पूरा दिन बेहतर बना सकती है ना। सो वी आर हियर टू मेक यू हैप्पी। जिंदगी तो छोटी है, इसीलिए हर पल को खुशी से जिए और छोटी छोटी जो खुशियाँ हैं ना, बस उनको जोड़कर रखिए अपनों के साथ, जो स्पेशल टाइम है वो आप बिताते रहिए एंड वी आर हियर उन सभी लम्हों को कैद करने के लिए। जस्ट बी विद अस, हम तो है ही आपके साथ सफर को आगे बढ़ाने के लिए, टू मेक इट अ बिट मोर इजी। और जो हमारे लेडीज, हमारे दोस्त घर पहुंच गए हैं, इट्स लाइक एन ओफ, फाइनली घर हम पहुंच गए हैं। और घर पहुंचते ही इतना सारा काम बस शुरू हो जाएंगे कुछ ही देर बाद, ये तो हमें पता है। सो विशिंग यू ऑल बॉन कुराश, और जो ऑलरेडी किचन में होकर साथ निभा रहे हैं, टू ऐड सम मोर टेस्ट आपके खानों में, आपके डिशेस में, आपके डिनर में, तो हमारे गाने चलते रहेंगे। बॉन कुराश टू एवरीवन जो यहाँ पर काम करते हुए साथ निभा रहे हैं ऑल ऑन रेडियो मस्ती। सभी का वार्म वेलकम।
1: Raftar Vibes, Filmy Rides,
2: RM2.

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio.

0: किसी से प्यार हो जाए तो यहाँ पर ये जो नाता बन जाता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाता है. प्यार का बंधन है, इट्स लाइक लव सीजन इन द एयर. व्हाट द रेट ऑफ मस्ती. अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो विल बी हैविंग इवनिंग लाउंज का सफर जहाँ पर कुछ और रोमांटिक सॉन्ग्स आप एंजॉय कर पाएंगे विद अर्जित दिव्या. अभी तो देर के बाद वो यहाँ पर आएगी. शी विल बी लाइव ऑन रेट ऑफ मस्ती. सो अभी के लिए हम आपके कुछ मैसेजेस को आगे बढ़ाते हैं. यहाँ पर शिल्पा का साथ फ्रॉम क्यू पे. इट्स फ्रीजिंग, बॉडी ठंड महसूस हो रही है हमसनी, और घर पर गरम गरम खाना बन रहा है, और ऊपर से द वंडरफुल मिक्स ऑफ म्यूजिक ऑन रेडियो मस्ती. और क्या चाहिए. जी हाँ, बिल्कुल आपने सही पहचाना है. सो शिल्पा का वार्म वेलकम. और गाना आपके लिए, आपके पति शिवम के लिए जो आपकी मदद कर रहे हैं, दैट्स नाइस. यहाँ पर इस स्पेशल मोमेंट को आप जी लीजिए हमारे म्यूजिक के साथ एंड मेक इट अ बिट मोर रोमांटिक. यहाँ पर आप दोनों के लिए हम लेकर आए हैं ऑल द गुड विशेस. यहाँ पर नेक्स्ट है निष्ठा. हाय, हेलो एंड वेलकम इन द शो. आप खेवगा की रहने वाली हो और आज आपकी मामा, और मामा का नाम है सुनीता. विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे मम्मी जी. विशेस कमिंग फ्रॉम ऑल बागोबिन परिवार. और साथ में है हृदय, और साथ में है बेटा निवेश जो इंग्लैंड से है और प्यार पहुंचा रही है टू स्वीट मॉम. एंड उनका ये कहना है कि आई विल बी बैक वेरी सून. ये तो हमें पता है कि आज इस स्पेशल डेट पर आप हमको मिस कर रही हैं. ये तो है, मम्मी और बेटा का जो नाता होता है बहुत ही प्रेशियस होता है जी. इसीलिए तो आप आएंगे वापस जल्द. तो मम्मी जी, लॉट्स ऑफ गुड विशेस है आपके लिए फ्रॉम ऑल योर किड्स, फ्रॉम ऑल योर परिवार, एंड फ्रॉम ऑल योर रिश्तेदार. जी यहाँ पर आपके लिए लेकर आई है ओनली द स्वीटेस्ट विशेस. बधाइयों हैं आपके लिए. यहाँ पे करुणा जी का साथ है. हेलो जी, नमस्ते टू यू. विश ऑल द लिसनर्स अ वेरी गुड इवनिंग. प्लीज़ मेरे लिए एक गाना हो जाए, स्टिल वर्किंग वेरी हार्ड. और साथ में है ऑल द सिक्योरिटी गार्ड्स जो आपके साथ है, आपके कोलीग्स. एंड अभी मिलकर एक डिनर को आप शेयर कर रही हो, दैट्स नाइस. तो बन पीछे आप सभी को एन्जॉय योर मील. और जो खाना पीना हो रहा है तो इसी में हम रेडियो मस्ती को बिल्कुल शामिल करवा रही है टू मेक इट अ बिट मोर स्पेशल. गानों के साथ हंसनी है आपके साथ अप टिल 7 पीएम.
1: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स,
2: आरएम2,

0: आपको क्या लगा हम भूल गए?
1: हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा, एक दूसरे से कभी कभी रहते हैं हम हवा हवा।

चलिए दोस्तों, इसी के साथ यहाँ पर गुड बाय कहने का टाइम आ गया है. दैट्स द एंड ऑफ रफ्तार वाइब्स. लेकिन दैट विल बी अ न्यू बिगिनिंग एज वेल फॉर इवनिंग लाउंज द नेक्स्ट शो, जहाँ पर अजय दिव्या लेकर आ रही है. सो बी विद हर. एंटरटेनमेंट यहाँ पर भरपूर होने वाला है अप टिल 9 पीएम उनके साथ. जबकि हम तो मिलने वाले हैं जी, बहुत जल्द मिलेंगे. तब तक के लिए स्टे सेफ. आई विश यू ऑल

सवालों का जवाब दो और कैसे दे भाई, क्योंकि प्यार सवाल जवाब के साथ नहीं आता है। प्यार बस एक फ्लो है जिसमें सबको बहते चले जाना है। शाम के 7:07 हो चुकी है और आज 17 सितंबर है और इट्स अ वंडरफुल थर्सडे इवनिंग जहां पर दिव्या का साथ है। एक बार फिर से हमारी और आपकी मुलाकात जहां पर हमें मौका मिल रहा है टू कीप यू वेल एंटरटेन्ड टिल 9 PM। खूबसूरत गीतों का सफर जारी है ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती। व्हाट्स हैपनिंग ऑन योर साइड जरूर जाना चाहते हैं। एंड ऑफ कोर्स जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी आखिर आ ही गई है। हम बात कर रहे हैं अबाउट द स्लो इवनिंग्स। सुबह का वक्त होता है, रशेश वाला टाइम होता है, कभी कभी खुद के

0: भी टाइम नहीं मिलता है, इसीलिए हम कहते हैं कि सुबह जब भी आप उठे ना तो 5 मिनट खुद के लिए निकाल कर रखें, एंड इवनिंग्स को जब आते हैं तो आपके पास टाइम ही टाइम होता है. और कभी क्या होता है, हमको लगता है कि अभी रात लंबी है तो वी टेंड टू कीप द टाइम फॉर ग्रांटेड, एंड हम अपनों को भी फॉर ग्रांटेड के तौर पे ले ही लेते हैं. बट हमेशा हम आपसे कहते हैं ना कि आपके फैमिली मेम्बर्स दुनिया के सबसे पहले इंसान हैं जो आपका बेसब्री से इंतज़ार करते हैं आपके घर लौटने की. एंड ट्रस्ट मी, जब तक आप घर नहीं पहुँचते हैं तब तक फ़ोन कॉल्स या फिर साइलेंट प्रेयर्स बस अपने दिल में वो लेकर करते ही रहते हैं कि बस आप सुरक्षित घर पहुंचे. एंड चलिए, हम भी आपको हमेशा अपने प्रेयर्स में रखते हैं कि आप हमेशा अपनी मंजिल की ओर बढ़े तो आप सेफली अपनी मंजिल की ओर बढ़े. एंड चलिए, यहाँ पर हमारा साथ है टू ऑल दोज वर्किंग राइट नाउ, आपको विश करेंगे बो कुहाज एंड बहुत बहुत सारा प्यार टू ऑल दोज जो काम कर रहे हैं. मेहनत से काम करते रहिए और आगे का फल आपको ज़रूर मिलेगा. एंड टू ऑल दोज जो अभी किचन में है, खाना स्टिल बन रहा है, आपको बो कुहाज. एंड टू ऑल दोज हैविंग द मील राइट नाउ, आपको बन अपेची शुभाहार. तो चलिए ही, ऐसे ही दिल का हाल सुनने सुनाने के लिए हम यहाँ पर हाजिर हो चुके हैं और आपके मैसेजेस का भी इंतजार करेंगे ऑन 5499-1294.
1: Evening Lounge.
2: RM2.
1: Radio Musti.

बिल्कुल, किसी के चाहत में दिल अगर दीवाना ना हो तो इसका मतलब ये है कि आपको प्यार ही नहीं है। इसलिए दिल थोड़ा सा दीवाना हो जाता है, थोड़ा सा बेकरार भी हो जाता है, और आपके बेचैन दिलों को थोड़ा सा करार देने के लिए ही हम यहाँ पर कुछ कूल रोमांटिक म्यूजिक लेकर आए हैं टू मेक यू फील गुड। एंड इट्स अ वंडरफुल इवनिंग जहाँ पर साथ आपके साथ स्पेंड करने को मिल रहा है। तो ऑफकोर्स वी विल डेफिनेटली वॉन्ट टू नो व्हाट्स हैपनिंग ऑन योर साइड। एंड चलिए, यहाँ पर किसी का मैसेज आया है। आप कहते हैं कि नेक्स्ट गाना गुज आउट स्पेशली फॉर माई लव विनोद, और उनको बहुत ही प्यार से आप याद कर रही हैं। एंड नेक्स्ट गाना गुज आउट स्पेशली फॉर यू शालिनी, थैंक यू सो मच। एंड साथ में हमारी प्यारी सी राधा जी ऑल द वे फ्रॉम कनाडा, आप सात समंदर पार होने के बावजूद भी यू नेवर मिस अ मैसेज एंड इट मीन्स अ लॉट, इट मीन्स द वर्ल्ड टू अस। थैंक यू सो मच राधा जी। एंड एज यूजुअल आप प्लेलिस्ट को बहुत ही पसंद कर रही हैं। इफ पॉसिबल प्लीज प्ले द सॉन्ग जाने दिल में कब से है तू फ्रॉम द फिल्म मुझसे दोस्ती करोगे फॉर योर फैमिली इन कनाडा मॉरिशस एंड ऑल RM2 लिसनर्स। चल अगर पॉसिबल हुआ तो हम ये गाना चलाने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड फिलहाल के लिए कुछ और खूबसूरत गीतों के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे। एंड टू ऑल दोज जो इस वक्त हमें सुन रही है, साथ देने के लिए आपको दिल से शुक्रिया। एंड प्यार में क्या है ना कि हम बहुत चीज़ों को एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं। एंड डोंट फर्गेट, अगर आप अपनी साइड से कुछ एक्सपेक्ट कर रही है सो डोंट फर्गेट उस साइड से भी मे बी एक्सपेक्टेशन और हायर। तो इन एक्सपेक्टेशंस को मीट करने के लिए ऑल यू हैव टू डू इज प्यार में थोड़ा सा एफर्ट। और जब हम एफर्ट के बारे में बात करते हैं तो प्यार में द की वर्ड इज गिविंग टाइम एंड अटेंशन। और जब आप अपनों को सुनते हैं एंड यू लर्न अ शोल्डर टू लीन ऑन, मे बी देर आर सम लो डेज जहाँ पर वो अच्छा फील नहीं करते हैं एंड आप उनके साथ होते हैं वहाँ पर, इट मीन्स द वर्ल्ड टू

0: them or trust me, जब किसी को सच्चे दिल से प्यार होता है ना, तो उनको ना ही हीरे चाहिए, डायमंड चाहिए या फिर कुछ एक्सपेंसिव चाहिए, बस उनको आपका साथ चाहिए. एंड दिस इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग दैट यू कैन गिव देम. और इन एक्सपेंसिव चीज़ों में आपका टाइम आता है और आपका साथ भी आता है. एंड लेंडिंग योर ईयर्स टू लिसन टू देम व्हेन दे आर नॉट गुड, ये भी बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है. सो ऑलवेज ऑलवेज ट्राई टू बी देयर फॉर देम. और जब हम देम के बारे में बात कर रहे हैं, तो इट कैन बी एनीवन, योर बेस्ट फ्रेंड, योर फ्रेंड, आपके माता पिता या फिर आपके दोस्त. ऑलवेज ट्राई टू बी देयर फॉर दोज जो हमेशा आपके अप्स एंड डाउन्स में आपके साथ रहते हैं. चलिए 7:30 हो चुके हैं, दिव्या का साथ इन योर इवनिंग लाउंज टिल 9 PM. ऐसे ही हमारा साथ देते रहे एंड कीप सेंडिंग योर मैसेजेस ऑन 5499-1294.
1: Evening Lounge.
2: RM2.
1: Radio Musti.

0: सबसे ज्यादा किसी से प्यार मत करना कहते हैं ना कि जिंदगी में जब भी आपको प्यार होता है तो लोगों को आपको जिंदगी का एक हिस्सा बनाना है ना कि जिंदगी ही बनाना है। इसमें एक बहुत ही बड़ा लॉजिक छुपा हुआ है क्योंकि जब आप किसी को अपनी पूरी जिंदगी मान लेते हैं ना तो ऐसे में वो आते हैं या तो आपकी जिंदगी को आबाद करने के लिए या फिर जिंदगी में सीख बन के आते हैं। इसलिए आपकी जिंदगी ज्यादा सबसे टर्वी ना हो, उलट पुलट ना हो, इसलिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको जिंदगी का एक बस हिस्सा बना के रखना। 741 ऑलरेडी आप तो हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं, आप तो हमारी जिंदगी है ही। थैंक यू सो मच कि यू आर ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ आवर लाइफ और रोज रोज आप जिंदगी को इतनी बेहतरीन बनाते हैं कि क्या कहीं। चलिए यहाँ पर वी हैव बिंदिया कालू कनेक्टेड विद अस फ्रॉम मिलजान गुडलैंड्स। नेक्स्ट सॉन्ग गोज आउट फॉर जान सोना, आपके दो बेटे हैं शानी एंड स्वयं, सभी कालू फैमिली के लिए एंड साथ में गिरीश अरलोल के लिए। नेक्स्ट गाना आपका ऑडियो में थोड़ा सा टेक्निकल इशू है एंड आई थिंक मे बी आपने गाने की रिक्वेस्ट की, अगर पॉसिबल हुआ तो हम चलाने की कोशिश करेंगे। एंड चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे कुछ और खूबसूरत गीतों की ओर एंड इट्स इन द ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल वॉइस ऑफ श्रेया घोषाल और साथ में दे रही है जो भी नौटियाल अपनी आवाज़ से आवाज़ मिलाकर दे ऑल सेट टू क्रिएट मैजिक।
1: इवनिंग लाउंज, इवनिंग लाउंज,
2: RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: Evening Lounge.
1: RM2.
0: Radio Musti.
2: शशि जी कनेक्टेड है रेडियो मस्ती के साथ एंड थैंक यू सो मच. हाँ, दवाई तो बिल्कुल ले रहे हैं एंड वेट ही कर रहे हैं कि आवाज ठीक कब होगा. तो चलिए, यहाँ पर आपका साथ है तो आपके मैसेज पढ़ के हमें भी लग रहा है कि ये मूवी तो हमें भी देखनी चाहिए. एक्चुअली शशि जी कहते हैं कि जस्ट रिटर्निंग फ्रॉम MCA और आपने मूवी देखी है हनुमान अंश. यू आर सेइंग इट्स अ वेरी नाइस मूवी, टू इंटेंस, आंखों से जय की धारा रुकी नहीं रही थी. चलिए कोई बात नहीं, हम समझते हैं कि जब इमोशन पकड़ लेता है और साथ में इट्स अ मिक्सचर ऑफ स्पिरिचुअलिटी एज वेल एंड जो ऊपर वाले के साथ बॉन्डिंग होता है वो एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सकता. सो आप कहते हैं हैट्स ऑफ टू द मेन एक्टर एंड द डायरेक्टर एज वेल. चलिए, आपने ये मैसेज भेजा है तो आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू लाइक वॉच दिस मूवी और हम ज़रूर बताएंगे कि हमें मूवी कैसे लगी. चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद. हर हर महादेव. आपको भी थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए एंड दिस वन गुज आउट स्पेशली फॉर यू.

0: अनजाने दिल में कब से है तू, जब से मैं हूँ तब से है तू, शायद इसी वजह से कहते हैं कि जोड़ियाँ ऊपर से बन के आती हैं. एंड अगर आपको लगता है कि यू स्टिल हैवंट फाइंड योर मिस्टर राइट योर मिस राइट, तो थोड़ा और इंतज़ार सही. और कहते हैं ना कि इंतज़ार का दूसरा नाम प्यार है, और प्यार का दूसरा नाम इंतज़ार ही है. बस आप वेट करते रहिए एंड लव विल डेफिनेटली फाइंड अ वे टू फाइंड यू. और अगर आपकी नीयत ठीक है और आपका दिल सबसे प्यारा है, तो ट्रस्ट मी आपको एक ऐसा इंसान मिलने वाला है ज़िंदगी में विच इज़ गोइंग टू कॉम्पेंसेट ऑल the loss that you have been going through. और उस इंसान से मुलाकात करने के बाद आपको ज़रूर ऐसा लगेगा कि लव इज़ हीलिंग यू लिटिल बाय लिटिल ग्रेजुअली. और आप ये एहसास भी करेंगे कि प्यार सच में एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है. तो चलिए यहाँ पर प्यार भरी बातों के साथ साथ प्यार भरे गाने भी आपको सुनाते रहेंगे टिल 9 PM. 8:07 हो चुके हैं, कहने को तो एक घंटे का टाइम है हमारे और आपके दरमियान, लेकिन ट्रस्ट मी गाने सुनाते सुनाते और आपके मैसेजेस पढ़ते पढ़ते ये टाइम भी ऐसे ही निकल जाएगा. बट विल ट्राई आवर बेस्ट कि वी गिव यू द बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक, जहाँ पर आपको मिलता है मौका टू रिलैक्स, सिट बैक एंड एन्जॉय द ब्यूटीफुल गाने. तो चलिए अगर आप लोग थके हारे घर वापस आए हैं, आप बैठे और हमारी ब्यूटीफुल म्यूजिक को एंजॉय करते रहें. एंड ना सिर्फ इसको एंजॉय करें, ना सिर्फ इसको सुने, बल्कि इसको सीने से लगाकर हर एक अल्फाज को जाने पहचाने और इसका एहसास कराएं, क्योंकि प्यार एक ऐसा एहसास है जिसको अगर आप सीने से लगा कर रखेंगे ना, तो ये प्यार उम्र भर आपका साया बनकर आपके साथ ही रहने वाला है. सो प्यार का साया ज़िंदगी का में होना बहुत इम्पोर्टेंट है, और हम आपको बार बार यही एहसास दिलाते रहेंगे ताकि जो प्यार का मैजिक है वो आपकी ज़िंदगी से कभी ना जाए और कभी फेड ना हो.
1: Evening Lounge, Evening Lounge, RM2, Radio Masti.

0: RM2 रेडियो मस्ती।
1: तुम हो तो सब अच्छा लगता है, तुम हो तो बस आंखें खिली खिली रहती हैं, इसलिए बार बार तुम्हारा दीदार करने का मन करता है। अगर आपके मन में भी कुछ ऐसी बातें आ रही है और आपके फीलिंग्स सामने उभर कर आ रहे हैं, बस इसको सप्रेस मत कीजिएगा। प्यार को दबाकर नहीं रखना चाहिए, प्यार को हमेशा जता के ही रखना चाहिए, इससे प्यार और भी बढ़ता है, ट्रस्ट मी। एंड 8:20 हो चुके हैं। टोल दोज जो और भी प्यार में डूबे हुए हैं हमारी गीतों को सुनने के बाद, एक टेक्स्ट मैसेज ज़रूर उस खास शख्स को भेजिएगा और उनको बताइएगा कि राइट नाउ हाउ मच यू आर मिसिंग देम। और साथ में इन टेक्स्ट मैसेजेस में हम आपके मैसेजेस का भी इंतज़ार कर रहे हैं ऑन 5499-1294।

0: रोशनी से भरे भरे ऑफ कोर्स उस इंसान के आने से जिंदगी और दिल में एक रोशनी से भर जाती है। और कहते हैं ना कि प्यार में जब आप इतने उस शख्स को सोचते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो भी आपको बहुत ही उस पार से सोच ही रहा है। तो चलिए वाई नॉट सेंडिंग हिम और हर टेक्स्ट मैसेज, और हमें भी बताइएगा कि आप किस हद तक उस स्पेशल इंसान को याद कर रही हैं। चलिए यहाँ पर हमारी प्यारी सी अनीता जी कनेक्टेड हैं हमारे साथ। हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और नेक्स्ट गाना जाएगा फॉर पतिराज, बेटे अंतिश, अंकुश, बहुएं हैं मनीषा, अशिमा और आपकी पोतियां हैं हिमेशा, आध्या और पोता अंश के लिए, सभी रेडियो मस्ती टीम के लिए थैंक यू सो मच प्यारी अनीता जी। एंड यहां पर आपने कहा कि अगर तुम मिल जाओ फॉर माय हस्बैंड आतिश एंड ही लव्स दिस सॉन्ग वेरी मच, थैंक यू फॉर प्लेइंग इट। थैंक यू सो मच विजय, आप है वाकवा से एंड आई जस्ट होप कि आपके हस्बैंड ने इस गाने को बहुत ही एंजॉय किया होगा। वी हैव DJ Davison from Lalmachi, thank you so much dear hamara saath dene ke liye. And yahan par kisne kaha hai hi dear hope you're fine, bilkul theek thaak hai, I really miss that special person, can't wait to see him from Vanisha and I just hope ki unse bahut hi jald mulaqat ho jayegi, yahi hum pray karte hain aapke liye. To chaliye ummeed karte hain ki aapki zindagi mein se jo sachcha pyar hai wo kabhi fade na ho. And kehte hain na ki jab aapko pyar ho jaye to never stop showing, never stop expressing your love to that special person, क्योंकि यही एक लौता तरीका होता है उनको special feel कराने के लिए। और आप सोचें अगर आप उनके साथ हैं और आपने प्यार जताना बंद कर दिया तो कहाँ से और किस हद तक वो आपकी ज़िंदगी में special person बन के रहता है, ये सोचने वाली बात है। इसीलिए always always try new ways and methods to make them feel loved and special, कहते हैं ना कि to love and to be loved is everything, इसीलिए हमेशा प्यार से ही रहो एंड प्यार से ही आप थोड़ा बहुत मेहनत करते रहो और आप देखेंगे कि प्यार से ही आपकी ज़िंदगी कैसे बदल जाती है।
1: Evening Lounge,
2: Evening Lounge,
3: RM2,
1: Radio Masti.

0: देर से हुआ पर प्यार तो हुआ, इसीलिए कहते हैं ना कि गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट बट बेस्ट थिंग्स कम टू दोज हु वेट अ लिटिल लॉन्गर. तो इसीलिए अगर आपका इंतजार थोड़ा लंबा जा रहा है सो डोंट वरी, आपको बिल्कुल कॉम्पेंसेट किया जाएगा बहुत बहुत सारा प्यार, बेइंतहा प्यार, बेशुमार प्यार आपकी जिंदगी में बहुत ही जल्द आने वाला है. ऐसे हम दुआ करते हैं और प्रार्थना करते हैं. 8:45 हो चुके हैं. एक बार फिर से दिव्या का साथ है योर इवनिंग लाउंज टिल 9 PM. चलिए बढ़ते हैं आपके कुछ और मैसेजेस की ओर. हाय, आप हैं कौन? यस, उर्मिला जी कनेक्टेड है ऑल द वे फ्रॉम मिलान एंड थैंक यू सो मच. आप भी सात समंदर पार कर रही हैं एंड मिट्स अलॉट कि आप लोग इस वक्त हमें सुन रही हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग द एडवाइजेज. एंड आपने कहा है कैन यू प्लीज डेडिकेट अ सॉन्ग फॉर मी, दिल में है तू धड़कन में तू. यस, ये गाना दावा से लिया गया है बट अभी के लिए ये हमारे शो में इतना भी फिट नहीं होगा उर्मिला जी, सो सॉरी, क्योंकि अभी बस कूल म्यूजिक चला रही है. ये गाना हमने सैटरडे को ज़रूर चलाया था एंड अगर पॉसिबल हुआ तो इन द कमिंग डेज इसमें हम ये गाना ज़रूर हमारी प्लेलिस्ट में ऐड करेंगे. फिलहाल के लिए थोड़ा सिचुएशन को फिट नहीं होता है और प्लेलिस्ट को भी फिट नहीं होता है. सो उर्मिला जी थैंक यू सो मच एंड यू आर वर्किंग राइट नाउ, आपको बो कुहाज और बहुत सारा प्यार आपको. एंड चलिए ये अगला गाना गुजार स्पेशली फॉर यू, फॉर ऑल योर फैमिली जो मे बी अब्रोड है या फिर मॉरिशस में है, टू ऑल दोज जो आपको जानते हैं एंड ऑल्सो टू ऑल दोज जो इस वक्त नाइट शिफ्ट करते करते हमारा साथ दे रहे हैं.
1: इवनिंग लाउंज, इवनिंग लाउंज,
2: RM2
1: रेडियो मस्ती.

0: Evening Lounge. Evening Lounge.
1: RM2.
0: Radio Musti. हर एक पल मायने रखता है और हर एक मोमेंट काउंट होता है, इसलिए हर एक पल को ऐसे ही जाने ना दे और इसको ऐसे ही गवाने से कुछ नहीं होने वाला है, बल्कि ट्राई टू मेक द मोस्ट ऑफ ईच एंड एवरी मोमेंट एंड ट्राई टू क्रिएट सम मोर ब्यूटीफुल मेमोरीज. 8:55 हो चुके हैं एंड चलिए इसी गाने के साथ इट्स अ टाइम फॉर दिव्या टू से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू. हमारी और आपकी मुलाकात होने वाली है कल फॉर योर फ्राइडे इवनिंग एक अलग ही मूड के साथ. एज यूजुअल जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी धीरे धीरे करके आ ही रहा है, जहां पर सब लोग दे गोइंग टू हैव अ वाइड एंड अ ब्रॉड स्माइल नेक्स्ट मॉर्निंग नोइंग दैट It's Friday, so चलिए अभी के लिए आप chill करें हमारे गीतों के साथ and we'll be having some more beautiful गाने 24/7 आप लोगों के लिए. तब तक के लिए दिव्या को दीजिए इजाजत. Take care, keep smiling, शुभ रात्रि and bye bye.

रात्रि के 9 बज चुके हैं और जी हां जाते जाते यहां पर आप लोगों के लिए एक जरूरी सूचना मॉरिशस फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज की तरफ से एक जरूरी सूचना उनकी 115 वाली हॉटलाइन यानी कि 115 वाली हॉटलाइन फिलहाल काम नहीं कर रही है अगर कहीं आग लगने की इमरजेंसी हो तो पुलिस को 112 यानी कि 112 या फिर 148 पर उनको फ़ोन करें हॉटलाइन सर्विस को जल्द से जल्द दोबारा शुरू करने के लिए काम किया जा रहा है इस असुविधा के लिए वो क्षमा प्रार्थी है।

0: Late Night Grooves
1: RM2 Radio Musti.
2: A very good evening, ladies and gentlemen. Swagat aap sabhi ka RM2 par Late Night Grooves. यानी कि बॉलीवुड के सुपर हिट गाने और साथ में एक कलेक्शन जिसको पसंद करेगा पूरा नेशन. दिन चाहे कैसा भी हो, बिजी रहा हो, लेकिन अब वक्त मिलेगा थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए. सो दिल को हल्का कीजिए, मुस्कुराइए और अपने गानों पर थोड़ा सा गुनगुनाइए. हर गाना एक याद को जरूर जगा देगा, एक स्माइल को जरूर बिठा देगा आपके चेहरे पर. सो देर ना करते हुए शुरू करते हैं लेट नाइट ग्रूव्स आरएम2.

0: RM2 रेडियो मस्ती।
1: कभी कभी लगता है कि हम बहुत धीरे चल रहे हैं, लेकिन याद रखिए स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस होती है। हर छोटा कदम भी एक बड़े सपने की तरफ आपको ले जाता है। बस रुकना मत, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो चलते रहते हैं। खुद पर भरोसा रखिए और मुस्कुराते रहिए।

0: Radio Musty.
1: Your life is not complete until you have a little musty in your life. Radio Musty. All the way. The latest news and the greatest mix of music. Radio Musty.
0: Radio Musty.
2: स्माइल की कोई लैंग्वेज नहीं होती, लेकिन उसकी पावर हर दिल समझ लेता है। एक छोटी सी स्माइल किसी का पूरा दिन खूबसूरत बना सकती है। आज किसी को वजह दीजिए मुस्कुराने की, पॉजिटिव एनर्जी हमेशा वापस जरूर आती है। सो अपने पार्टनर के साथ है, फैमिली के साथ है, मुस्कुराहट चारों ओर।

जिंदगी में कोई भी अकेला सब कुछ अचीव नहीं कर सकता। हर सक्सेस के पीछे किसी ना किसी का तो सपोर्ट होता ही है। आप चाहे अकेले काम कर रहे हो, लेकिन फैमिली का सपोर्ट, आपके पार्टनर का सपोर्ट, फैमिली, दोस्त, कलीग्स या मेंटोर्स, उन लोगों की वैल्यू समझिए जो आपके साथ खड़े रहते हैं। एक सिंपल थैंक यू बहुत बड़ा गिफ्ट होता है।

0: हम करियर के लिए ओवर टाइम करते हैं, लेकिन हेल्थ के लिए थोड़ा सा वक्त निकालना भाई बहुत जरूरी है। अच्छी नींद, हल्की सी वॉक और पॉजिटिव सोच, ये भी लाइफ के इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट्स हैं। खुद का ख्याल रखना यानी कि अपना ध्यान रखना कि आप सबका ध्यान रख पाए।
1: RM2 Radio Masti.

आरएन ट्रूबल लेट नाइट ग्रूव्स, और वादा है कि म्यूजिक के साथ आपका यूं ही साथ निभाते रहेंगे। कभी कभी किसी की मदद करने के लिए पैसे नहीं, सिर्फ एक अच्छा दिल चाहिए होता है, एक अच्छी बात, एक सही सलाह या एक छोटा सा सपोर्ट किसी की जिंदगी बदल सकती है। बस पॉजिटिविटी लाइए और इस पॉजिटिविटी को किसी की जिंदगी में ले आइए।

0: You're listening to RM2, a Radio Masti.
1: कभी कभी लाइफ में ऐसा लगता है जैसे सब कुछ उल्टा चल रहा है, अगेंस्ट चल रहा है, लेकिन याद रखिए, रात जितनी भी लंबी हो सुबह जरूर आती है। हर चैलेंज आपको और मजबूत बनाता है। जो लोग हार मान लेते हैं वो कहानी वहीं खत्म कर देते हैं, और जो लोग लगे रहते हैं, काम करते रहते हैं, वही नई कहानी लिखते हैं। तो हौसला बनाए रखें और बॉलीवुड के इस खूबसूरत सफर को

भाई दोस्ती की बात करें तो सच्चे दोस्त वो नहीं जो सिर्फ खुशी में साथ हो, बल्कि वो होते हैं जो मुश्किल वक्त में भी आपका साथ नहीं छोड़ते। दोस्ती में बड़ी गिफ्ट्स नहीं, बस सच्चाई, भरोसा और एक दूसरे के लिए वक्त होना चाहिए। आज अगर किसी दोस्त की याद आ रही है तो शो के बाद एक मैसेज तो भेज सकते हैं।

0: RM2 रेडियो मस्ती।
1: हम अक्सर उस चीज के पीछे भागते रहते हैं जो हमारे पास नहीं होती, लेकिन कभी रुककर ये भी देखिए कि जिंदगी ने हमें कितना कुछ दिया है। एक परिवार, अपने लोग, सेहत, उम्मीद और नए दिन का मौका, इन सब के लिए दिल से शुक्रिया कहना भी जरूरी है। अब ग्रैटिट्यूड के साथ सुनते हैं एक और म्यूजिकल मास्टरपीस।

0: RM2 रेडियो मस्ती।
1: देखिए, रिश्तों की खूबसूरती सिर्फ खून के रिश्ते में नहीं होती, कभी कभी दिल से बने रिश्ते सबसे गहरे होते हैं। थोड़ा सा वक्त, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग और बहुत सा रिस्पेक्ट, बस इतना ही काफी होता है रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए। आज इसी अपने को बस इतना कह दीजिए, मैं हूं ना। और अब अगला सुपरहिट गाना आप सभी के लिए, जो एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहते हैं।

0: Radio Musti.
1: Your life is not complete until you have a little musty in your life. Radio Musti. All the way. The latest news and the greatest mix of music. Radio Musti.
2: सपने देखने की कोई एज लिमिट नहीं होती। जो दिल सच में चाहता है उसके लिए मेहनत करना कभी बंद मत कीजिए। हर दिन एक नया चांस लेकर आता है, बस अपनी कहानी को आगे बढ़ने दीजिए। खुद हीरो बनिए और म्यूजिक को बनाइए अपना परफेक्ट कंपेनियन।

0: रेडियो मस्ट।
1: चलिए साहब, देखते ही देखते आज की जो खूबसूरत म्यूजिकल प्लेलिस्ट है वही अपने अजान तक पहुंच गई है। मिडनाइट होने से पहले बस ये कहूँगा कि म्यूजिक थेरेपी आपके लिए 24/7 RM2 पर। बस रिश्तों को मजबूत बनाइए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए और पॉजिटिव रहिए। जल्दी मुलाकात होगी, ध्यान रखिए। नमस्कार।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए।